मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून 2026 ईस्वी। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:52 मिनट होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान में वार्ता, मिर्च की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे दैनिक जीवन में मिर्च का काफ़ी महत्व है। इसका अनेक रूपों में इस्तेमाल होता है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम और आर्द्रता का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो मिर्च की फसल अधिक तापक्रम और आर्द्रता पसंद करती है। यह प्रायः 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पसंद करती है। लेकिन सब्जी जाति वाली किस्में कुछ कम तापमान में भी अच्छी होती है। मिर्च की फसल की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उचित जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। क्षारीय भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती है, परंतु चूने की अधिक मात्रा हो तो भी इसकी सफल खेती की जा सकती है। यह कुछ हद तक अम्लीयता बर्दाश्त कर सकती है। भूमि का पीएच 5.5 से 6.5 होना अच्छा होता है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए मिर्च की बुआई सही समय पर करनी चाहिए। बिहार में मुख्य फसल हेतु बीज की बुआई का उपयुक्त समय जून जुलाई का महीना है और रोपण का समय जुलाई अगस्त है। बीजों को बीज स्थली में बोएं, जिसका ठीक समय अभी चल रहा है। बीज की बुआई के पहले बीज का उपचार थीरम या कैप्टान नामक दवा से निश्चित रूप से आप कर लें। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम दवा मिलाकर उपचारित करें। 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 40 से 50 वर्ग मीटर भूमि पौधशाला के लिए पर्याप्त होगी। बीज बोने के लिए पौधशाला की ऊंचाई भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर रखें तथा उसमें पानी नहीं रुके इसकी भी व्यवस्था रखें। क्यारियों की चौड़ाई 1 मीटर तथा लंबाई आवश्यकता अनुसार रखें। बीज को उपचारित करना किसी भी हालत में नहीं भूलें, अन्यथा पौधे बीमारी से आक्रांत होकर मर जाएंगे और उपज में काफ़ी कमी होगी। अगर पौधे कमजोर हों तो यूरिया का उपरिवेशन कर तुरंत सिंचाई कर दें। पौधशाला में लगे पौधे को कम से कम 2 बार 10 से 12 दिनों के अंतराल पर डाइथेन M45 नामक फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करें ताकि रोग होने की आशंका नहीं रहे। कीट का आक्रमण दिखाई पड़े तो मेटासिस्टाक दवा के 0.1%

0: फूल का छिड़काव भी 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करें। हरी मिर्च के लिए फसल सारों भर उगाई जाती है, किसान भाई इसके लिए बुआई भी फसल लेने के समय के हिसाब से ही करें। सफल खेती के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त बीज का उपयोग करें। बीज की दर उसके अंकुरण और शुद्धता प्रतिशत पर निर्भर करती है। यदि बीज का अंकुरण 90 से 95% है तो प्रति हेक्टेयर 700 से 900 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। प्रायः मिर्च के पौधे के रोपण शाम के समय ही आप करें। तेज धूप के समय यदि आप रोपाई करती हैं तो पौधे की वृद्धि कम होती है और पौधे मुरझाने लगते हैं, उन्हें सूखने का भी भय रहता है। मिर्च में रोपाई के लिए उचित दूरी किस्म एवं ऋतुओं के अनुसार कम या अधिक होती है। साधारण तौर पर मिर्च की रोपाई पंक्ति से पंक्ति 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। अगर खेत में उर्वरा शक्ति काफ़ी अधिक है तो दूरी कुछ और अधिक आप बढ़ा सकते हैं। किस्मों के बारे में आप जान लें। मसाला के लिए मिर्च की प्रमुख किस्में हैं पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, G1, G2, G4, G5, पंत C1, आंध्र, ज्योति, भाग्यलक्ष्मी, K2, पंजाब लाल। संकर किस्मों के लिए सोल्जर, क्रांति, दशहरा, गोदावरी, प्रीति, हीरो, BSS 202, BSS 414, तेजस्विनी अच्छी जातियां हैं, इनकी आप बुआई कर सकते हैं। कुछ कम कड़वी किस्में भी हैं जिसमें अर्क बसंत, अर्क गौरव प्रमुख हैं। संकर किस्म में भारत और इंदिरा का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब ध्यान देने वाली बात यह है कि खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए, इसके लिए आप निकाई गुड़ाई करते रहें। कृषि रसायनों का भी प्रयोग आप कर सकती हैं। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, लेकिन यदि वर्षा नहीं हो और धूप तेज हो, नमी की कमी हो जाए, तो उस समय आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई भी कर सकते हैं।
1: खेत खलिहान में अभी आपने सुना वार्ता मिर्च की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।
4: पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को सरल शब्दों में कहें तो हर वो चीज जिससे हम घिरे हुए हैं, वायु, जल, पेड़ पौधे, खनिज, वो सारी प्राकृतिक उपहार जिन्हें प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए दिया है। इनमें से वायु और जल तो इतने सुलभ हैं कि कुछ वर्ष पूर्व तक इनकी अहमियत का एहसास तक हमें नहीं था, पर अब वक्त बदल रहा है। वैसे तो मनुष्य के विकास का सीधा असर पर्यावरण पर आदिकाल से पड़ता रहा है। मनुष्य के पैर जहां जहां पसरते गए वहां जंगल सिमटते गए, कई जानवर विलुप्त होते गए और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर हमारा विकास एक भार बनता गया है। पर पिछले 200 से 300 सालों में औद्योगिक क्रांति और उपभोक्तावाद ने मानवीय विकास को घातीय तरीके से बढ़ा दिया है और इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ भी रहा है। पर अब ये असर सामान्य जनजीवन में दिखने भी लगा है। वायु प्रदूषण पर्यावरण के कुप्रभाव का सबसे ज्यादा प्रतीत होने वाला एक उदाहरण है। अगर वैज्ञानिक आंकड़ों को आधार माने तो देश की राजधानी की हवा जहरीली है और सिर्फ दिल्ली क्यों, देश के कई नगर की यही कहानी है। ओजोन का छिद्र बढ़ता जा रहा है और ये छिद्र ठीक अंटार्कटिका के ऊपर है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। जमीन के नीचे का जल स्तर गिरता जा रहा है, जिससे पीने के पानी की किल्लत देश में एक आम समस्या बन गई है। बढ़ती जनसंख्या के जरूरतों का ख्याल रखने के लिए पर्यावरण का जिस प्रकार हम शोषण कर रहे हैं, आज ये स्थिति डरावने स्तर पर पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम नहीं हो रहा है। वैश्विक स्तर पर सम्मेलन होता है, पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाए जाते हैं, बारिश के पानी को संचित करने के उपाय किए जा रहे हैं, पर सबसे बड़ा परिवर्तन तभी दिखेगा जब पर्यावरण संरक्षण को समाज का, देश का हर व्यक्ति अपना निजी कर्तव्य समझेगा और इस कार्य के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। घर या कार्यालय से निकलते समय बिजली बंद कर दें, पानी का यथासंभव दुरुपयोग ना करें, निजी वाहनों का उपयोग कम कर सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। किसी भी संसाधन का उपयोग करते समय अगर हमारे मन को हम ये समझा सकें कि इस संसाधन की कीमत सिर्फ अमुक रुपये नहीं, पर्यावरण के प्रति हमारा एक कर्ज है, जिसे शायद भविष्य में हमारी अपनी पीढ़ी को चुकाना होगा, तो पर्यावरण के प्रति हमारा नज़रिया बदलेगा। पर्यावरण ही वो अनमोल उपहार है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देने जा रहे हैं, और अगर हम इसे आज संरक्षित रखने में नाकामयाब रहे तो शायद हम आने वाली पीढ़ी को एक जीने योग्य जिंदगी भी दे पाने में सामर्थ्य नहीं होंगे। अतः एक संकल्प लें, खुद से, आज से, अभी से, अपनी दिनचर्या के हर कार्य में हम इस बात का ख्याल रखें कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान दें। इतना तो हम कर ही सकते हैं।
1: अभी आपने सुना चिंतन मनन, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए देश वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए अनूप जलोटा के स्वर में सुनते हैं एक और भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:35 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा में सुनिए वार्ता, तनाव और योग। वार्ताकार है सुरेश कुमार।
1: तनाव टेंशन शब्द से ही लोग परेशान हो जाते हैं। जब हम गृहस्थ जीवन या सांसारिक जीवन में हैं, तो काम करने के दौरान विभिन्न कार्यों के कमी बेशी के कारण भी तनाव या टेंशन हो जाता है। इसके कारण तो कभी कभी कुछ लोग अज्ञानतावश आत्महत्या तक करने हेतु आगे बढ़ जाते हैं। तनाव के कारण मानसिक रोग, अर्धकपारी, माइग्रेन या पागलपन तक लोग पहुंच जाते हैं। यह रोग पारिवारिक कारण, दफ्तर के या अन्य काम के बोझ, अपने दिनचर्या के कारण, परिवेश के बदलने, प्राकृतिक जीवन से दूर रहने, जीवन की समस्याओं से घबराना एवं उसमें सकारात्मक रूप नहीं देना, समय पर नहीं सोना, समय से पूर्व नहीं जगना, ऊंचे सोच एवं ख्वाब पूरा नहीं होना, कब्ज, महिलाओं का मासिक धर्म की अनियमितता, नाक, कान, आँख रोग के विशेष कारण हो सकते हैं। तनाव से बहुत नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उसका निदान ढूंढकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें तनाव के निदान हेतु योग पर विश्वास करना चाहिए। इस मनोक्रोमिक तनाव जैसे रोग की समुचित चिकित्सा एवं निदान अन्य स्तर से करें, जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, प्राणिक और अन्य सूक्ष्म स्तरों तक इस विकृति को प्रभावित कर रोग को मूल नष्ट कर सके। इस परिपेक्ष में योग चिकित्सा इन सभी स्तरों को प्रभावित करने का एक सशक्त विकल्प बनकर हमारे सामने आती है। योग की क्रियाएं मस्तिष्क में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन इत्यादि रसायनों के श्रावण चक्र को, उनकी मात्रा को एवं अनुपात को पुनर्व्यवस्थित करती है। वे व्यक्ति को संवेदनात्मक तौर पर अधिक संतुलित बनाकर तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण में वो जीवन शैली में परिवर्तन लाकर मनोकायिक संबंधों को संतुलित करती है। योग द्वारा प्राण शक्ति के प्रवाह के अविरोध दूर होते हैं और पूरे शरीर में प्राणों का संचार बेहतर तरीके से होना प्रारंभ हो जाता है। योग से संपूर्ण शरीर की सफाई बराबर करते रहना चाहिए। इसके लिए जल नेति क्रिया, कुंजल विधि एवं एनीमा या लघु शंख प्रक्षालन द्वारा करते हैं। योग में पवन मुक्तासन भाग एक, शवासन, सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, शशांकासन, नाड़ी शोधन, आमरी प्राणायाम, योग निद्रा, ध्यान, हल्का भस्त्रिका प्राणायाम के साथ सादा भोजन करना, धूम्रपान, शराब वर्जित हो और तथा समय पर सोना, समय पर जगना, अपने पुराने दिनचर्या एवं परिवेश को बदलना, जीवन की समस्याओं से घबराना नहीं बल्कि स्वीकार करना, वातानुकूलित कक्ष में ज्यादा समय नहीं रहना, गरिष्ठ भोजन नहीं करें, आँख, नाक, कान, गला, रीढ़ की हड्डियों की ज्यादा परेशानी का अलग से जांच एवं इलाज भी करावें, कब्ज या मासिक अनियमितता को दूर करें, दोनों नाक में दो दो बूंद बादाम तेल डालें या गाय की घी 4-4 बूंद नाक में डालने से भी तनाव में बहुत लाभ होता है। हमारा जीवन सुख दुख की छाँव में पलता है, दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए, चिंतन कर समाधान ढूंढना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। योग जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाता है। योग बराबर करते रहने से तनाव ही नहीं अन्य रोग में भटकने नहीं देता है। तनाव से याददाश्त कम होने लगता है, भूख भी कम होने लगती है, काम में मन नहीं लगता है और अच्छा सोच कर कोई काम करते हैं तो कभी बिगड़ भी जाता है। यदि सड़क पर कोई गाड़ी आपने से चलाते हैं तो दुर्घटना होने का भी डर रहता है। पत्नी, बाल बच्चों एवं दफ्तर में काम करते हैं तो कभी तकरार भी हो जाता है। इसे गांठ बांधकर कभी नहीं रखना चाहिए। योग में ध्यान एवं योग निद्रा का मन को हल्का करना चाहिए। ज्यादा तनाव में रहने से हृदय रोग की भी संभावना होती है। इसीलिए मन को प्रफुल्लित करते हुए जीना चाहिए, परिवार के साथ कभी घूमने भी जाना चाहिए।
0: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना वार्ता तनाव और योग। वार्ताकार थे सुरेश कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी।

सीता के पांव से रक्त बहता देख श्री राम ने धनुष पर सरकंडे का बाण चढ़ा दुष्ट कौवे के पीछे छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित बाण कौवे का पीछा करने लगा। भयभीत हो जयंत अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र की शरण में पहुंचा, पर इंद्र ने रामद्रोही जान उसे शरण नहीं दी। प्राण बचाने के लिए जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि में भागते भागते थक गया, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जयंत की दशा देख देवर्षि नारद को दया आई और उन्होंने उसे श्री राम की ही शरण जाने को कहा। जयंत को तब तक प्रभु की शक्ति का पूरा आभास मिल चुका था। उनसे उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। पार्वती को प्रभु महिमा की कथा सुनाते

उनके दर्शनों को आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः अपने वन प्रवास को अज्ञात रखने के लिए किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। समय उपयुक्त जान वहां के निवासी मुनिगण आदि से विदा लेकर श्री राम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर हुए। राह में ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ता था। श्री राम के आगमन का समाचार पाकर ऋषिवर उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए।

रामचरितमानस गान संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रसरंग, मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास, गांधी कथा एवं फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर। कलाकार होंगे अभिजीत आनंद। फिल्म संगीत पुरानी फिल्म से आप सुनेंगे 10 बजे से। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगी लक्ष्मी पांडे। 11 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। दोपहर 1 बजे से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार होंगे जय नारायण शर्मा। 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युवा वर्गों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6 बजे से आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में वार्ता, स्वास्थ्य जीवन के लिए दिनचर्या। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्त। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार होंगे उदय नारायण राय। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे समन्वित रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प में भागलपुर अंक। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान एवं पार्टी। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी।

0: संबंध विषये चर्चां कृतवन्तौ। ऊर्जा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा वाहन च इत्यादीनि क्षेत्राणि अधिकृत्य सहयोगं वर्धयितुं नूतनान् अवसरान् च अन्विष्यताम् इति वार्ताः।
1: मीडिया वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

गुड मॉर्निंग विक्रम शिला दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में जिसे आप रोजाना सुनते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर 7:55 तक। और श्रोताओं, आज मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव, और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह प्रोग्राम जानकारियों से भरा है, जहां पर हम जानते हैं बहुत सी जानकारियों को, जैसे कि मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास एवं अन्य जानकारियां। और श्रोताओं, कार्यक्रम के दो पड़ाव होते हैं, और दो पड़ाव में यानी कि पहले पड़ाव में हम आपको सुनवाते हैं रसरंग, और रसरंग में आज हमारे साथ गायक कलाकार हैं डेजी प्रियदर्शनी। और साथ ही साथ 7:20 पर आज शुक्रवार के दिन हम आपको सुनवाएंगे गांधी कथा में वार्ता, गांधी और जेल सुधार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर मुकेश कुमार। और साथ ही साथ कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और जानेंगे अन्य शेष जानकारियों को। तो आइए श्रोताओं, बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सुनते हैं रसरंग में गायक कलाकार डेजी प्रियदर्शनी के द्वारा गाया यह भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रम शिला, और अभी आप सुन रहे हैं रसरंग में गायक कलाकार डेजी प्रदर्शनी को। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में कुछ जानकारियों को।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं मौसम सूचना के बारे में। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 5 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75% तथा दोपहर में 20-25% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8-12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की भी संभावनाएं हैं। तो श्रोताओं, ये थी मौसम सूचना के बारे में जानकारी। और मैं बस यही कहूँगा कि ऐसे बदलते मौसम में जिस प्रकार अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो आप सभी कुछ ना कुछ जो पेय पदार्थ हैं वो बिल्कुल पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि अगर शरीर में आपके पानी की कमी होगी तो इस कारण आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो ऐसे में अपना ख्याल रखें और पानी पीते रहें। कोशिश करें कि अगर आप धूप से कहीं छाया पे जा रहे हैं तो घर में जो पंखा होता है उसके नीचे एकदम से ना चले जाएं, एकदम से ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएं गर्मी से जाकर, क्योंकि इस कारण तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है। तो इन सब बातों का ख्याल रखेंगे आप सभी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम रसरंग में सुन रहे हैं गायक कलाकार डेजी प्रियदर्शनी को। तो आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

रसरंग में अभी आपने सुना गायक कलाकार डेजी प्रियदर्शनी को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी कथा में वार्ता, गांधी और जेल सुधार। वार्ताकार हैं डॉक्टर मुकेश कुमार।

0: नमस्कार। इस कार्यक्रम में लगातार आप गांधी जी के विचारों को सुनते रहे हैं और आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि गांधी जी के विचार के इतने व्यापक अर्थ हैं जिसको जिस रूप में भी लें, समाज के विकास की बात, देश के विकास की बात, जीवन जीने के शैली की बात, सब कुछ उसमें निहित है। कहीं ना कहीं जीवन दर्शन की बात है, कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ी हुई वो हर बात है जिसकी समाज ने हमें मान्यता दी है और समाज ने स्वतंत्र रूप से हमें उन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की छूट भी दी है। ठीक वैसे ही कुछ बातें हैं जेल सुधार और महात्मा गांधी की बातें। जी हाँ, आज की संख में हम बातचीत करेंगे जेल सुधार। महात्मा गांधी किस तरह से जेल के लिए अपनी कुछ बातें रखते थे, अपनी कुछ बातें कहते थे, जेल के मायने क्या हैं, जेल में कौन लोग रहेंगे, जेल में रहने का तरीका क्या होगा, जेल भेजने का अर्थ क्या होता है, जेल के भीतर की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उनका अपना विचार था और जिसकी स्वीकारोक्ति लोगों की तरफ से थी। लोग कहते थे कि वास्तव में उनके हर विचार में कहीं ना कहीं एक नई विचारधारा दिखती है। तो ये बातें जेल सुधार और सुधार से संबंधित जो महात्मा गांधी के विचार थे उस पर हम एक विस्तार से कुछ बातें सुनेंगे और इन बातों में आप खुद महसूस करेंगे कि गांधी जी के विचार जो थे समाज की एक अपनी विचारधारा के मुताबिक थे, लोग भी उसे स्वीकार करते हैं। इस पर विस्तार से बातें सुनते हैं। एक और भी एक नई चीज विस्तारक डॉक्टर मुकेश कुमार से।
1: जेल का नाम सामने आते ही एक सामान्य आदमी के मानस पटल पर एक तस्वीर उभरती है और यह तस्वीर होती है एक ऐसी जगह की जहां का जीवन अत्यंत ही कष्टप्रद हो। इसलिए जेलों को काल कोठरी और नरक जैसी उपमाओं से नवाजा गया है। आज भी जेल का मतलब यातना गृह से ही है, जहां विभिन्न अपराध के दोषियों को सजा अथवा दंड देने की नीयत से रखा जाता है। संगीन अपराधों के लिए और भी सख्त सजाओं का प्रावधान किया गया है। संगीन अपराध के दोषियों को जेल के अंदर बने कष्टदायक सेलों में भी रखने की व्यवस्था चली आ रही है। दुनिया के कई मुल्कों में संगीन अपराधों के लिए फांसी देने अथवा गोली से उड़ा देने तक की सजा का प्रावधान है। देश समाज में अपराध को रोकने के नाम पर इसे जायज ठहराया जाता रहा है। कुल मिलाकर यह अपराधियों को सबक सिखाने की दंडात्मक व्यवस्था की ही अभिव्यक्ति है, लेकिन सजा के इस सख्त सरंजाम के बावजूद अपराध वृत्ति पर कोई लगाम नहीं लग पा रहा है। तो हमें ऐसी दंडात्मक व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। दंड देकर यदि अपराधी को सबक दिया जा सकता है और अपराध को रोका जा सकता है तो इसके जरिए अब तक अपराध पर काबू पा लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम कठोर दंडात्मक प्रणाली के मौजूद रहने के बाद भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि दंड के जरिए अपराध का समूल खात्मा मुमकिन नहीं है। दंड के भय से अपराध को कुछ देर के लिए दबाया भले जा सकता है, समाज से अपराध वृत्ति के खात्मे के लिए दंड प्रणाली में बदलाव के साथ साथ अपराध वृत्ति के जिम्मेदार कारकों को समाज से दूर किया जाना आवश्यक है। महात्मा गांधी ने इसी व्यापक संदर्भ में जेल सुधार की बात की है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान जेल सुधार की बात करते हुए इसे दंड गृह के स्थान पर सुधार गृह बनाने पर जोर दिया था। गांधी का मानना था कि जिस प्रकार हम शरीर से अस्वस्थ लोगों को जेल नहीं बल्कि अस्पताल भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार मानसिक रूप से अस्वस्थ अर्थात अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए नैतिक चिकित्सकों व नैतिक अस्पतालों की व्यवस्था करनी चाहिए। गांधी जी की मान्यता थी कि हमारी दंड संहिता का आधार प्रतिशोध नहीं बल्कि सुधार होना चाहिए। सजा से भय की भावना उत्पन्न की जा सकती है और जबरन भय दिखाकर कोई आदत नहीं डाली जा सकती है, किंतु यह परिवर्तन अस्थायी नहीं हो सकता और न ही इसके जरिए अपराधी वृत्ति वाले मनुष्य को बेहतर ही बनाया जा सकता है। इसी कारण गांधी मानते हैं कि नैतिक सुधार के साधन की दृष्टि से सजा निरर्थक ही नहीं बल्कि उससे भी बदतर है। आज जेलों में जिस प्रकार किसी चोर या ठग को दूसरे चोरों या ठगों के साथ बंद कर दिया जाता है वह अत्यंत ही शरारतपूर्ण है। यह खसरा, क्षय रोग और कुष्ठ रोग से पीड़ित बहुत सारे लोगों को एक साथ बंद कर उसकी बीमारी को ठीक करने की बेतुकी कोशिश जैसा ही है। गांधी कहते हैं कि जेलों का वातावरण कैदियों को अपराध वृत्ति को और उभार देती है और निर्दोष कैदी भी वहां यह सीख जाते हैं कि अपराध करके उसे कैसे छिपाया जाता है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि न्यायिक प्रक्रिया में जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कई वर्षों तक जेल की सजा हो जाने के बाद वह निर्दोष साबित होता है, किंतु इस बीच वह कई वर्षों की जेल काट चुका होता है और मौजूदा स्वरूप की जेलों में यह निर्दोष भी दंडित ही हो जाता है। न्यायिक प्रक्रिया इतनी खर्चीली और थकाऊ है कि निर्दोष व्यक्ति भी न्याय पाने से वंचित हो जाता है। ऐसी सूरत में भी जेल सुधार का औचित्य साबित हो जाता है। गांधी कहते हैं कि यह सरकार का दायित्व है कि सरकार जेलों को ऐसे सुधार गृह के रूप में विकसित करे जहां अपराध वृत्ति वाले व्यक्ति के चारित्रिक दोषों को दूर किया जा सके। गांधी सामान्य कैदी और राजनीतिक कैदी के बीच किए जाने वाले भेदभाव के भी सख्त खिलाफ थे। गांधी जी ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत के विभिन्न जेलों में गुजारे थे। जेल जीवन के अपने अनुभवों ने भी उन्हें जेल सुधारों के लिए प्रेरित किया था। वे कहते हैं कि कैदियों को उनसे मिलने जुलने आने वालों से मिलने, पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं पढ़ने व बिना किसी सेंसरशिप के पत्राचार की पूरी छूट दी जानी चाहिए। गांधी जेलों को दंडस्थली के बजाय सुधार गृह एवं प्रशिक्षणशाला के रूप में विकसित करने पर बल देते हैं। जेलों में हस्तकरघा व अन्य उद्योग धंधों के ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वे जेलों में कैदियों के शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक मानते हैं। वे चाहते थे कि जेल यातना गृह बनने के बजाय उत्तम गुणों को विकसित करने का प्रशिक्षण केंद्र बने। जेलों में कैदी के साथ अपराधी की तरह बर्ताव करने के बजाय उन्हें मरीज की भांति देखा जाना चाहिए और एक डॉक्टर जिस प्रकार मरीज को प्रताड़ना देने के बजाय उसे स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करता है, वैसे ही कैदी को भी अपराध मनोवृत्ति से बाहर निकालने के लायक बनाया जाना चाहिए। आज जेलों में सामान्यतः ऐसा वातावरण है कि अगर एक सामान्य अपराधी जेलों में कुछ दिनों के लिए रहे तो वहां से बाहर निकलने के बाद उसके कुख्यात अपराधी बनने की ही ज्यादा संभावना रहती है। इससे दंड की मौजूदा व्यवस्था की निरर्थकता ही सिद्ध होती है। गांधी जेलों को अपराध वृत्ति वाले लोगों को आदर्श नागरिक बनाने वाली शिक्षण शाला के बतौर विकसित करना चाहते थे। अपराध के ज्यादातर मामलों में अपराधी को कुछ महीनों अथवा कुछ वर्षों की सजा दी जाती है। जेल से सजा की अवधि पूरी कर लेने के बाद अपराध वृत्ति वाला वह व्यक्ति पुनः उसी समाज में वापस लौट आता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के भीतर की अपराध वृत्ति खत्म नहीं होती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह पुनः आपराधिक घटनाओं को अंजाम नहीं देगा। इसलिए भी जेलों की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि वहां व्यक्ति का सकारात्मक दिशा में रूपांतरण हो, अपराध वृत्ति वाले उस मनुष्य की मानसिकता में अस्थायी तौर पर परिवर्तन हो, और मानसिकता में अस्थायी परिवर्तन किसी जोर जबरदस्ती के जरिए नहीं हो सकता है। भय दिखाकर परिवर्तन की कोशिश अस्थायी प्रकृति की होती है। डर समाप्त होते ही व्यक्ति अपने पुराने स्वभाव की ओर वापस हो जाता है, किंतु अगर व्यक्ति के भीतर से बदलाव आ जाए तभी वह बदलाव अस्थायी होता है, और यह भीतर से बदलने की प्रक्रिया किसी दंड के जरिए नहीं बल्कि प्रेम और सुधार के जरिए ही कारगर ढंग से चल सकती है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड देते हैं तो हम यह मानकर चलते हैं कि वह व्यक्ति अपने किए के कारण ऐसी ही सजा का हकदार है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप मनुष्य स्वभाव को जड़ मान लेते हैं, यानी जो मनुष्य जैसा है वैसा ही रहेगा, वह बदल नहीं सकता। हमारी यह धारणा पूरी तरह से गलत है। मनुष्य कभी भी जड़ नहीं हो सकता। मनुष्य का स्वभाव गतिशील होता है, वह बदलता रहता है। इसलिए हमारा मकसद अपराध वृत्ति वाले मनुष्य में सकारात्मक बदलाव लाना और उन्हें अच्छा मनुष्य बनाना होना चाहिए। पश्चिमी विचारक हॉब्स मनुष्य को स्वभाव से ही घृणित, दुष्ट और ईर्ष्यालु मानते थे, किंतु गांधी मनुष्य की सहृदयता में विश्वास रखते हैं। गांधी मनुष्य को स्वभाव से अच्छा मानते हैं और मानव स्वभाव को गतिशील मानते हैं। उनकी नज़र में मनुष्य में बदलाव संभव है। अपराध और अपराधी वृत्ति पर गहराई में जाकर विचार करें तो इसके भी कई कारण हैं, और यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सत्ता संरचना से जुड़ा मसला है। अंग्रेजी राज में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ की गई हर बगावत अंग्रेजी शासन की नज़र में अपराध था, किंतु भारत की जनता के लिए वह भारत की मुक्ति का जरिया था। इसलिए अपराध और अपराधी की धारणा भी अपने आप में कोई जड़ धारणा नहीं है, यह बदलती रही है। सत्ता इसे अपने हक में परिभाषित करती रही है। खून के बदले खून और आंख के बदले आंख की सजा के हम्मुरावी के दौर के बर्बर प्रावधानों को जारी रखना अपराध से नफरत के बजाय अपराधी से नफरत की अवधारणा पर ही ज्यादा टिका हुआ है। इससे विपरीत गांधी जी की मान्यता थी कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। अपराध से नफरत और अपराधी से नफरत दो अलग अलग चीजें हैं। जब अपराधी से नफरत को ही प्रधान बना दिया जाता है तब अपराध के खात्मे की जगह अपराधी को ही समाप्त करने पर जोर रहता है, किंतु इस रास्ते अपराध का वास्तविक अर्थों में खात्मा मुमकिन नहीं होता है। लेकिन गांधी अपराध से नफरत करते हैं और अपराधी से प्रेम करते हुए उसके सुधार पर जोर देते हैं। अपराध को किसी एक व्यक्ति मात्र के भीतर ढूंढने के बजाय अपराध के कारणों की तह में जाने और अपराध को जड़ से समाप्त करने की दिशा में सोचने की हिमायत करते हैं। यह तो मानी हुई बात है कि कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी पैदा नहीं होता है। अपराध की वास्तविक जड़ें देश, दुनिया और समाज में ही निहित होती हैं। केवल कुछ एक अपराधी को जेलों में डालकर, दंडित कर अथवा उसे फांसी पर लटकाकर अपराध का खात्मा नहीं किया जा सकता है। अपराध के जड़ मूल से खात्मे के लिए यह जरूरी है कि जिन कारणों से अपराध पनपते हैं उन कारणों को जड़ मूल से समाप्त किया जाए। इसलिए गांधी फांसी की सजा के भी सख्त खिलाफ थे और उन्होंने सभ्य समाज में फांसी की सजा के औचित्य पर सवाल उठाते हुए उसे खत्म करने की बात की थी। गांधी पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लक्ष्य प्राप्ति के साधन का पवित्र होना आवश्यक मानते हैं। अगर हमारा साधन ही शुद्ध न हो तो हम पवित्र साध्य तक कैसे पहुँच सकते हैं। इस दृष्टि से सोचें तो अगर अपराध मुक्त समाज बनाना हमारा मकसद है तो आपराधिक तौर तरीके अपनाकर ऐसा समाज नहीं बनाया जा सकता। दंड प्रणाली एक किस्म का प्रतिशोध ही तो है और प्रतिशोध की भावना से लैस होकर बेहतर समाज का निर्माण मुमकिन नहीं है। यही कारण है कि दंडात्मक व्यवस्था के जारी रहने के बावजूद अपराध की घटनाएं और उसकी बर्बरता बढ़ती ही जा रही है। ऐसे हालात में हमें जेल सुधारों के साथ साथ वर्तमान दंड प्रणाली पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और गांधी के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए इस दिशा में ठोस कदम उठाना होगा। जाहिर है ऐसे ठोस कदम की अपेक्षा देश दुनिया की सरकारों से ही है, क्योंकि इस दंड व्यवस्था को सरकारों ने ही बनाया है और वही इसे लागू करती रही हैं। इसे बदलने का कार्यभार भी गांधी की नज़र में सरकारों के ही जिम्मे है। आज 21वीं सदी में लोकतंत्र के ज़माने में बर्बर किस्म के दंड विधान का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसे मानवीय ढंग से बदलने की ज़रूरत है। गांधी के लिए तो जेल सुधार का एजेंडा पूरी सभ्यता के मानवीकरण व सकारात्मक बदलाव विकास का एजेंडा है। उनके लिए जेल सुधार कोई अलग थलग एजेंडा ना होकर व्यापक समाज परिवर्तन का एजेंडा है।
0: ये बातें आपने सुनी और आपको लगा होगा कि वास्तव में जेल सुधार की बातें गांधी जी ने किस तरह से की। आज भी समाज में यही मान्यता है कि जेल जाने का अर्थ ये ना हो जाए कि वहां कोई व्यक्ति प्रताड़ित हो, वहां उसे कोई अच्छी मैगजीन या अच्छे तरह से रहने की सुविधा में कोई कमी की जाए, उसे अच्छा माहौल न दिया जाए, या फिर जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं उनके सुधार के लिए कुछ अच्छी चीज़ों का प्रदर्शन किया जाए, उनका जीवन ठीक हो, दंड स्वरूप वो वहाँ रहें लेकिन उनके जीवन शैली में परिवर्तन हो, इस पर भी उनका जोर देना था। बहुत सारी बातें हम इस अंक में आप सुनते रहते हैं, बहुत सारी बातें आपने सुनी भी है, आप हमारे विचारों से सहमत होंगे और जो भी हमारे पास इस विषय से विद्वान आते हैं अपनी लेखनी से कुछ ना कुछ हमें नई चीज़ों से अवगत कराते रहते हैं। ऐसे ही कुछ बातें डॉक्टर मुकेश कुमार ने आपको विस्तार से कही हैं और इसी के साथ अगले अंक तक के लिए डॉक्टर केसी सिन्हा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आपने सुना गांधी कथा में वार्ता, गांधी और जेल सुधार। वार्ताकार थे डॉक्टर मुकेश कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और जानेंगे अन्य शेष जानकारियों को। श्रोताओं, आज का जो तारीख है वो है 5 जून, और हमारे इतिहास में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई हैं इस तारीख को

आइए जानते हैं। आज के दिन साल 1507 ईस्वी में इंग्लैंड और नीदरलैंड व्यापार समझौते पर सहमत हुए थे। आज के दिन साल 1659 में मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। साल 1661 में आज के दिन महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया था। साल 1846 में आज के दिन अमेरिका में फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी। साल 1875 ईस्वी में आज के दिन यानी 5 जून को ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी। साल 1915 में 5 जून को ही डेनमार्क ने अपने संविधान में संशोधन कर महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था। साल 1924 में आज ही के दिन अर्नेस्ट एलेक्जेंडरसन ने अटलांटिक महासागर को पार कर पहला फैक्स भेजा था। श्रोताओं, आपको बता दें कि 5 जून साल 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो श्रोताओं, ये थी आज के तारीख में इतिहास में घटित कुछ प्रमुख घटनाएं जिनके बारे में हमने जाना। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म राब्ता से। इस गीत को आवाज़ दिया है अरिजीत सिंह एवं निकिता गांधी ने।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं रेल सूचना के बारे में।

जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 8 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 8:15 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 1 घंटे 10 मिनट की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 1, 5, 6, 5, 8 ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका सही समय है सुबह 8:05 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 2 घंटे 30 मिनट की देरी से पहुंचेगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 5, 3, 4, 1, 6 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर, जिसका सही समय है सुबह 8:37 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 3, 5 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जो कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन भागलपुर जंक्शन से रवाना होती है। इस गाड़ी का सही समय है सुबह 8:55 और आज शुक्रवार के दिन यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 1, 3, 4, 0, 3 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसका सही समय है सुबह 9 बजे और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 1 घंटे 10 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 1, 3, 4, 0, 9 मालदा क्यूल इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 9:35 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 40 मिनट की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 1, 3, 2, 4, 1 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, जिसका सही समय है सुबह 10:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 7 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि रोजाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है सुबह 11:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। श्रोताओं, ये थी रेल सूचना के बारे में जानकारी और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म धुरंधर से। इस गीत को आवाज़ दिया है अफसाना खान एवं रेबल ने।

सबसे पहली सुर्खी है कि चौथे बेली ब्रिज का निर्माण लगभग पूर्ण, 7 जून से चलेंगे छोटे वाहन। विक्रमशिला सेतु पर चौथे बेली ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। गुरुवार देर शाम तक ब्रिज के ऊपर डेक बिछाने का काम पूरा कर लिया गया। पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के मुताबिक तय डेडलाइन के भीतर काम खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर मजदूर और इंजीनियर डटे हैं। आगामी 7 जून यानी रविवार से इस नए बेली ब्रिज पर छोटे वाहनों का परिचालन शुरू होने की संभावना है। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है छात्रों के लिए समर इंटर्नशिप का रजिस्ट्रेशन शुरू। मारवाड़ी कॉलेज में सत्र 2023 से 27 के सेमेस्टर 5 के छात्रों के लिए अनिवार्य समर इंटर्नशिप का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गुरुवार से शुरू हो गया है। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से 10 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार झा ने बताया कि 100 अंकों की और 4 क्रेडिट वाली समर इंटर्नशिप सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो एमएड के परीक्षा फॉर्म 9 से भरे जाएंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने एमएड के सत्र 2024-26 के पहले सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार छात्र 9 जून से 15 जून तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे, जबकि 16 जून से 21 जून तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म और परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा। और वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो मारवाड़ी कॉलेज में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया गया। मारवाड़ी कॉलेज में छात्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से छात्रों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया गया। इसका नेतृत्व हर्षिकेश प्रकाश ने किया। हेल्प डेस्क पर नामांकन, छात्रवृत्ति, ऑनलाइन फॉर्म भरने, परीक्षा संबंधी जानकारी व अन्य शैक्षणिक समस्याओं के समाधान में विद्यार्थियों की मदद की जा रही है। तो श्रोताओं, ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं ये फिल्म गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लुटेरा से। इस गीत को आवाज़ दिया है मोनाली ठाकुर ने।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों को।

श्रोताओं, अब वक्त हमें और इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम में आपके साथ और बने रह पाएं, तो बस जाते जाते यही कहूँगा कि आप सभी ऐसे बदलते मौसम में अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आकाशवाणी भागलपुर से जुड़े रहें। मैं केशव आप सभी से लेता हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज एवं उर्दू समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।

0: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
0: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भाषा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगिहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
7: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
9: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
8: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities.
10: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
8: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
10: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
8: Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions made by the Monetary Policy Committee at 10 a.m. in Mumbai. The six-member MPC started its three-day deliberations on Wednesday. In April, the Reserve Bank had kept its key policy rate unchanged. Here is more from our correspondent.
4: The government has set consumer price index plus inflation target at 4% with upper tolerance of 6% and a lower tolerance level of 2% for the central bank. The CPI rose slightly to 3.48% in April, mainly due to higher prices of gold and silver jewelry as well as some kitchen items. As the CPI is within the tolerance level, economists are expecting that the key interest rate will be kept unchanged at 5.25%. It also says that the central bank will adopt a cautious approach in view of West Asia conflict posing challenges for the inflation as well as economic growth. Jeevan Bhavsar, Akashwani News, Mumbai.
8: Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as the Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the passing of Dr. Kashyap. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IAS officer, as advisor to Prime Minister Narendra Modi. The Department of Personnel and Training has informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on the 10th of this month for a further period of 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Neelkanth Mishra as Executive Director of World Bank Headquarters, Washington, D.C. for a tenure of 3 years. The Department of Personnel and Training has informed that the tenure of Parameswaram Iyer has also been extended till the new incumbent assumes charge. The NDA alliance in Andhra Pradesh has decided to allot 3 of the 4 vacant Rajya Sabha seats to the Telugu Desam Party TDP and 1 seat to the Janasena Party. The decision was announced by Chief Minister N. Chandrababu Naidu after a meeting of NDA alliance partners held at its camp office in Amravati the previous night. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with the heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. The Russian president said that India's diplomatic engagement with the U.S. does not hinder or undermine its time-tested relationship with Russia. He said Russia considers India as a reliable partner and it sees no negative consequences from New Delhi's bilateral relations with any other country. The Russian president also said that Russia proposed to India to work jointly on manufacturing the fifth generation Su-57 fighter jet. Putin added that his country is ready to provide India with critical technologies for major defense platforms and weapons. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on the 5th of June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Programme to build awareness to save life on Earth. A report.
11: The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and the planet Earth. On the occasion of World Environment Day, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, and Minister of State, Kirti Vardhan Singh, will participate in a tree plantation program at Namo Oxygen Park at Maidangadi in the national capital under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. Several union ministers, chief ministers, ministers, MPs, MLAs will participate in World Environment Day events at the state level. The day raises awareness, mobilizes action and promotes environmental sustainability. Through campaigns, events and initiatives, the day inspires individuals and communities to make changes, fostering a sense of urgency and addressing environmental challenges for a sustainable future. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
8: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has extended greetings to the citizens on World Environment Day. In a social media post, Dr. Jaishankar encouraged everyone to work towards a greener, cleaner and more sustainable future. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav also urged the countrymen to renew their pledge to remain inspired by nature for the climate and future. Union Minister Dr. Jitendra Singh will inaugurate two-day lavender festival at Bhadarwa in Jammu and Kashmir tomorrow under the theme Lavender Goes Global. The fourth lavender festival is being held at Government Degree College Bhadarwa in Dora district on June 6 and 7. The festival will witness enthusiastic participation of scientists, startups, aroma industries, entrepreneurs, policymakers, agribusiness stakeholders, students, progressive farmers and representatives of fragrance and wellness companies from across the country. A two-day national workshop on seafood exports will begin in Visakhapatnam today to discuss ways to increase India's seafood exports and strengthen the sector across the country. The workshop will focus on improving seafood exports through better infrastructure, value addition, certification, traceability and policy support. Discussions will also be held on increasing the participation of startups and small businesses in the export sector. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder-squall conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. Heavy to very heavy rainfall is expected during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Tripura and Andhra Pradesh are also likely to experience rainfall today. According to the Met Department, Arunachal Pradesh is expected to witness thunderstorms and lightning today. Moving on to sports, India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament at Kakamegahara Hockey Stadium in Japan today. In the Women's Under-18 Asia Cup, India progressed to the semi-finals after remaining unbeaten in the group stage and will face China today. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
12: Thank you, Naresh. On its front page under the headline, Push for India-Venezuela Ties, Hindustan Times carries a picture of Prime Minister Narendra Modi and Venezuela's acting president Delcy Rodriguez. The paper says the two leaders held talks on forging a long-term energy partnership and collaboration in pharmaceuticals and critical minerals. India-Venezuela vow deeper energy ties, writes the Tribune. As the court sent Lokesh Bajaj, owner of the hotel where 21 people were killed in a devastating fire, to police custody, the Delhi government said it would withdraw its bed and breakfast policy, reports the Pioneer. A picture on its front page shows family members at the last rites of the victims of the fire under the headline, Eight Fires, One Broken Family. Still seething with anger at the Congress ditching it and switching over to the TVK immediately after the Tamil Nadu Assembly elections, the DMK announced its decision to boycott the INDIA block meeting slated for the 8th of June, says a top headline in the Statesman. Rebel Rita Brata's expulsion from TMC void, writes the Asian Age, quoting the West Bengal Assembly Speaker, adding that there are 61 MLAs in the rebel camp. In its editorial titled Funding India's Climate Future, a $1 trillion question, the Hindu writes that India will require roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contributions. Over the longer term, the cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives 6-day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
8: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
13: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार करार दिया है। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत जा रहे हैं, जहां वो सड़कों, बिजली और सनती शोबों में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी पहले हाजिरा जाएंगे और सनती और बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर को एक बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। जना मोदी शाम को दमन जाएंगे और तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
14: इलाकाई बुनियादी ढांचे को खास तौर से फरोग देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 8 लेन वाले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म कबाइली खितों और मुजस्मा इत्तेहाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी शाहराह 56 पर अहम हिस्से को 4 लेन बनाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अवामी फलाह बहबूद की खातिर वो सूरत में एक जदीद 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो 24 घंटे इमरजेंसी और ट्रामा खिदमात फराहम करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम और सनती बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों का भी आगाज किया जाएगा, जिनमें गुजरात में तरसीली निज़ाम की तौसी और वलसाड़ में बिजली की तकसीम की जदीद कारी शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
13: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो जब अपने अपने वतन वापस जाएं तो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। अहमदाबाद में चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आयुष की वजारत ने योग के साथ पूरे साल सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने और सभी तबकों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए योग 365 का आगाज किया है।
10: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
13: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये चैंपियनशिप खेल मुकाबले से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है और इससे दुनिया भर में योग के वसीतर पैगाम की तशहीर का मौका फराहम हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में माली पॉलिसी कमेटी की जानिब से किए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। 6 अरकान पर मुश्तमिल माली पॉलिसी कमेटी ने बुध के रोज 3 रोजा तबादला ख्याल का सिलसिला शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी अहम पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं की थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
15: सरकार ने इफ़्राज़ दर की शरह पर मबनी अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया 4% तय किया है। मरकजी बैंक के लिए इसकी बालाई हद 6% और निचली हद 2% रखी गई है। अप्रैल के महीने में अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया मामूली बढ़कर 3.48% हो गया और ऐसा सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ रसोई की कुछ अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ। चूंकि अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया तय की गई हदूद के अंदर है, लिहाजा इक्तसादी माहिरीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि अहम शरह सूद 5.25% की सतह पर ही बरकरार रहेगी। उनका यह भी कहना है कि मगरबी एशिया महास आरआई की वजह से इफरात जर की शरह और माशी तरक्की को लाहक चैलेंजेस के तनाजुर में रिजर्व बैंक मोहतात रवैया अख्तियार करेगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
13: लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 97 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। डॉक्टर कश्यप साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली आला सतह की उस कमेटी में शामिल थे जो एक साथ इंतखाबात कराए जाने के बारे में कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तश्कील दी गई थी। वो 1983 से लेकर 1990 तक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज रहे। डॉक्टर कश्यप 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने उनके इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि डॉक्टर कश्यप ने अपने मुताले इल्म तसानीफ और अवामी खिदमत के जरिए भारत के आईन और पार्लिमानी जमहूरियत की सूझबूझ के सिलसिले में गरमकदर रोल अदा किया। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर तरुण कपूर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुशीर की हैसियत से मुद्दत कार में एक साल की तौसी को मंजूरी दे दी है। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि वजीर आजम के दफ्तर में जनाब कपूर की तौसी शुदा मुद्दत कार एक साल के लिए इस माह की 10 तारीख से शुरू होगी। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने वाशिंगटन में आलमी बैंक हेडक्वार्टर में नीलकंठ मिश्रा की बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकर्री को मंजूरी दे दी है जिसकी मुद्दत कार 3 साल होगी। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि जब तक नए उद्देदार जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तब तक परमेश्वरन अय्यर की मुद्दत कार में तौसी भी दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इत्तेहाद ने राज्यसभा की 4 खाली सीटों में से 3 तेलुगु देशम पार्टी को और 1 जनसेना पार्टी को देने का फैसला किया है। कल रात अमरावती में एनडीए के इत्तेहादियों के साथ मीटिंग के बाद वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का ऐलान किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस की कलीदी साझेदारी की सताइश की है और जोर देकर कहा है कि रूस के साथ अपना इश्तराक कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की मगरबी मुल्कों की कोशिशें लाहासिल हैं और इनसे आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। सरकर्दा आलमी खबर रसा एजेंसियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू में सदर पुतिन ने भारत की मुआशी तरक्की और उसकी आजादाना खारजा पॉलिसी को सराहा और कहा कि रूस भारत के साथ अपने इक्तसादी राब्तों को वसत देने का पाबंद है। सदर पुतिन ने कहा कि भारत की मुआशी तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो भारत सरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कर रही है। रूस के सदर ने यह भी कहा कि अमरीका के साथ भारत के सिफारती राब्तों से रूस के साथ वक्त की कसौटी पर खरे उतरने वाले उसके रिश्तों में कोई खलल नहीं पड़ता और ना ही ये कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार मानता है और किसी दूसरे मुल्क के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात की वजह से किसी तरह के मनफी मुजमरात की कोई बात नहीं है। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि भारत एक अजीम मुल्क और अजीम जमहूरियत है और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को

0: उस अद देता रहेगा। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुरे अर्ज पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: फितरत और कुरए अर्ज के तहफ्फुज़ के लिए माहौलियात के एतबार से मुस्बत इकदामात करने के लिए बेदारी बढ़ाने की खातिर ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कौमी राजधानी में मैदान घड़ी के मकाम पर नमो ऑक्सीजन पार्क में दरख्त लगाने के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में कई मरकजी वजीर वज़राए आला अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली माहौलियात के आलमी दिन की तकरीबात में शामिल होंगे। मुख्तलिफ मुहिम तकरीबात और इकदामात के जरिए ये दिन लोगों और मुख्तलिफ तबकों को इस बात की तरगीब देता है कि वो पायदार मुस्तकबिल की खातिर माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए तब्दीलियां करें। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एच शंकर ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने सभी की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो ज्यादा साफ, ज्यादा सरसब्ज, शादाब और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल के लिए काम करें। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो आबोहवा और मुस्तकबिल की खातिर फितरत से तहरीक हासिल करते रहने के अहद का इरादा करें। जम्मू कश्मीर के भदरवा में कल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह दो रोजा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे, जिसका मौजू लेवेंडर गोज ग्लोबल है। चौथा लेवेंडर फेस्टिवल 6 और 7 जून को डोडा जिले के भदरवा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है। CSIR IIM की जानिब से मुनक्किदा इस फेस्टिवल का मकसद जम्मू कश्मीर में पर्पल इनकलाब और लेवेंडर पर मबनी देही कारोबार की मुसलसल कामयाबी का जश्न मनाना है। समुद्री अशिया की बरामदात पर दो रोजा कौमी वर्कशॉप आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है, जिसका मकसद भारत की समुद्री अशिया की बरामदात में इजाफा करना और मुल्क भर में इस शोबे को मुस्तहकम करना है। इस वर्कशॉप में बेहतर बुनियादी ढांचे, कदर में इजाफे और पॉलिसी मदद के जरिए समुद्री अशिया की बरामदात में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साहेली कर्नाटक, केरलम, माहे, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल के हिस्सों में दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार जजायर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान आज साहली आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहेगा। आज जापान के ककामी गहारा स्टेडियम में 18 साल तक की उम्र के मर्दों के एशिया कप के हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। पूल ए में 9 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारतीय टीम का ग्रुप मरहले का आखिरी मैच चीनी ताइपे के साथ था, जिसे उसने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 13-1 से जीता था। भारतीय टीम को सिर्फ जापान के हाथों शिकस्त का सामना हुआ था। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में या तो जापान या पूल बी की सबसे ऊपर रहने वाली टीम का मुकाबला करेगी। खवातीन के अंडर 18 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप मरहले में कोई भी मैच न हारने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आज भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उसका चीन से मुकाबला होगा। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं अर्शुमंद अली खान।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वेनेजुएला की कारगुजार सदर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम आज गुजरात दादर नगर हवेली में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफाए अव्वल पर जगह दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का यह बयान भी नुमाया अहमियत के साथ शाये हुआ है कि खुद की फालत के लिए मुतबादल तवानाई जरूरी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के तावुन

0: करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमरीका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में उद्यान परियोजना के अंतर्गत 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। मुख्य समारोह पटना स्थित लोक भवन में होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद

0: न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को उनके सम्मान में पटना हाईकोर्ट में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 8 जून तक आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी भवनों के सौर ऊर्जाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने तथा 1 करोड़ छतों तक सौर ऊर्जा के विस्तार के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य की ओर से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक और ब्रेडा के निदेशक राहुल कुमार ने यह सम्मान प्राप्त किया। राज्य सरकार ने इसे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इधर महिलाओं की सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पिंक बस सेवा के लिए बिहार का चयन प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड के लिए किया गया है। ये पुरस्कार आगामी 20 जून को नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट के दौरान प्रदान किया जाएगा। पिंक बस सेवा को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस उपलब्धि से राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। कृषि विभाग ने खरीफ मौसम से पहले उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत राज्य में 29 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 208 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और निर्धारित मूल्य पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
2: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई द्वारा उपलब्ध कराए गए विश्लेषण या एल्गोरिथम निर्णय लेने पर आधारित नहीं हो सकता है। मसौदे पर लोगों से इस माह की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रचारित उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय छात्र लैपटॉप योजना 2026 के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने बताया है कि यह दावा फर्जी है। कार्यालय ने कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना या विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस वर्ष 5 जून को 1973 से मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: इधर राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी आमजनों से अधिक पौधारोपण कर धरती पर हरियाली बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी वाहनों के उपयोग करने को कहा है। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।
7: दिनांक 5 जून राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
0: इधर पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर व्यक्तिगत और सेवा संबंधी सूचनाओं का सत्यापन तथा संशोधन शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि आज के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड के मैन पुरंदा पंचायत में राजस्व कर्मचारी राणा रणविजय गोपाल को 45,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान राजस्व कर्मचारी के सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर्मचारी पर अवैध अतिक्रमण को हटाने संबंधी रिपोर्ट देने के बदले राशि ले रहा था। रोहतास जिले के विभिन्न स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 142 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे ने संबंधित नियोजन इकाइयों से इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। ये सभी शिक्षक पिछले 10 साल से वेतन ले रहे थे। अररिया जिले में निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूलने वाले बस संचालकों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस संचालकों को यात्रियों से केवल निर्धारित किराया ही लेने का निर्देश दिया। भोजपुर पुलिस मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में 1.5 किलो से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। अररिया जिले के भरगामा प्रखंड अंतर्गत खजूरी पंचायत के बलुआही टोला में एक पोखर में नहाने के दौरान डूबने से 3 किशोरियों की मौत हो गई। अरवल जिला प्रशासन की ओर से बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री और समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़े विषयों पर समीक्षा की गई। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण साई पटना की ओर से विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 7 जून को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली सुबह 6 बजे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू होकर पटना जू तक जाएगी। इस आयोजन में राज्य के विभिन्न खेल संघों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ साथ सशस्त्र बलों के जवान भी भाग लेंगे। रैली का उद्देश्य लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सड़कों पुलों के रखरखाव में कोताही बर्दाश्त नहीं। दैनिक जागरण लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार नौकरी सिर्फ निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही। दैनिक भास्कर ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार में मौसम के दो रंग, दक्षिण में लू, उत्तर में वज्रपात का अलर्ट, मानसून ने केरल में दस्तक दी। प्रभात खबर ने मुजफ्फरपुर अस्पताल में अग्निकांड की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, आईसीयू बन गया शमशान, 6 मरीज जिंदा चले। और अब अंत में मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में उद्यान परियोजना के अंतर्गत 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: इधर आइए, इधर
9: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
11: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर।
12: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म 30 मार खान से। इस गीत को आवाज दिया है कमाल खान, श्रेया घोषाल एवं साथी ने। गीतकार है अन्विता दत्त गुप्ता।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म तलाश से। इस गीत को आवाज दिया है सोना महापात्रा एवं रविंद्र उपाध्याय ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है राम संपत का। लेकिन इस गीत से पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: Akashvani at 90.
1: Work from home? High salary? बस एक क्लिक में? अरे वाह!
2: फंसी!
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
5: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है. श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने. अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म तमाशा से. इस गीत को आवाज दिया है अलका याग्निक एवं अरिजीत सिंह ने. गीतकार है इरशाद कामिल और संगीत है AR रहमान का.

श्रोताओ, कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। इस गीत को आवाज दिया है विशाल ददलानी ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार हैं अभिजीत आनंद।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं अभिजीत आनंद। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।

AIR at 90. आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं अभिजीत आनंद। अब आइए इनके सुर में सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं अभिजीत आनंद। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थे अभिजीत आनंद। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्म से। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म आराधना से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार ने। गीतकार है गुलजार और संगीत है SD बर्मन का।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म घर से। इस गीत को आवाज दिया है किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं गुलजार और संगीत है आरडी बर्मन का। आइए इस गीत से पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो अगला गीत हमने लिया है वो है फिल्म गोलमाल से। इस गीत को आवाज दिया है किशोर कुमार ने, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म शक्ति से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर ने, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म धर्मवीर से। इस गीत को आवाज दिया है मोहम्मद रफी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत। गायक कलाकार हैं कुमारी सुवर्णा घोष।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। गायक कलाकार हैं कुमारी सुवर्णा घोष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। गायक कलाकार थी कुमारी सुवर्णा घोष। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 11 बजने ही वाले हैं, अगला कार्यक्रम आप कुछ ही देर में सुनेंगे। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्स और FM 100.1 मेगाहर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आरंभ करते हैं फिल्म बॉर्डर।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से
2: जुबिन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी की आवाजों में सुनिए फिल्म धड़क 2 का ये गीत

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। अब सुनिए फिल्म फतेह का ये गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा है मनदीप खुराना ने और संगीत रचना है हारून गवीन का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: सयारा फिल्म का गीत सुनिए, फहीम अब्दुल्लाह की आवाज में। गीत और संगीत इरशाद कामिल के हैं।

सुन रहे थे कार्यक्रम नई फिल्मों से, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। श्रोताओं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी 5 जून। श्रोताओं, ये दिवस आखिर मनाते क्यों हैं? यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करने के उद्देश्य से

हम लोग इसे मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1972 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन के बाद की गई थी। तब से यह दिवस विश्वभर में पर्यावरण संबंधी समस्याओं और उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। श्रोताओं, पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए आइए हम लोग पर्यावरण की तरफ लौटते हैं।

श्रोताओं, बिल्कुल हमें पर्यावरण की तरफ लौटना चाहिए। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वायु, जल, भूमि, वन, जीव जंतु तथा प्राकृतिक संसाधन मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मनुष्य का अस्तित्व पर्यावरण पर निर्भर है। यदि पर्यावरण संतुलित और स्वच्छ रहेगा तो मानव जीवन भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। वर्तमान समय में तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है, जो हमें मुश्किलों में डाल सकती है।

श्रोताओं, आज के दिन का मुख्य उद्देश्य यानी विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और उन्हें सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर विभिन्न देशों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम, पर्यावरण रैलियां, संगोष्ठियां तथा जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। श्रोताओं, आपने पर्यावरण से संबंधित किताबों में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जल और ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए और कचरे का उचित प्रबंधन करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली विकसित करना भी आवश्यक है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अगर नहीं अपनाते हैं श्रोताओं, तो आप अंजाम तो महसूस कर ही रहे होंगे।

श्रोताओं, आज के दिन का यानी विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि पृथ्वी केवल हमारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी भविष्य सुरक्षित और समृद्ध होगा। इसलिए हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए। यही आज के दिन की सार्थकता है।

सुन रहे थे कार्यक्रम वो गुलदस्ता, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम नारी लोक।

नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण शब्द का निर्माण बहनों दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि यानी जो हमारे चारों ओर है, और आवरण का अर्थ है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, यानी पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण बहनों उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की समदृष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं और उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त रहता है। बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। पहला उत्सव 1973 में केवल एक पृथ्वी विषय के साथ आयोजित

की गई थी। बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, सतत उपभोग और वन्य जीव अपराध जैसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। यह हमारे ग्रह की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करने और वैश्विक प्रयासों को एकजुट करने का एक सशक्त मंच है। बहनों, प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष की भी एक खास थीम है। 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय है जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी द्वारा दिए जा रहे तत्कालिक संकेतों और उसके जवाब में हमारे द्वारा दिए जाने वाले संकेतों पर यह विषय आधारित है। UNEP का वैश्विक अभियान सभी से आगे बढ़कर और भी अधिक प्रयास करने और पहले से ही गतिमान दुनिया को सही दिशा देने में मदद करने का आह्वान करता है यह विषय। बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के अनेक घटकों जैसे वृक्षों को पूज्य मानकर उन्हें पूजा जाता है। पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। बट के वृक्ष की पूजा भी होती है। जल, वायु, अग्नि को भी देव मानकर उनकी पूजा की जाती है। समुद्र, नदी को भी पूजन करने योग्य माना गया है। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी नदियों को पवित्र मानकर पूजा की जाती है। धरती को भी माता का दर्जा दिया गया है। प्राचीन काल से ही यहाँ पर्यावरण के विविध स्वरूपों की पूजा होती है। पर्यावरण का समस्त प्राणियों के जीवन और इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत होता दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर ही 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रह जैसे ग्रहों की ही तरह धरती का जीवन चक्र भी समाप्त हो जाएगा। बहनों, अब हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस को बस एक दिवस के रूप में ना मनाकर पर्यावरण को बचाने में आगे आएंगे। और अब बहनों, सुनते हैं कुछ और भी खास बात।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट

0: करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बहनों, आज शुक्रवार है और आज के दिन हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत बहनों की पसंद के तहत। तो आइए सुनते हैं आप सब की फरमाइश के गीत बहनों की पसंद में। बहनों की पसंद में पहला गीत सुनते हैं विक्की डोनर फिल्म से। इस गीत को गाया है आयुष्मान खुराना ने और पसंद किया है आप सभी बहनों ने। तिलका मांझी भागलपुर से, सुनीता, स्नेहा, रानी, स्वीटी, संध्या, कुमकुम और दीपशिखा। तेतरी पकड़ा से कौशल्या देवी, अनीता, मृदुला, पूजा, ज्योति, प्रिया, मुस्कान, सेजल, तानी और रोशनी। आदमपुर भागलपुर से अनुपमा, स्मिता, निक्की, सोमा, रोमा, तनिष्का और करिश्मा। तो आइए सुनते हैं आप सबों की पसंद का ये गीत।

बहनों की पसंद में अगला गीत सुनते हैं लगान फिल्म से, आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान और किशोरी गोवारकर की है। और पसंद आप सभी बहनों की सुल्तानगंज भागलपुर से पूनम सिन्हा, अनीता, वाणी सुमन, शिवानी, श्रेयानंदिनी, छोटी रचना और पुचकी, गोणुदाम भागलपुर से वीणा देवी, प्रीति, संजू, महक, मौसम, अंजू, आलिया, रेहाना और सृष्टि, सिकंदरपुर भागलपुर से प्रज्ञा, कौशिकी, गार्गी, चिया, संजना, नेहा, मिक्कू, वैष्णवी और रिमझिम। तो आइए सुनते हैं आप सबों की पसंद का ये गीत।

बहनों की पसंद में अगला गीत सुनते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से। आवाज़ें डोमिनिक सिरेजो, क्लिंटन सिरेजो और लॉय मेंडोसा की है, और पसंद आप सभी बहनों की। खड़गपुर मुंगेर से खुशबू, नैना, श्रेया, काव्या, सीयू, शानवी, गुड़िया, आकांक्षा, पीहू और दीयू। शंभुगंज बांका से शिल्पी, श्वेता, पूजा, चिंकी, नेहा, स्वर्णलता, प्रेरणा, निशु और अंशु। 0 माइल भागलपुर से मधु, मोनी, डॉली, मानसी, स्मिता, पीहू और यशी। तो आइए सुनते हैं आप सबों की पसंद का ये गीत।

बहनों की पसंद में अगला गीत सुनते हैं सीता और गीता फिल्म से, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की है और पसंद आप सभी बहनों की। नाथनगर भागलपुर से वर्षा रंजन, अन्नू, सोनाक्षी, स्नेहा, इसिका, सोना, मोना और रितिका, पुंसिया बाका से शोभा, विद्या, लक्ष्मी, सपना, सिमरन, कोमल, वर्षा, विशाखा, रूपा, स्नेहा और साक्षी, धोरैया गंगदौरी से कवित्री देवी, सावित्री देवी, अन्नू, आंचल, तनुजा, रोशनी और छोटी। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

थर्मल चेक से अनीता, गुड़िया, रिंकू, गुड्डी और रिशिता, सबौर से लिपिका, दीपू, निशु, रवीना, स्वीटी, अंशु और आलिया, अकबरनगर से हीरा, सुदीक्षा, पूजा, सिंपल, प्रतिभा, प्रीति। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम नारी लोक, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। पेश है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गाँव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
3: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
3: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
2: जी,
3: यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतरदेशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
2: जी,
3: इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
2: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
3: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
2: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
3: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
4: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज
3: की। बहुत अच्छे से शासन करिए।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी
1: सेवा में सदैव तत्पर।
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
7: जी महाराज, बहुत धन्यवाद।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
4: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर

0: प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे। भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
2: हुआ? मुझे भी नकली हो सकता है
1: यार। क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
2: कैसे हो सकता है?
1: आया था
2: राजा, नकली ही ना हो सकता।
3: नकली कैसे आ गया?
1: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
3: सभी ने बोला कि नकली है।
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज। यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है। आप सभी निसंकोच कहिए।
1: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की जय! महाराज की
5: जय!
4: महाराज की
5: जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर

बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700001424।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं जय नारायण शर्मा। इनकी आवाज में सुनिए ये मनोन गीत।

लोकरंग कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कहा एक पेड़ मां के नाम अभियान से बढ़ रहा है हरित क्षेत्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल से दो दिवसीय झारखंड दौरे पर, संगठनात्मक बैठकों के साथ राज्य के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड सिपाही नियुक्ति परीक्षा के 888 अभ्यर्थियों को उच्चतम न्यायालय से मिली राहत, अदालत ने राज्य सरकार और चयन आयोग को नियुक्ति पर पुनर्विचार का दिया निर्देश। झारखंड चैंबर की बस परिवहन उप समिति ने बस किराए में 18% बढ़ोत्तरी का लिया निर्णय। और श्रीनगर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पी विशाल और ईशान सिंह ने जीते स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रकृति संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और हरित भविष्य के लिए सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री मरांडी ने लोगों से एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए, उसकी देखभाल करे और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखे। हजारीबाग में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरियाली महोत्सव की शुरुआत की गई। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस मॉनसून में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
1: शुरू के भाती भी इस बार भी 1 लाख पौधा लगाने का संकल्प किए हैं। तो सारे लोगों से, आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को मोटिवेट करें कि जो हजारीबाग को हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है, सारे लोग एकजुट के होंगे तभी इस मुहिम को पूरा किया जा सकता है। एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई काम संभव नहीं है।
0: धनबाद मंडल के राजहरा स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुविधा और सहायता के लिए रांची, मूरी तथा लोहरदगा रेलवे स्टेशनों पर विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अद्यतन जानकारी के लिए सहायता केंद्रों से संपर्क करने की अपील की है। रांची लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज अरगोड़ा चौक स्थित मोहन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल और रक्षा मंत्रालय के उपक्रम मिधानी के सीएसआर सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे तथा पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया कि दौरे के दौरान संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
2: जी 2 दिवसीय सांगठनिक दौरे पर आ रहे हैं, कई बैठकों में जाएंगे, मंदिर का भी उनका भ्रमण है और मंदिर में भी वो माँ की दर्शन करेंगे। यहाँ हमारे ऑफिस ब्यूरो से भी बात करेंगे, कोर कमेटी से भी बात करेंगे। लगातार उनके जो प्रवास है संगठनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनका बड़ा लंबा समय बीता है रांची में, तो हम बहुत उत्साहित हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहले दौरे से, और हमें पूरी उम्मीद है कि नई ऊर्जा का संचार करके वो जाएंगे।
0: झारखंड सिपाही नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2015 से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय ने 888 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को रिक्त पदों के विरुद्ध इन अभ्यर्थियों के दावों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। झारखंड चैंबर की बस परिवहन उप समिति की कल हुई बैठक में बस परिचालन में आ रही समस्याओं पर चर्चा के बाद सभी रूटों पर बस किराया 18% बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे विभिन्न रूटों पर किराए में 40 से 100 रुपए तक की वृद्धि हुई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बस किराए में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। चतरा सदर अस्पताल में अत्याधुनिक आईसीयू सेवा शुरू कर दी गई है। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि आईसीयू सेवा शुरू होने से गंभीर मरीजों को जिले में ही बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी।
3: शुभारंभ हो रहा है, इस सहयोग से है, यहाँ के नए सिविल सर्जन है और इनकी रणसिंहता के कारण हम यहाँ पर आईसीयू का नया शुभारंभ किया था। अभी तक हमारे यहाँ शहर में आईसीयू जो गहन चिकित्सा की व्यवस्था सदर अस्पताल में नहीं थी।
0: गढ़वा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ योजनाओं में राशि निकासी के बाद ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर चले गए हैं।
4: की बैठक में मुख्यतः कार्रवाई के लिए कहा गया था, उसी का अनुपालन प्रतिवेदन देखा गया, तो जिस विभाग के स्तर से कमियां पाई गई थी उसको इंगित किया गया कि ये आपके अनुपालन प्रतिवेदन में इस चीज की कमी है और भविष्य में ऐसा नहीं करने पर जिस भी विभाग के द्वारा उसमें कमी पाई जाएगी उस विभाग के पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक बढ़कर 23,441 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। श्रीनगर में आयोजित प्रथम प्रोफेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पी विशाल और ईशान सिंह ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि आयुष राज, सिया शुक्ला, रिधिमा सिंह, नीरज लकड़ा और अद्या लिया ने रजत पदक हासिल किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कहा एक पेड़ माँ के नाम अभियान से बढ़ रहा है हरित क्षेत्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर, संगठनात्मक बैठकों के साथ राज्य के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड सिपाही नियुक्ति परीक्षा के 888 अभ्यर्थियों को उच्चतम न्यायालय से मिली राहत। अदालत ने राज्य सरकार और चयन आयोग को नियुक्ति पर पुनर्विचार का दिया निर्देश। झारखंड चैंबर की बस परिवहन उप समिति ने बस किराए में 18% बढ़ोतरी का लिया निर्णय। और श्रीनगर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पी विशाल और ईशान सिंह ने जीते स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकरंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। जय नारायण शर्मा की आवाज में सुनिए ये पूर्वी।

0: छूट जाए।
1: आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार थे जय नारायण शर्मा, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। पेश है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुने वाली सभ्य बहिन का दीपा के नमस्कार। बहिन, गर्मी त अब अपनो चरम पर छे और उमस से लोग के हाल बेहाल हो रहलो छे। आब त घर से निकले में 10 बार सोचे ल पड़ी रहलो छे। इस समय देश भर में गर्मी के असर दिखी रहलो छे। पारा लगातार 40 डिग्री के आसपास बनलो छे। गर्मी में नए खाली अधिक तापमान के कारण लोग के दिक्कत बढ़ी जाए छे, साथों में शरीर पर बीमारी के खतरा भी तेजी से बढ़ा लगे छे। तेज धूप आरु पसीना के कारण जहां निर्जलीकरण आरु हीट स्ट्रोक के जोखिम ज्यादा रहे छे, वहीं दूषित पानी, बाहर के खाना आरु बैक्टीरिया पाचन तंत्र के समस्या के कारण बनी जाए छे। यही कारण छे कि ई मौसम में डायरिया, फूड प्वाइजनिंग, उल्टी आरु लूज मोशन के मामला भी बढ़ी जाए छे। ई मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे के जरूरत छे। बहन, सड़क के किनारे खुल्ला में मिले वाला कटलो फल, खुल्ला या बासी भोजन आरु अस्वस्थ पानी संक्रमण फैलावा सके छे। बहुत बार लोग एसी आरु तेज गर्मी के बीच लगातार बदलाव के कारण भी पाचन संबंधी समस्या के सामना करेल पड़े छे। आरु एहनो स्थिति में डायरिया होय के संभावना बढ़ी जाए छे। जब बार बार पतला दस्त होय छे तो शरीर से पानी के साथ जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जेना सोडियम आरु पोटेशियम भी बाहर निकली जाए छे, जेकरा से कमजोरी, चक्कर, निम्न रक्तचाप के कारण अस्पताल तक जाय के नौबत आव सके छे। बच्चा, बुजुर्ग आरु कमजोर इम्यूनिटी वाला लोग में हेकरो जोखिम ज्यादा हो जाए छे। बहिन, डायरिया होला पर सबसे पहला पानी आरु इलेक्ट्रोलाइट्स के कमी का पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी छे। डॉक्टर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS का डायरिया में सबसे प्रभावी माने छे। ORS शरीर में पानी आरु जरूरी मिनरल्स का संतुलन बनाए के रखे में मदद करे छे। बार बार थोड़ा मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। नारियल पानी, नींबू पानी आरु सादा तरल पदार्थ भी फायदेमंद मानलो जाए छे। दस्त में हल्का आरु आसानी से पचे वाला भोजन लेना बहुत जरूरी छे। बहिन, आय बहिन, हमर सिनी विश्व पर्यावरण दिवस मनाए रहलो छे, जे कि हर साल 5 जून का विश्व भरी में मनेलो जाए छे। पर्यावरण, जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण आरु वृक्ष सभ्य का मिलाए का बने छे। पर्यावरण हमरो सिनी के दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखे छे। पर्यावरण शब्द दू शब्द से मिली के बनलो छे, परी आरु आवरण, जेकरा में परी के मतलब छे हमरो सिनी के आसपास या कहलो जाए जे अपनो चारों तरफ छे, वहीं आवरण के मतलब छे जे हमरा सिनी का चारों तरफ से घेरला छे। पर्यावरण जेना जलवायु प्रदूषण से पेड़ पौधा के कम होना मानव शरीर आरु स्वास्थ्य पर सीधा असर डाले छे। मानव के अच्छा बुरा आदत जेना पेड़ का सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना भी पर्यावरण का प्रभावित करे छे। मनुष्य के बुरा आदत जेना कि पानी दूषित करना, बर्बाद करना, पेड़ पौधा के बहुत ज्यादा मात्रा में कटाई करना सिनी पर्यावरण का बुरा तरह से प्रभावित करे छे, जेकरो नतीजा बाद में मानव का प्राकृतिक आपदा के सामना करी का भुगतना ही पड़े छे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने वास्ते मनेलो जाय छे। एकरो शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से होले। 5 जून 1973 का पहलो विश्व पर्यावरण दिवस मनेलो गेलो छले। बहिन, पहला गर्मी के पहचान आम कुआं के पानी आरु मानसून के इंतजार से होय छले। दोपहर तपै छले लेकिन मौसम के एक स्वभाव होय छले। आज वही गर्मी हीटवेव, जल संकट आरु मौसम के अनिश्चितता के साथ आवे छे। शहर में तापमान के नया रिकॉर्ड के खबर आवे लगे छे। गांव में जल स्रोत सूखा लगे छे आरु मौसम के व्यवहार पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित दिखा दिए लगे छे। अचानक आवे वाला बाढ़, लंबा सूखा तक कभी असामान्य गर्मी के लहर हमरा सनी का ई याद दिलाए छे कि पर्यावरण के संकट कोई दूर के खतरा नहीं, बल्कि हमरा सनी के वर्तमान के वास्तविकता छे। के हमरा सनी हमेशे पर्यावरण का खाली पेड़ पौधा, जंगल या फिर वन्य जीव तक सीमित करी का देखे छे।
जबकि पर्यावरण अपनो जीवन के उ व्यापक तंत्र छके जेकरा में हवा, पानी, मिट्टी, नदी, जैव विविधता आरु जलवायु सभ्य शामिल छे। आरु यही तंत्र पर खेती, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य आरु भविष्य निर्भर करे छे। बहिन, साल 2026 वास्ते विश्व पर्यावरण दिवस के थीम छके प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए छे। ई थीम ई विचार का सामने लाने छे कि जलवायु संकट के समाधान खाली तकनीकी उपाय में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित आरु टिकाऊ संबंध स्थापित करे में छे। बहिन, छोटो छोटो काम तो जरूर कर सके छे, जेना कि प्लास्टिक के उपयोग अपनो जीवन शैली से पूरा तरह से बाहर कर देना, एकरो अलावा तालाब, पोखर, नदी का पुनर्जीवित करे वास्ता वर्षा के जल संचयन का बढ़ावा देना बहुत जरूरी छे। घर आरु दफ्तर में ऊर्जा आरु पानी के अनावश्यक बर्बादी का रोकना बहुत जरूरी छे। यही सिनी कुछ छोटो छोटो उपाय करी का अपनो पर्यावरण के रक्षा करे में जरूर हम सिनी सहयोग कर सके छे, जे कि आज को समय में सबसे ज्यादा जरूरी काम में से एक छे। बहिन, त अभी हम सिनी आरु बात करबे एक ठो बढ़िया जनो लोक भजन के आनंद भी लेबे, लेकिन होकरा से पहले ले छिए एक छोटो जनो अंतराल।

सुनिका जरूर बहिनी सुनिका आनंद आबी गेलो होते। बहिन बेटी के उज्जवल भविष्य वास्ते शिक्षा बहुत जरूरी छे। हर माता पिता के ई जिम्मेदारी छे कि वो बिना कोई भेदभाव के अच्छा शिक्षा उपलब्ध करावे। शिक्षित बालिका देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई छे। यही से सरकार द्वारा बीचो बीचो में बहुत तरह के योजना बेटी वास्ते चलेलो जा रहलो छे। होकरे में एक योजना छे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आरु विस्तार से जानकारी प्राप्त करे छे एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से जिकरो वार्ताकार छे के नूपुर सरकार।

महत्वपूर्ण अर्थ है। नई पीढ़ी में नई सामाजिक चेतना जागृत करके उसे भविष्य की जिम्मेवारियों को वहन करने की बौद्धिक क्षमता प्रदान करना, इसके साथ ही साथ उसे सुसंस्कृत और आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक सहयोग करना। समाज का रथ पुरुष और स्त्री इन दोनों पहियों पर गतिमान रहता है। यदि एक पहिया दुर्बल हुआ तो रथ का चलना ही रुक जाएगा। ये पहिए ठीक से चले इसके लिए शिक्षा बालिकाओं और बालकों दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा की ज्योति से चित पर छाए हुए कुसंस्कारों का कुहासा छटता है। उससे जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की शक्ति मिलती है। संस्कार और सुरुचि का अंकुर पनपता है। परंतु जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा या उसे शिक्षित करने का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में हम आज भी बालिकाओं और बालकों में भेदभाव करते हैं। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को शिक्षित करने या उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाने, आत्मनिर्भर बनाने में माता पिता अधिक रुचि लेते हैं। लड़की को पराया धन मानते हुए भविष्य में उन्हें दहेज देना पड़ेगा, इससे अभी से ही भयभीत होकर लड़की को प्रायः उपेक्षित करते रहते हैं, जो माँ बाप के लिए जाने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध है और समाज तथा देश के सुनहरे भविष्य पर कुठाराघात है। जब तक समाज बालकों और बालिकाओं को समान रूप से समझते हुए उसे शिक्षित करने में अर्थात उसे आत्मनिर्भर बनाने में दोनों को समानता से अवसर नहीं देते, तब तक हम अपने परिवार, समाज और देश के सुनहरे भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज में नारी की महत्ता पर महात्मा गांधी ने कहा है कि नारी त्याग की मूर्ति है। जब वह कोई काम शुद्ध और सही भावना से करती है, तब पहाड़ों को भी हिला देती है। मैंने स्त्री को त्याग और बलिदान की भावना का अवतार मानकर उसकी पूजा की है। किसी ने ठीक ही कहा है कि पढ़ी लिखी माँ घर की रहनुमा, अर्थात अगर हम अपने अपने घर में बालिकाओं को लिखाते पढ़ाते या उसे शिक्षित करते हैं, तो भविष्य की किसी घर की माँ को शिक्षित करते हैं, जो अपनी संतानों को अपनी शिक्षा के बल पर उसमें सेवा सत्कार, पारिवारिक एकता को मजबूत करने की क्षमता तथा संस्कारों की मजबूत नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बड़ी कुशलता से निभा पाती है। एक शिक्षित बालिका भविष्य के गृह आश्रम में धर्म के पालन में नारी के रूप में पूर्ण सहयोग करके परिवार को आनंद और सुख शांति बड़ी कुशलता से दे पाती है। माँ का घर और ससुराल की उसकी जिंदगी त्याग और सेवा की यात्रा है। इस कार्य के लिए वह बचपन से ही अपने को तैयार कर लेती है। परिवार की आधारशिला स्त्री के त्याग पर ही टिकी होती है। इन्हीं सभी कारणों से बालिकाओं की शिक्षा परिवार, समाज और देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही एक शिक्षित बालिका अर्थात वह बालिका भविष्य की एक शिक्षित नारी अपनी शिक्षा के बल पर आत्मनिर्भर होकर बहुत हद तक दहेज की प्रताड़ना से स्वयं को और अपने माँ बाप को बचा सकती है। बावजूद इसके आधुनिक भारत में बालिका वर्ग में अनेकों ने शिक्षित होकर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पल्लवित पुष्पित नारी के रूप में कामयाबी की शिखर पर पहुंची है, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है।

जिनमें प्रमुख हैं टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, तीरंदाज दीपिका कुमारी, हरियाणा पुलिस की अनीता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह की, राही सनोवल ने कोरिया में पिस्टल प्रतियोगिता में 25 मीटर के विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनी। प्रसिद्ध आईपीएस किरण वेदी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। राजनीति क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आदि शिक्षित बालिका वर्ग ने पल्लवित पुष्पित नारी के रूप में परिवार, समाज और देश का मान चोटी पर पहुंचाया है। आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र हो, देश की सुरक्षा के लिए जल थल वायु सैनिकों अधिकारियों का क्षेत्र हो या देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों का क्षेत्र हो, आदि देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षित बालिका वर्ग ने नारी के रूप में पल्लवित पुष्पित होकर परिवार, समाज और देश का मान बढ़ाया है और बढ़ा रही है। आवश्यकता है इसे और भी गति प्रदान करने की, क्योंकि आज भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्री की शिक्षा, उसकी आत्मनिर्भरता की प्रतिशत बहुत कम है, जबकि भारत में महिला की आबादी पुरुष की आबादी से आधी है। यद्यपि बिहार सरकार बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हुए कई योजनाओं को चला रही है,

0: AIR at 90.
1: कार्यक्रममा एक बार फेनुसँग बहिनी सिनेके स्वागत छ। त बहिन, तकनीकी खराबीके वजहसँ अभी हमसनी बालिका शिक्षा आज के आवश्यकता पर एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनि रहल छलिए, जकर वार्ताकार छले कविता जायसवाल। इतना अच्छा जानकारी दै वास्ते बहिन कविता का बहुत बहुत धन्यवाद। त कहना न बहिन, एकठो आवाज झूमर सुनलो जाए तो सुनै छियै।

इतना अच्छा झूमर के साथ है बहन, आज को साथ बस यहीं तक। अगला दिन फेनू कुछ नया जानकारी के साथ उपस्थित हुए। आपनों सुनी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहन दीपा के नमस्कार।

सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय के सम्मान में पटना हाईकोर्ट में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। समारोह में कई न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। बक्सर जिले के इटाढ़ी रेलवे कुमटी पर नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आरओबी का उद्घाटन 4 दिन पहले हुआ था। आरओबी का पाया संख्या 5 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने पुल पर आवागमन बंद कर दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस वर्ष 1973 से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर राजधानी पटना के जेपी गंगापथ उद्यान परियोजना में पौधारोपण कर 1 लाख पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक पौधारोपण कर धरती पर हरियाली बढ़ाने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी वाहनों का उपयोग करने को कहा। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा से पुलिस ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले की चौथम थाना क्षेत्र में NH 107 पर एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई। इधर समस्तीपुर के मुसरी खराड़ी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। पटना वाक़े बिहार लोक भवन में मुनक़िद एक तकरीब में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी के बाद जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के एजाज़ में पटना हाई कोर्ट में इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर वज़ीर आला सम्राट चौधरी, नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी, महसूलात व इस्लाहात अराजी के वज़ीर दिलीप जायसवाल, खुराक और सार्फिन तहफ़ुज़ के वज़ीर अशोक चौधरी, इमदाद बाहमी के वज़ीर राम कृपाल यादव समेत रियासती काबीना के कई अराकीन मौजूद थे। तकरीब में कई जजेज, इंतजामी अफसरान और मुअज्जज़ शख्सियतें भी मौजूद थीं। गौरतलब है कि इससे कबल जस्टिस मीनाक्षी मदन राय सिक्किम हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थीं। वो पटना हाई कोर्ट की दूसरी खातून और 48वीं चीफ जस्टिस बनी हैं। बक्सर ज़िले के इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर नवतामीर रोड ओवरब्रिज नुकसान ज़दा हो गया है। हमारे नामानिगार ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इस आरओबी का इफ्तिताह 4 दिन पहले हुआ था। आरओबी का पिलर नंबर 5 पूरी तरह तबाह हो गया है। इसके बाद इंतजामिया ने पुल पर आमदोरफ्त मसदूद कर दिया है। आज आलमी यौम माहौलियात है। ज़मीन पर ज़िंदगी को बचाने और बेदारी पैदा करने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ये दिन 5 जून को 1973 से मनाया जाता है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने इस मौके पर राजधानी पटना के जेपी गंगापथ बोटानिकल प्रोजेक्ट में शजरकारी करके 1 लाख दरख्त लगाने का काम किया। वज़ीर आला ने लोगों से ज़्यादा शजरकारी करके ज़मीन पर हरियाली बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी गाड़ियों को इस्तेमाल में लाने को कहा। इधर हमारे नामानिगारों ने बताया कि आलमी यौम माहौलियात पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म के साथ कई बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। पूरी रियासत शदीद गर्मी की जद में है। कई मकामात का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा पारा हरारत के साथ बक्सर रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। राजधानी पटना का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर दर्जे हरारत में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान रियासत के शमाल मगरिब और शमाल वस्त हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का भी इंतबाह जारी किया गया है। आज मुकम्मल यौम इनकलाब है। आज ही के दिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। खास सरकारी तकरीब पटना के जेपी गोलंबर पर मुनक़िद की गई, जहां वज़ीर आला सम्राट चौधरी और नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी समेत रियासती काबीना के कई अराकीन ने जेपी के मुजस्मे पर गुलपोशी करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। अररिया ज़िले की पलासी थाना इलाके में पुलिस ने छापामारी करके एक शख्स को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा से पुलिस ने 2 कार से कसीर मकदार में शराब के साथ 5 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया ज़िले की चौथम थाना इलाके में NH 107 पर एक तेज़ रफ्तार हाईवा की जद में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों की मौत हो गई। इधर समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना इलाके के गंगापुर गांव के पास एक बेकाबू ट्रक की जद में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्स और FM 100.1 मेगा हर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास

0: की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदम द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री SJYSHANKAR के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत

0: की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलार ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था।

0: कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। आरंभ में सुनिए फिल्म विजय पथ का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत लिखा है जमीर काजमी ने और संगीत रचना है अनु मलिक का।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: तुमसे अच्छा कौन है? फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक की आवाज में। गीत समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

0: AIR at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: संग्राम फिल्म का गीत सुनिए, कुमार सानू, अलका याग्निक और पी सुनंदा की आवाजों में। गीत समीर के हैं और संगीत रचना नदीम श्रवण का।

मलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन का गीत सुनिए। गीत समीर के हैं और संगीत रचना नदीम श्रवण का।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट से, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर यह सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपनी सभा के कार्यक्रमों के साथ फिर उपस्थित होंगे और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे दिल्ली केंद्र से। अभी आज्ञा दीजिए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो

0: रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और
1: हाँ,
0: तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है मैम, आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का कामकाज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, आकाशवाणी के सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो
0: हाँ।
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत,
0: बढ़िया,
1: और दिन में धूप में कौन निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को ही आता है 9 बजे। अच्छा, छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं, क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से
1: मैं
0: शहर से?
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: अच्छा रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी, एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है,
0: अरे
1: बहू
0: वाह,
1: भी
0: यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी, मैं अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं,
0: नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है, और शाम की टाइम तो हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की,
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत ही
1: बिल्कुल,
0: अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: इसलिए मैम अच्छा लगता है उनके साथ। और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की
1: जी
0: सास
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा
1: जी।
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, तू
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।
1: कितनी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से। हाँ
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती
1: जी,
0: हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना घर में, तो सबसे
0: बिल्कुल
1: पहले सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
0: जी तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं।
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह
0: अरे
1: से
0: वाह।
1: मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिस्तर संगीत सविता, भूले बिस्तर गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता है, सुन किचन में चलता रहता हूँ, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर
1: हाँ
0: रुचि है
1: और
0: ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन
1: हाँ
0: बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
0: ये अच्छी चीज
1: और
0: है।
1: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह।
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, और मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी
1: हाँ,
0: बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पीआर जो है जबलपुर का है,
0: जी
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहां पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलिया, इतने पौधे में पेड़ में मतलब फल लगते रहे कि
0: जी
1: मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते हैं जो आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: गाना सुनूंगी जागो शाहिस्तान का, नाचो तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी,
1: पूर्णिमा सैगम। अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान

0: हाँ नहीं करती।
1: यानी अच्छी बच्ची है।
0: हाँ
1: जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम
0: मुझे
1: बचता है।
0: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
1: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब अभी आप छोड़ रखा है इस समय?
0: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
0: जी मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
1: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे
0: हाँ
1: ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी
0: जी
1: परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो आप
0: बीमारी सही कर दे, डांस और
1: बिल्कुल
0: म्यूजिक तो ऐसी चीज है।
1: जी एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
0: हाँ फिट भी रहते हैं बहुत।
1: जी, तो आप बताइए आज
0: जी
1: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
1: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको
0: हाँ
1: सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: जी

0: आप क्या करती हैं?
1: जी मैं आशिका हाउस वाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है
0: जी। और वैसे तो हाउस वाइफ क्यों है यार, परी गर्व से कही हाउस वाइफ है क्योंकि हाउस वाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल बिना रुके बिना थके
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है,
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल
1: जो है।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है।
0: बहुत बढ़िया तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से
1: जी जी जी जी
0: तो बताइए जी, तो आप बताइए आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
1: हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है, गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से हाँ। दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत दे, अच्छी दे, बात दे, है ये।
1: और
0: वही तो हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना
1: तो बिल्कुल आती हैं, सब खेलती हैं,
0: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
1: जी जी जी।
0: तो अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी। तो आप बताइए, पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निकोते है। मैं
0: तो आप कहाँ से हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम,
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता
1: जी
0: है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है। मुझे
0: तो बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: जाग्वार फिल्म में का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गरम गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है, लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: ऐसी हो रही है कि आज सखी सहेली तो मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो हैप्पी बर्थडे के गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: हजारों साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको, पसंद करिए ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं, शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कह कर गई है पता है? कह रही थी जो हुकुम, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किरायेदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। दो दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूं और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं, और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती है। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

yeah!

0: ये लगता है कि यहाँ मिल गया, कि यहाँ मिल गया।
1: अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया, ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूं पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी,

खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी, आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ। आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना, अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है, मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ, आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी युववाणी के प्यारे प्यारे युवा श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में। हर शाम की तरह आज शाम भी आपके चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखने के लिए आप सबके साथ हाजिर है आपकी रेडियो साथी कंचन। आशा करती हूँ कि हमारे युवा साथी सब स्वस्थ होंगे और हमारे दैनिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत इस सुहाने

सफर के साथ करेंगे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा की तरह दिन विशेष की चर्चा के साथ करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम में एक सुंदर सी भेंट वार्ता को सुनेंगे और कुछ नया जानेंगे। साथ ही खेल समाचार से खेल जगत की जानकारी को भी जानेंगे और अंत में कार्यक्रम में समसामयिकी की चर्चा को सुनकर कार्यक्रम से विदा लेंगे। और दोस्तों, कार्यक्रम के इस सफर को गीतों से और भी सुंदर सजाने के लिए सुनते रहेंगे ढेर सारे फिल्मी गीतों को। तो आइए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हम इस सुंदर से गीत के साथ करेंगे। ये सुंदर सा गीत है फिल्म धुरंधर से। इस गीत के गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान। तो आइए सबसे पहले सुंदर से गीत का आनंद लेते हैं।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो साथियों, हम सुन रहे थे इस सुंदर से गीत को फिल्म धुरंधर से, और इस गीत के साथ हमने ढेर सारे संदेशों को भी सुना। तो आइए अब कार्यक्रम में दिन विशेष की चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। धरती सभी मनुष्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन किसी के लालच को नहीं। महात्मा गांधी ने इस विचार को प्रस्तुत किया है। हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल एक उत्सव या रस्म नहीं, बल्कि यह हमारी धरती को बचाने, उसकी देखरेख करने और प्रकृति के साथ अपने रिश्तों को दोबारा से मजबूत करने का संकल्प दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1972 में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना है कि तकनीकी और औद्योगिक प्रगति के दौर में हम उस प्रकृति को ना भूलें जो हमारे जीवन का आधार है। आज हम सब 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारा पर्यावरण कई संकटों से जूझ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, लगातार बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम का चक्र पूरी तरह से बिगड़ चुका है। पर्यावरण को बचाना केवल सरकारों या बड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक हर नागरिक इसमें अपना योगदान नहीं देगा, तब तक कोई भी बड़ा बदलाव संभव नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली कदम उठा सकते हैं। धरती हमारा इकलौता घर है। प्रकृति हमें जीवन देती है, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीने के लिए भोजन। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम केवल बातें ना करें, बल्कि एक सच्चा संकल्प लें कि हम अपनी धरती को हरा भरा, साफ और सुंदर बनाए रखने में अपना पूरा योगदान देंगे। इसी के साथ आज के दिन विशेष की चर्चा यहीं समाप्त होती है। चर्चा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आकाशवाणी डेली ट्रिविया में आज के खास प्रश्न को जानते हैं। आज का प्रश्न है, AIR ने पहली बार दिल्ली से क्रिकेट मैच की लाइव कमेंट्री का प्रसारण कब शुरू किया था। इस प्रश्न के जवाब के साथ हम कार्यक्रम के अंत में साझा करेंगे। तो आइए अब कार्यक्रम में इस पर्यावरण दिवस पर इस सुंदर सी वार्ता को सुनते हैं। वार्ता का विषय है ग्लोबल वार्मिंग और हम, जिसके वार्ताकार हैं मिता मोहिनी। तो आइए सुनते हैं सुंदर से वार्ता को।

दोस्तों माफ कीजिएगा, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब खेल समाचार के खास सेगमेंट में खेल खिलाड़ी से जुड़ी जानकारी को जानते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भारतीय टीम करीब 6 महीने बाद कोई टेस्ट मैच खेलेगी। श्रेयस अय्यर भारत के नए T20 कप्तान बन गए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया गया है। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सीनियर सिंगल्स खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक बनी। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज एस भारत के टेस्ट डेब्यू के 3 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास घोषणा कर दी गई है। तो साथियों, खेल खिलाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तो आइए अब कार्यक्रम में सुंदर से गीत को सुनते हैं। फिल्म सैयारा से इस गीत के गायक कलाकार है सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर। तो आइए इस गीत को सुनते हैं।

0: तो आइए अब इस गीत के बाद कार्यक्रम में पर्यावरण दिवस पर इस सुंदर सी वार्ता को सुनते हैं। वार्ता का विषय है ग्लोबल वार्मिंग और हम जिसके वार्ताकार हैं मिता मोहिनी। तो आइए सुनते हैं सुंदर सी वार्ता को।
1: पर्यावरण उन सभी स्थितियों और प्रभावों का कुल योग है जो जीवों के विकास एवं जीवन पर असर डालती है। पर्यावरण के अंतर्गत वायु, मृदा, जल आते हैं, साथ ही गतिशील रूप में मनुष्य, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीव इत्यादि भी इसके अंतर्गत समाहित हैं। 25 लाख वर्ष पूर्व जब मानव जीवन की शुरुआत हुई थी, तब मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कम मात्रा में करता था। जो ही उनकी आबादी में वृद्धि हुई तो उन्होंने अपने सुख सुविधा के अनुसार कई नए नए आविष्कार किए जिससे अधिक ऊर्जा और पोषक स्रोत हासिल किया जा सके। इसका नतीजा यह हुआ कि अत्यधिक आविष्कार के कारण प्राकृतिक संसाधनों का भारी मात्रा में शोषण हुआ, जिसके कारण आज हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस तथा पर्यावरण प्रदूषण है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि ऊष्मारोधी गैसें हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित होकर पृथ्वी पर सूर्य से उत्पन्न लघु तरंग की विकिरण को आसानी से वायुमंडल पार कर धरती पर आने देती हैं, परंतु दीर्घ तरंग के रूप में होने वाले पार्थिव विकिरण को अर्थात सौर विकिरण को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं, जिसके कारण वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती जाती है, जिसके चलते पृथ्वी तेजी से गर्म होने लगती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक उष्मीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैश्विक उष्मीकरण के कारण पर्वतीय और ध्रुवीय हिम जमाव के पिघलने से नदी घाटियों तथा मैदानों के निचले भाग में बाढ़ और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि से समुद्र तटीय नगरों, अधिवासों और निम्न स्थलीय द्वीपों आदि के डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाता है और पृथ्वी के वृहत भाग में सूखा का संकट मंडराने लगता है। सत्र 1997-98 की गर्मी और वातावरण की अनिश्चितता का कारण अलनीनो प्रभाव रहा। अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो पृथ्वी पर जीवन दुभर हो जाएगा। अतः दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में पृथ्वी को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन राउल एस्ट्राडा की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन में हुए समझौते के तहत विभिन्न राष्ट्रों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की पृथक पृथक सीमाएं निर्धारित की गई। इसके तहत यूरोपीय संघ के राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों में कटौतियां भी की थी। प्रकृति लंबे समय से बढ़ती गर्मी के संकेत दे रही है, लेकिन फिर भी हम लोग चेत नहीं रहे हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है और CO2 के स्तर को 90 के स्तर पर लाना है तो उसके उत्सर्जन को कम से कम 50% घटाना होगा, लेकिन यह बहुत मुश्किल होगी क्योंकि दिनों दिन दुनिया में विकास की अवधारणा जोर पकड़ती जा रही है। विकासशील देश जैसे जैसे आर्थिक सुदृढ़ता और विकास की ओर बढ़ेगी, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ेगी और विकसित देशों को भी अपनी अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए ग्रीन हाउस जैसी गैसों का उत्पादन अधिक मात्रा में करना पड़ जाता है। जलवायु परिवर्तन के भयंकर आर्थिक परिणाम होंगे। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए नीतियां आवश्यक है। नीतियां महंगी होगी। इसके अलावा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए औद्योगिकरण धीमी भी पड़ जाए क्योंकि जैविक ईंधनों की खपत कम करनी पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यह स्वास्थ्य पर ज़्यादा खतरनाक असर दिखाती है। इसके कारण स्नायु दुर्बलता, फुफ्फुस के कार्य में परिवर्तन, दृष्टिहीनता इत्यादि जैसी बीमारियां होती हैं। वर्ष 1999 में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिटेन के हेडले सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि 21वीं सदी के अंत तक धरती का औसत तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 2050 तक सागरों का जलस्तर ऊपर उठने की आशंका है। सागर तट पर बसने वाले 100 करोड़ लोगों के बेघर होने की भी आशंका है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण खेतीबाड़ी भी संभव नहीं हो सकेगा। पीने के पानी के भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अमेजन का विश्व प्रसिद्ध वर्षावन का रेगिस्तान में बदलने की आशंका है, जिससे जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पिछले 50 वर्षों के अध्ययन के अनुसार निष्कर्ष निकाला गया है कि तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार लगातार कम करती जा रही है। हाल ही में पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं पर चर्चा करते हुए इसके समाधान हेतु कहा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाना होगा। इससे बचाने के लिए सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी करनी होगी। इसमें कमी लाने के लिए साफ सफाई का ध्यान तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर जंगल को बढ़ावा देना होगा। साथ ही महंगे तथा महत्वपूर्ण कदम भी उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे तो यह 2030 तक कम हो जाएगा। एक अन्य नवीनतम शोध के अनुसार जर्मनी के वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व के बढ़ते तापमान के कारण भविष्य में पैदा होने वाले बच्चों में बालकों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। इसका कारण यह है कि बालकों का लिंग निर्धारित करने वाले वाय गुणसूत्र में गर्मी सहने की क्षमता अधिक होती है, जबकि स्त्री लिंग निर्धारित करने वाले एक्स गुणसूत्र को अधिक गर्मी सहने में असमर्थता महसूस होती है। इस प्रकार सार्वत्रिक उष्णता हकीकत के रूप में आने वाले डरावने कल की ओर संकेत कर रही है।
0: तो साथियों, हम सुन रहे थे सुंदर से वार्ता को, जिसके वार्ताकार थी मिता मोहिनी। आशा है कि यह सारी जानकारी आप सभी श्रोताओं को पसंद आई होगी और आपने इसे बहुत कुछ सीखा होगा और अपने पर्यावरण के मूल सिद्धांतों को बखूबी समझा होगा। तो आइए अब कार्यक्रम में समसामयिकी की चर्चा को सुनते हैं और जानते हैं देश विदेश के खबरों को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने नए अध्यक्ष के रूप में लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया है। वैश्विक शेयर बाजार पूंजी करण रैंकिंग के अनुसार दक्षिण कोरिया भारत को पछाड़कर छठे स्थान पर पहुंच गई है। जून 2026 में DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा हवा से सतह पर मार करने वाले स्वदेशी मिसाइल रुद्र M2 का सफल उड़ान परीक्षण सफल किया गया। भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक को धीरे धीरे समाप्त कर उत्पादक मूल्यांकन के बदलने की घोषणा की। जर्मनी ने घोषणा की है कि 3 जून 2026 से भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ समसामयिकी की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि श्रोताओं को आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में फन फैक्ट से जुड़े खास बातों को जान ले। 12 नवम्बर 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार और आखिरी बार ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टूडियो में आए थे और हमारे आज के डेली ट्रिविया के प्रश्न का जवाब है, AIR ने पहली बार दिल्ली से क्रिकेट मैच की लाइव कमेंट्री का प्रसारण 1936 में शुरू किया था। तो आइए अब कार्यक्रम में सुंदर से गीत को सुनते हैं, फिल्म तेरे इश्क से, और इस गीत के गायक कलाकार अरिजीत सिंह। और तो आइए सुनते हैं सुंदर से गीत को।

इसी के साथ कार्यक्रम का यह प्यारा सा सफर यहीं खत्म होता है। आशा है कि श्रोताओं को आज के कार्यक्रम में भरपूर आनंद मिला होगा और आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपना मैसेज सुझाव हमारे पते और मेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा पता है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर 812001 और हमारा मेल आईडी है phair@gmail.com। तो अपना सुझाव हमें याद से भेजें। तो अब अपनी रेडियो साथी कंचन को दे विदा। नमस्कार।

युववाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना विनोद राठौर एवं अलका याज्ञिक की युगल स्वर में है। इसे हमने फिल्म बाजीगर से लिया है। गीत के बोल गौहर कानपुरी के हैं। संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने।

हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म का गीत अब आइए सुनते हैं उदित नारायण एवं अलका याग्निक की युगल स्वर में। गीत के बोल महबूब के हैं और संगीत तैयार किया है इस्माइल दर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

कविता कृष्णमूर्ति का गाया फिल्म जीत का एक गीत सुनते हैं। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष तथा कल के कार्यक्रमों की कुछ संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों पर।

अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्त की वार्ता, विषय होगा स्वस्थ जीवन की दिनचर्या। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज गायक कलाकार होंगे उदय नारायण राय। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीकंधा। रात्रि 9:30 रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम होगा शतदल। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन राग मालकौस में। और रात 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कुछ जानकारियां कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि वार्ता। 6:05 का समय है दैनिक चिंतन मनन के लिए। 6:10 पर होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर कल स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर मोहम्मद अनवर हसन की वार्ता, विषय होगा होम्योपैथी में रोगों का उपचार। 6:40 पर रामचरितमानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। प्रातः 7 बजे से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें प्रातः 7 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में कल गायक कलाकार होंगे शैलेश कुमार। 7:20 पर कार्यक्रम कानून की बातें अंतर्गत आप सुनेंगे नूतन कुमारी की वार्ता, विषय होगा ग्राम न्यायालय। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल गायिका होंगी सीमा बनर्जी। 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में कल गायक कलाकार होंगे राजेश कुमार पंडित। 11 बजे आप श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे फोन इन आपकी पसंद, प्रस्तुति सौरभ कुमार की होगी। 12 बजे महिला श्रोता सुनती हैं अपना कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में कल आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग मदमात सारंग में। दिन के 1 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में कल गायक कलाकार होंगे उदय कुमार। 1:30 बजे संताली कार्यक्रम होगा जीवन झरना। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 3 बजे कार्यक्रम होगा प्रादेशिक संगीत। 3:20 पर आप हर रोज सुनते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत। और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर होता है फिल्म संगीत। शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर कल लोकगीतों के कार्यक्रम में गायिका होंगी वीणा देवी। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में कल आप सुनेंगे सुरेंद्र कुमार राय को। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीकंधा। रात्रि 9:30 कार्यक्रम साहित्य भारती।

और रात 10 बजे से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी सुने वाला सब भाई बहनी के मनो के नमस्कार और अपनों के नमस्कार हो दीपा बहन
1: मनो भाई तोरो नमस्कार और सभी श्रोता भाई बहन का दीपा के भी नमस्कार।
0: की हाल समाचार छे?
1: हाल समाचार तो सभी बढ़िया छो मनो भाई। उमस से तो लोग के हाल बेहाल हो रहा छो। गर्मी में नहीं खाली अधिक तापमान के कारण लोग के दिक्कत बढ़ी जाए छे, साथो में शरीर में बीमारी के खतरा भी देखो तेजी से बढ़ी जाए। सर्दी खांसी सब परेशान छो,
0: पाचन समस्या, सर्दी खांसी हो लो है अलगे छो, और उमस से देह हतम नोचनी हो भुमौरी हो जाए छे,
1: तब मौसम अलगे छो
0: बड़ा मुश्किल। लेकिन फिर भी जे छे गर्मी के मौसम छे के भाई सावधानी से रहना छे, छे कि नहीं?
1: एकदम
0: एकदम ताजा खाना खा और जे मौसमी फल छे
1: सब्जी से खूब ज्यादा और पसीना कारण देखो निर्जलीकरण ज्यादा हो जाए छे। वही दूषित पानी बाहर के खाना और बैक्टीरिया से नहीं पाचन तंत्र के समस्या के बढ़ाई दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यही मौसम में देखो कि डायरिया फूड पॉइजनिंग उल्टी से नहीं हो जाए छे।
0: हो जाए छे एकदम, हो छे।
1: हाँ एकदम। तो सड़क के किनारे खुला में मिले वाला कटलो फल हो लो, खुला या बासी भोजन और अस्वस्थ पानी संक्रमण फैलावा सके
0: छे। हाँ सावधान रहना, भोजन और पानी नहीं पीना,
1: नहीं करना,
0: कोई भी हालत में नहीं पीना। आरो जे छे दीपा बहन देखो कि है जे उमस जे अपने कहलो
1: हाँ।
0: है जे बीमारी के रास्ता बची करा नहीं छे। आरो देखो गर्मी के मौसम छे के तो गर्मी तो पड़बे न करथो। अब देखो आषाढ़ के महीना शुरू होते भाई
1: हाँ।
0: मानसून आबे वाला छे, लेकिन है जे एकदम अंतिम समय जे गर्मी छे एकदम बची के रहना छे। आरो देखो गर्मी के संतुलन जो करना छे तो सबके मिलीजुली करना छे, खूब पेड़ पौधा लगाना छे। कहने की पेड़ पौधा एहनो चीज छे जे कि गर्मी के भी संतुलित करे छे, बरसा भी आने छे, आ फल पत्ती साग सब्जी तो देवे करे छे, छे कि नहीं? बढ़िया फर्नीचर वास्ते लकड़ी भी दे छे। ये वास्ते खूब पेड़ पौधा लगाबो। आरो अपने कहे छलो कि कोई खास विशेष दिवस
1: हाँ,
0: भी छे के?
1: दिवस छे के?
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो पेड़ पौधा की बात करिए रलो छो।
0: अच्छा यह संबंधित छो ना?
1: हाँ।
0: आई पर्यावरण दिवस मनेलो जा रहलो छो ना?
1: सही बात बोलो।
0: 5 जून का प्रत्येक वर्ष जे छे पूरा दुनिया में पर्यावरण दिवस मनेलो जे छे। आरो पर्यावरण दिवस ये वास्ते मनेलो जे छे दीपावली कि लोगों में जागरूकता हुआ कि धरती का जे बचाना छे और धरती रो पर्यावरण का जे बचाना छे ओके बाद सरकार और सरकारी संस्था रो
1: जिम्मेदारी
0: नहीं छोड़ना छे।
1: सही सही,
0: एकदम एक एक आदमी गांव ग्राम के जे छे जागरूक रह और धरती पर जे छे खूब पेड़ पौधा लगाव और पर्यावरण का संतुलित कर और खूब सुखी रह। और देखो पेड़ पौधा जे छे बहुत जीव जंतु भी रहे छे
1: एकदम,
0: और जीव जना के मधुमक्खी छे, पेड़ रहता तो मन मधुमक्खी तब मध मिलता हूँ, मधु मिलता हूँ। यारो जना की हो हमरा सिंह भागलपुर जे एकदम फेमस छे और रेशम वास्ता ओकरो कीड़ा देखो पौधे पर पढ़े पर लगे छे। ये वास्ता पेड़ पौधा लगाना छे और प्राकृतिक संतुलित करना छे। आरो देखो है दुनिया जे छे जागरूक होले 5 जून का कि पर्यावरण दिवस केना मनेलो जाए, एकरा पीछू कुछ कहानी छे दीपा बहन
1: बताबो
0: छे कि नहीं? देखो कि पूरा दुनिया में जब कि जलवायु असंतुलित हुआ लगले तो बड़ा खतरा हो गले प्राणी जगत पर भी आ पादप जगत पर भी।
1: हाँ।
0: ये वास्तव जे छे है बात छे 1960-70 के दशक के जब हाँ। दुनिया पहले ही बार जे छे गंभीरता से सोचलकै कि तरक्की जे अंधी दौड़ छे ओकरा में जे छे खाली संसाधन पर जे हमरा से निंगली रहलो छे उपयोग करि रहलो छे ओकर जेकरा कारण औद्योगिकरण होइ छे ओकरा से प्रदूषण फैले छे।
1: हां
0: एकरा जे छे विश्व स्तर पर स्थिति बड़ा भयानक हो गेलो छे, चिंताजनक हो गेलो छे।
1: हां
0: आरो जलवायु परिवर्तन हो रहलो छे, पृथ्वी संकट में छे, साथे साथ जितना पृथ्वी पर रहेवला जीव जंतु छे पेड़ पौधा सब संकट में छे, समझो कि हमरा सनिक अस्तित्व खतरा में छे। ये बस
1: मानव के देखो अच्छा बुरा आदत जेना कि देखो पेड़ का सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना
0: बिल्कुल
1: भी पर्यावरण का प्रभावित करे
0: प्रभावित करे।
1: हाँ मनुष्य के बुरा आदत जेना कि होलो पानी दूषित करी देलको, बर्बाद करी देलको, पेड़ पौधा के बहुत ज्यादा मात्रा में कटाई करी देलको, तो इसनी पर्यावरण का बुरा तरह से प्रभावित करे छे। हाँ जेकरो ई नतीजा होलो कि मानव का प्राकृतिक आपदा के सामना करी का भुगतना पड़े छे।
0: हाँ सबसे ज्यादा प्रभावित मानव।
1: हाँ मनो भाई देखो पहला गर्मी के पहचान की होय छले आम कुआं के पानी, और मानसून के इंतजार से होइ छले छै कि नै? आ दोपहर तपाई छले लेकिन ओन्हो नै कि एकदम परेशान हो जाइ छै हमरा सनी। आब की होइ छै गर्मी में हीट वेव हो गेलो, जल संकट हो गेलो, और मौसम के अनिश्चितता के साथ आबे छै कि नै। आ शहर में देखो कि तापमान के नया रिकॉर्ड के खबर तो रोज आबी रहलो छै कहीं ना कहीं से। गांव में जल स्रोत सुखिरलो छै, अचानक आवे वाला बाढ़, लंबा सूखा, त कभी असमान गर्मी के लहर हमरा सनी के याद दिलाय छै कि पर्यावरण के संकट कोई दूर के खतरा नै छै मन्नो भाई, बल्कि हमरा सनी के वर्तमान के वास्तविकता छै। तब हम सनी देखो हमेशा पर्यावरण का खाली पेड़ पौधा, जंगल या फिर वन्य जीव तक ही सीमित करी कर देखे छे, जबकि पर्यावरण अपनो जीवन के उ व्यापक तंत्र छे जेकरा में हवा, पानी, मिट्टी, नदी, जैव विविधता और जलवायु सभे से मिली
0: सब सब मिली बने।
1: देखो हम सनी कुछ कर सके छे, छोटो छोटो काम जेकरा से कुछ फायदा तो जरूर होते, जन के सबसे पहला प्लास्टिक के उपयोग का अपनो जीवन शैली से पूरा तरह से बंद करी
0: देना।
1: एकरो अलावा देखो कि तालाब, पोखर, नदी का पुनर्जीवित करे वास्ता वर्षा के जो जल होय छौ ओकरा संचयन कर बढ़ावा देना बहुत जरूरी
0: छै। गड्ढा खुनी रखो बारी झारी में, वर्षा पड़ले पानी जमा करी रखो,
1: एकदम एकदम
0: मैं की करता हूं,
1: जरूरी छै
0: जल स्तर के बराबर रखो, चापाकल तो सूखा नहीं पारे,
1: कने कि तो सुखिरलो छै पानी बही के। आ देखो घर आरो दफ्तर में ऊर्जा आरो पानी के अनावश्यक जे हमसनी बर्बादी करे छै ओकरा भी रोकना बहुत जरूरी छै। यही सनी देखो मनो भाई कुछ छोटा छोटा उपाय करी के पर्यावरण के रक्षा तो हमसनी जरूर कर सके छी, जे कि आज को समय में सबसे जरूरी काम छै।
0: बिल्कुल। आरो देखो अपने बड़ा अच्छा जानकारी दिलो दीपावन, एकदम एकदम से फोड़ी फोड़ी के बतियेलो। आरो देखो है जे होले ना तो बड़ा विश्व स्तर पर जे छे 1972 में स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक मानव पर्यावरण सम्मेलन में आयोजित होले, आरो ओकरे में है फैसला ले लो गेले कि प्रत्येक वर्ष के 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस मनेलो जेते। आरो देखो आजकल जे छे दुनिया भर में 150 अधिक देश आरो उनको सरकार जे छे शैक्षणिक संस्थान हुआ, चाहे नागरिक समूह हुआ, वैज्ञानिक सब आम लोग मिली जे छे पर्यावरण संरक्षण के प्रति कार्रवाई जागरूकता करी रहलो छे,
1: कुछ ना कुछ उपाय करी
0: रहलो छे। आरो है 2026 के जे पर्यावरण दिवस के जे थीम छे नाम छो प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए छे कि नहीं। तर है थीम के जे विचार सामना आवे छे तो लगा लगे छे कि हाँ जलवायु संकट के जे समाधान छे केवल तकनीकी रूप से नहीं हुआ पा रहा कि बाहर जलवायु बहुत गर्म छे भाई अंदर एसी लगाए ला, सफेद एसी नहीं लगा पड़ते, सफेद फ्रिज नहीं लगा पड़े, ये बस एना को उपाय कर लो जाए कि सब घरों में एसी जो व्यवस्था रहा। और एक उपाय छो कि पर्यावरण दिवस का जरूर और ऐसा भी पेड़ पौधा लगाबो छे कि नहीं। और देखो कि है वर्ष जे है 2026 के वैश्विक अभियान दुनिया भर में जे सरकार और शहर संस्था और आम नागरिक से भी अपील करलो जा रहलो छे कि भाई पर्यावरण से मिली जुली के रह, नहीं तो पर्यावरण गंभीर संकट में जेथो आरो खतरा
1: बढ़ते फिर तब
0: कहना कि देखो अपने जना बतले लो बहुत चीज जना कि समुद्र के जल स्तर बढ़ा लगले, जंगल कटी गले, चाहे विनाशकारी आग लगी गले, ग्लेशियर पिघला लगल, पानी बढ़ता डूबत पूरा संसार, आरो गर्मी भी बेहिसाब मना उम्मीद से ज्यादा पड़े लगे
1: छे।
0: एक बात यो जानकारी की बात छे दीपा बहन की 2026 के जे मेजबानी कर रहल छे विश्व पर्यावरण दिवस के और अजरबैजान नामक देश ने कर रहल छे। आरो के छे की अजरबैजान नामक रो जे देश छे हुनको मेजबानी ये वास्ते कर रहल छे कि हुनी जे छे जलवायु संरक्षण पर बड़ा ही सक्रिय योगदान हुनी दुनिया भर में करल छे। पर्यावरण दिवस का नहीं भूलना छे
1: एकदम,
0: घरों में जत्ता भी परिवार छो उनको एक एक पेड़ होना चाहिए, और जनक नया मेहमान अते एक पेड़ लगाबो, फिर अगला साल एक पेड़ लगाबो। देखो पूरा जिंदगी में कितना पेड़ लगी थे घर का आसपास, बारी झारी, खेत खलियान, खेतों के अड्डा छे वहाँ पेड़ लगाबो, कुछ फल वाला पेड़ लगाबो, कुछ फर्नीचर वाला पेड़ लगाबो, और घरों में तो एगो तुलसी के पौधा जरूर रखो छे कि नहीं। घरों के भी पर्यावरण में संतुलित रहता हूँ, शुद्ध हवा रहता हूँ, और दवा से एकदम बिल्कुल मुफ्त रहो, लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जीवो, और खुशहाल जब होते दीपा बहन तब कुछ गीत नाद होते, भगवान की आराधना होते छे कि नहीं।
1: गीत तो बहुत जरूरी छे,
0: की विचार छो एकटा
1: एकदम एकदम देवी गीत अभी हम सुनै छिए।
0: अब एकटा जे छे देवी गीत सुनै छिए हमरा सनी,
1: ओकरो बाद आगू बात करबै
0: मिश्रा आरो सहेली से, ओकरो बाद फिर आगू बढ़बै हमरा सनी।

0: हाँ दीपावली
1: के तो बढ़िया लगलै सुने में
0: एकदम पूरा वातावरण देखो एकदम पवित्र हो गेलै आरो गीतनाद आरो भी होते और जानकारी के बात भी होते।
1: हाँ एकदम एकदम
0: हमरा सनी अखनी जे छै कुछ आवश्यक संदेश सुनै छै।
1: हाँ
0: ओकरा बाद फिर आगू बढ़वा की
1: ठीक है।
0: आवश्यक संदेश सुनै छै।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: हाँ दीपा बहन, है चलो आवश्यक संदेश।
4: हाँ।
3: और देखो पर्यावरण जे छे और प्रकृति है, दोनों एक दूसरा से जुड़लो छे
4: एकदम,
3: जो कि मानव ना ज्यादा पेड़ पौधा काटला गेले।
4: हाँ। और
3: उद्योग लगेला जेते तो देखो कि यह प्रकृति जाने छे कि कनक संतुलन कर लो जाए।
4: हाँ।
3: ये वास्ता प्रकृति के हमरा सनी का कोई चुनौती चैलेंज नहीं करना छे, प्रकृति के साथ रहना छे
4: एकदम,
3: छे कि नहीं?
4: हाँ।
3: और प्रकृति अपनो जे संरक्षण अपना प्रहरी जे बनते एकरा से पहले हमरा सनी प्रहरी बननी चाहिए।
4: हाँ।
3: पर्यावरण का एकदम बचा के रखिये ताकि ना कि हमरा सनी और पर्यावरण के जे संबंध छे एकदम अन्योन्याश्रय छे, एक दूसरा पर निर्भर करे छे
4: एकदम,
3: छे कि नहीं?
4: हाँ।
3: ये वास्तव है पर्यावरण बचाना छे। तो जे छे आपने कुछ आरो विशेष अनलो छे कुछ बातचीत की लगे छो कि है एक वार्ता छे हमरा सनी वास्ता, प्रकृति पर्यावरण की प्रहरी है एक वार्ता सुनी छे हमरा सनी, पूर्व प्रसारित वार्ता छे के आ वार्ता कार छे को
4: गेंदालाल
3: साहनी जी। अब सुनी छे टा वार्ता फिर आगू बढ़वे।
5: जिस प्रकार सुंदर फूल से आकर्षक माला, सुंदर धागा से सुंदर वस्त्र, सुंदर ईंट से सुंदर मकान का निर्माण होता है, उसी प्रकार जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झील पर्यावरण के ऐसे घटक हैं जो प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। प्रकृति जो पर्यावरण की प्रहरी है को बचाना हमारा पुनीत कर्तव्य है। ब्रह्मांड में जितने ग्रह उपग्रह हैं उनमें पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीव जंतुओं का निवास है। मालूम हो कि यह जीवन प्रकृति के वजह से है। ईश्वर ने प्रकृति और उसके साहचर्य पर्यावरण के रूप में हमें एक अनमोल खजाना दिया है। इस खजाना का विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारा दायित्व है। प्रकृति ने हमारी सुख सुविधा के लिए सब कुछ दी है। प्रकृति हमारी माँ के समान है, वह दया करना प्रेम ममता का सागर है, अतः हमें उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। कहा गया है कि नारी यदि माँ तो महाकाल भी है, नारी एक सूत्र तो जाल भी है, कितना अंतर है नारी में, मगर नारी यदि नीर तो मसाल भी है। आज हम मानव माँ रूपी प्रकृति का दोहन एवं शोषण करने के लिए उतावले हैं। हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, हम

प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का विवेकपूर्ण उपयोग न कर उसका भोग एवं दुरुपयोग में लगे हुए हैं। यह सर्वविदित है कि जब भी मानव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति प्रतिकूल होकर हमसे बदला लेगी। जिस प्रकार प्रत्येक माली चाहता है कि हमारी वाटिका हमेशा हरा भरा रहे, वह एक सजग प्रहरी के समान अपनी वाटिका को सींच और संवार कर आकर्षक बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि कोई हमारी वाटिका का दोहन व शोषण करे। उसी प्रकार प्रकृति भी नहीं चाहती है कि हमारे काम में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप करे। लेकिन आज मानव जाति अपने विवेक को भूलकर प्रकृति के दोहन में लगा हुआ है। इसके कारण प्रकृति की वाटिका पर्यावरण असंतुलित होकर इतना भयावह हो रहा है कि वह जीव जंतुओं के लिए विनाश का कारण बनता जा रहा है। पृथ्वी के समस्त प्राणी अपनी बुद्धि व जीवन कर्म को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। संतुलित पर्यावरण में सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, किंतु जब पर्यावरण में निहित एक या अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात से बढ़ जाती है या पर्यावरण में विषैले तत्वों का समावेश हो जाता है तो वह पर्यावरण जीव जंतुओं के लिए घातक बन जाता है। पर्यावरण में होने वाले इस घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। आज विश्व में पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे विश्व के प्राय सभी देश किसी न किसी रूप से आक्रांत और पीड़ित हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद बृहद पैमाने पर कल कारखाने लगाना तथा पर्यावरण को तिलांजलि देकर वैज्ञानिक आविष्कार करना शक्ति और विकास का प्रतीक मान लिया गया है। कल कारखाने लगने चाहिए, वैज्ञानिक आविष्कार होने चाहिए, लेकिन पर्यावरण को बचाते हुए ऐसा करना चाहिए। वायु, जल और मिट्टी, यह जीव जंतुओं के तीन बुनियादी आधार खतरे में है। सभ्यता के विकास के शिखर पर बैठे मानव आज इन तीनों प्रकृति प्रदत्त उपहारों को तहस नहस करने पर उतावला है। विज्ञान के आविष्कार ने वातावरण को इतना विषैला कर दिया है कि खासकर शहरों एवं महानगरों में शुद्ध प्राणवायु का मिलना दुर्भर हो गया है, क्योंकि पृथ्वी के फेफड़े वन समाप्त हो रहा है। पेड़ पौधे के अभाव में प्राणवायु की शुद्धता और गुणवत्ता घटती जा रही है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा वृक्षों की कटाई से बहुत से जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं और बहुत से विलुप्ति के कगार पर हैं। यह शुभ संकेत नहीं है। आज पर्यावरण का बदलता रूप विश्व को ऐसे पड़ाव पर ले आया है जहां मानव जीवन ढलता नजर आता है। इसके कारण प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने मुंह बाए हमें निगलने के लिए खड़ी हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि विश्व वैश्विक ताप, बढ़ता प्रदूषण और घटती वन वृक्षों की संख्या हमें सावधान करा रही है। अब हम जीव जंतुओं के दूसरे प्राण तत्व जल की महत्ता पर गौर करें। कहा गया है कि जल ही जीवन है, इसके बिना जीव जंतुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। उद्योगों का हानिकारक पानी एवं कचरा, नगरों महानगरों का नालियों से बहता हुआ प्रदूषित पानी नदी में गिराए जा रहे हैं। मरे हुए जीव जंतुओं को नदी में फेंक रहे हैं। भारतीय संस्कृति के प्रतीक एवं नदियों में श्रेष्ठ एवं पूजनीय गंगा, जिसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता के लिए विश्व प्रसिद्ध था, आज मानवों द्वारा इतना प्रदूषित कर दिया गया है कि वह पीने लायक नहीं रहा है। जल प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। इसके कारण जलीय जीव पर संकट मंडराने लगा है। एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि हमारे देश में सतह के जल का 80% भाग बुरी तरह प्रदूषित है और भूजल का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है। इसके कारण विश्व में जलवायु परिवर्तन अपना रौद्र रूप दिखाने को आतुर है। प्रकृति का अनमोल रत्न भूमि, जो जीव जंतुओं का आधार है, अपना वास्तविक स्वरूप खोती जा रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं अतिशय चराई के कारण भूमि की ऊपरी परत की मिट्टी वर्षा के साथ बहकर नदी में जा रही है। फसल एवं सब्जियों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। यह हानिकारक रसायन वर्षा जल के साथ मिलकर नदियों में गिरती है और नदी को भी प्रदूषित कर जलीय जीवों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। नदियों में गाद जमने के कारण बाढ़ और सूखा का संकट बढ़ता जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि पर्यावरण की प्रहरी प्रकृति, जो संकटों से घिरता जा रहा है, को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। इसका सीधा उत्तर

0: है कि अब जगो, देर मत करो और प्रकृति को बचाने का न केवल संकल्प लो बल्कि उस संकल्प को कार्य रूप में परिणत करो। इसके लिए जनमानस को इस चुनौती के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया जाए ताकि उसके अस्तित्व को संकट में डालने वाले तथ्यों की उसे समय रहते जानकारी हो जाए और स्थिति को सुधारने के उपाय भी गंभीरता से किया जाए। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा पर्यावरण की प्रहरी प्रकृति को बचाने के लिए विभिन्न उपायों से जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वृक्षारोपण के साथ साथ उसके संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा हम जानते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आज हम भौतिक सुख को ही सब कुछ मानकर अध्यात्म को पीछे छोड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथ इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां प्रकृति को माँ का स्थान दिया गया है। प्रकृति के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार पूजनीय माना गया है। प्रकृति व पर्यावरण को बचाने के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। विश्व मीडिया जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र ने तो पर्यावरण बचाने के लिए एक सार्थक पहल कर रही है। मीडिया तो जनमानस को जगा एवं चेता रही है कि अब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, नहीं तो आने वाला दिन और विकराल रूप धारण करेगा। वैश्विक ताप, जलवायु परिवर्तन एवं पृथ्वी के रक्षा कवच के रूप में ओजोन परत का क्षरण एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जो जनमानस को पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके लिए प्रकृति के प्रति प्रेम एवं आदर की भावना, सादगीपूर्ण जीवन पद्धति और वानिकी के प्रति नई चेतना जागरूक करनी होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य के मूलभूत अधिकारों में जीवन के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण को शामिल किया जाए। इसके लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, अपने रहन सहन में बदलाव लाना होगा। यह सुखद समाचार है कि वर्तमान केंद्र सरकार गंगा को निर्मल व अविरल बनाने के लिए कृत संकल्पित है तथा योजना को तत्काल मूर्त रूप दिया जा रहा है। आइए आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुनः हम प्रकृति की ओर लौटने तथा पर्यावरण की प्रहरी प्रकृति को बचाने का संकल्प लें।
1: हाँ, कितना अच्छा जानकारी पे लिए। देखो मन्नू भाई, आज तो पर्यावरण दिवस छको, तो ओकरे से आधारित एक ठो बाह्य ध्वनिंकन पर आधारित हमसनी एक ठो भेंट वार्ता सुनै छी।
2: अच्छा, अच्छा।
1: भेंट वार्ताकार छको अरविंद मिश्रा और भेंट करता छको मनोज प्रसाद यादव।
2: सुनै छी
1: हमसनी।
3: श्रोताओं नमस्कार, आज पर्यावरण दिवस के इस मौके पर हम उपस्थित हैं भागलपुर स्थित सुंदरवन में और हमारी भेंट हो रही है एक जाने माने पर्यावरणविद श्री अरविंद कुमार मिश्र जी से। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। और आपने की नाम होले पूरा परिचय दिया आपने।
4: हमारा नाम होले अरविंद मिश्रा, हम मंदार नेचर क्लब संस्थापक छे और बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी छे। हम बिहार सरकार के स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर भी रहे 15 साल तक।
3: अच्छा, तो है पर्यावरण दिवस के मौका पर आपने जो क्लब छे ओकरो की गतिविधि रही छे?
4: पर्यावरण दिवस के दिन मुख्य रूप से हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं।
3: जी जी।
4: जो मुद्दे होते हैं आज के ज्वलंत मुद्दे, उससे पब्लिक को परिचित करवाते हैं और उसके समाधान में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए इस पर विशेष जोर देते हैं और समस्याओं को बताकर उसके समाधान के विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं।
3: जी अच्छा, ये जो है पर्यावरण दिवस है मौका पर जना आजकल देख लो जैसे कि काफ़ी जागरूकता फैल रहा है और अपने से जो अपने सनी जो व्यक्तित्व छे अपने तो बहुत दिनों काम कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण में, तो पर्यावरण संरक्षण वास्ते गाँव ग्राम स्तर पर की उपयोग प्रयोग कर लो जाए।

0: सबसे बड़ा जरूरी छे स्थानीय समुदाय के भागीदारी।
1: हाँ,
0: हम सनी की करे छे कि सरकार पर सब भरोसा करे छे कि सरकार सब काम करते हैं। यही सबसे बड़ा गलती छे
1: जी।
0: अकेला सरकार कुछ नहीं कर पा रहा।
1: बिल्कुल,
0: जब तक समुदाय ओकरा साथ नहीं देते तब तो संरक्षण संभव नहीं छे।
1: जी जी जी, आरो सही में छे, सरकार भरोसा नहीं बैठना चाहिए। कहना कि हमरा सनी जहाँ रहे छे तो अपनो क्षेत्र होले, अपनो आसपास होले, ओकरा बचाना, संवर्धित करना, संरक्षित करना हमरा सनी काम छे। अच्छा है जे पर्यावरण दिवस छे, है मौका पर अधिक ऑक्सीजन दे वाला कौन कौन पेड़ पौधा का अपने मने श्रोता भाई बहनी कहे कि लगाए वास्ते?
0: एकरा में बरगद, पीपल और फाइकस ग्रुप के जितना भी पौधा छे
1: जी जी,
0: ये सबसे बेसी ऑक्सीजन दे छे
1: जी जी।
0: तो हमरा यहाँ ये सब पेड़ के पूजा भी करलो जाए छे
1: जी जी,
0: जाए छे।
1: हाँ हाँ,
0: तो पूजा ये लेली करलो जाए छे कि ये प्राणवायु हमरा सबके दे छे।
1: सही छे।
0: तो बरगद पीपल जैसे पौधा के हमरा सनी के, एकरा अलावा भी बहुत सारा पौधा जेकरा में कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, तितली, कीड़ा मकोड़ा ये सब जे वास करे छे
1: जी जी,
0: जैसे सेमल, गुलर, गंभार, तो ये सब के भी प्लांटेशन हमरा के करना चाहिए
1: जी। बिल्कुल सही, पीपल खास करी के, पीपल बरगद ऐसे जे बड़ा पौधा होइ छे, अधिक दिन तक जिए छे और ऑक्सीजन के एकदम भरपूर मात्रा में उत्सर्जन भी करे छे। आरो अपने का हम कहे पूछे छे भाई अपना श्रोता भाई बहन की तरफ से कि छोटो पौधा में जे कि हमरा सनी आंगन में लागी जाए, देहरीप लागी जाए, उसराप लागी जाए, ओकरा में कौन कौन पौधा हमरा सनी के लगाना चाहिए?
0: एकरा में हमरा लगे छे कि जैसे छोटा पौधा में लेमन ग्रास छे,
1: हाँ हाँ,
0: मेहंदी छे, बाकस छे, जे औषधि औषधि पौधा छे
1: जी जी,
0: वो सब रो साइज मोस्टली छोटा हो छे। पीपल के लत हो छे, पीपली जे खाय वाला
1: अच्छा,
0: पीपली
1: अच्छा,
0: छे जी जी, ओकरो लत हो छे।
1: अच्छा अच्छा,
0: सब हम घरों में लगने छे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो जर आरो छोटा छोटा पौधा में जैसे कुकरौंधा, बहुत कम आदमी जाने छे।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: कहीं कटी गले खून आ रहलो छे, तनी जा ओकरो रस गाड़ी के चिपका दो, तुरंत ब्लीडिंग बंद हो जाते। तो हर रंग के उपयोगी पौधा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है तुलसी।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तुलसी एंटीबायोटिक भी छे
1: जी जी,
0: एंटीऑक्सीडेंट भी छे, और तुलसी तो ये ले ली भगवान का चढ़ल जाय छे।
1: हाँ हाँ,
0: कि सर्वगुण संपन्न
1: संपन्न छे। बिल्कुल सही, तुलसी एना पौधा छे कि सर्वगुण संपन्न छे, भगवान को भी चढ़ल जाय छे, और औषधीय गुण रो एकदम भंडार छे। आरो इहो देखलो जाय छे कि आजकल सरकार ने जे छे या अपने संस्था द्वारा भी पौधा लोगों को देलो जाय रहलो छे कि मुफ्त में ले जा रहा लगाबो। आज कल खास करी जे कि फर्नीचर वाला पेड़ छे, जेना कि सागवान होले, शीशम होले, आरो एकटा महोगनी पेड़ पौधा भी होय छे, जे पौधा लगेलो छे बच्चा पेड़ बनि जाय छे, हैसनी फर्नीचर वाला पौधा रो पेड़ के रूप में जे परिवर्तित हुआ है, मने कोन पौधा लगेलो जाय फर्नीचर वास्ते?
0: फर्नीचर वाला तो ले ली तो सागवान छे, शीशम छे
1: जी जी,
0: सखुआ छे
1: जी जी,
0: महोगनी छे,
1: हाँ हाँ,
0: ये सब और जामुन छे
1: जी जी,
0: ये सब पानी का बांधी के रखे छे।
1: अच्छा अच्छा,
0: पानी में छठे छे।
1: हाँ हाँ जी जी,
0: और एकरो फर्नीचर भी बहुत सुंदर और टिकाऊ बने छे
1: जी जी।
0: तो फर्नीचर बहुत सारे लोग कलम के लकड़ी भी इस्तेमाल करे छे फर्नीचर में, लेकिन कलम के लकड़ी तनता नरम हो
1: नरम हो छे। हाँ, वो फर्नीचर नहीं बना।
0: हाँ, लेकिन सबसे बढ़िया छे सखुआ और शीशम।
1: हाँ हाँ,
0: और महोगनी।
1: अच्छा,
0: सागवान
1: जी जी जी,
0: ये सब पौधा फर्नीचर वास्ते
1: लगाना चाहिए,
0: सबसे बढ़िया छे।
1: आरो पेड़ पौधा में तो बहुत पशु पक्षी के भी बास होइ छे, कहलो जात पशु भी छोटो मोटो जीव कीड़ा मकोड़ा छे, तो एकरा ये हैसनी भी हमरा सनी पर्यावरण वास्ते बहुत अच्छा छे। तो पर्यावरण दिवस के मौका पर अपने भागलपुर के आसपास के जनता के की संदेश देवे?
0: हम भागलपुर के जनता के यही संदेश देवे, मेन जे हम कहलिए कि अपने से झाड़ू उठाबो।
1: बिल्कुल,
0: एकरा से सेहत भी ठीक रहते, कोई कहीं मॉर्निंग वॉक और जिम जाए की जरूरत नहीं पड़त।
1: हाँ,
0: अपने से झाड़ू उठाबो, गैया पालो, बथान में, बगान में 2 घंटा रोज पसीना बहाबो,
1: पेड़ पौधा लगाबो,
0: ओकरो सेवा करो, पानी दहो, तोरो मतलब दिनचर्या भी खुश बढ़िया, दिल भी खुश।
1: हाँ, पर्यावरण भी स्वस्थ
0: और सेहत भी ठीक
1: जी। आपने इतना अच्छा अच्छा जानकारी दे दिए, एकरा वास्ते आपने का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हाँ दीपा भाई, इतना सुंदर जानकारी आपने दिल भेल।
3: हाँ,
2: भेटवार्ता कर के बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै की।
3: हाँ,
2: आरो जे छै अपने जे छै कुछ आरो गीत ना दे सुनवाए के एकटा पर्यावरण गीत हमरा सनी सुनै छिए
3: जरूर जरूर
2: छै कि नै कलाकार छिके बलराम यादव जी आबो सुनै छिए एकटा पर्यावरण गीत

0: AIR at 90.
1: हाँ दीपा बहन, इतना सुंदर छलो है पर्यावरण गीत।
2: हाँ
1: ओकरा बाद हमरा सनी कुछ आवश्यक संदेश भी सुन लिए
2: एकदम,
1: और हमरा सनी फिर जे छै किसान भाई बहन के स्वागत करै छियै।
2: हाँ
1: और एकदम हमरा
2: अभी देखो मौसम के जानकारी लेना बहुत जरूरी छै,
1: बहुत जरूरी
2: छै, कनी पेड़ पौधा लगेबे के ना।
1: हाँ
2: थोड़ा पता होना चाहिए।
1: हाँ
2: तो यही सब कुछ बताबो।
1: हाँ मौसम सूचना के छै जे जहाँ तक हमरा सनी छै, मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जे छै पूर्वानुमान अवधि में 3-7 जून के दौरान
2: हाँ।
1: दक्षिण बिहार के जिला में जे छै आसमान साफ रहे के संभावना छै, मौसम शुष्क भी यानी कि सूखा रहे के संभावना छै। हालांकि कल जे छै अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, भोजपुर जिला में गरज चमक के साथ हल्का वर्षा भी होय के अनुमान छलै।
2: अच्छा।
1: और ओकर साथ जे छै लू जे छै हीट वेव जकरा कहै छै स्थिति बने रहे के संभावना छै। अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बतेलो गेलो छै। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-65% और दोपहर में 20-25% रहे के संभावना छै। और अगला दू दिनों में 4-8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पछुआ पवन चले के संभावना व्यक्त कर लगलो छे। जबकि एक बाद जे छे पूर्वानुमान के अवधि में शेष दिनों में दक्षिण पूर्वी हवा बहे के संभावना छे। आरो देखो कुछ कृषि सलाह भी छे श्रोता भाई बनी वास्ता। धान के लंबी अवधि वाला जे धान के किस्म होय छे जेना कि सबोर श्री, स्वर्णा, सब एक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा आरो BPT 5204 के नर्सरी स्थापित करी ला अपने सनी। और स्वस्थ पौधा के लिए जे छे नर्सरी में सड़लो गोबर के खाद व्यवहार करो, एकरा से मना पैदावार बढ़िया होते, नर्सरी बढ़िया बनता। और नर्सरी के क्यारी के चौड़ाई जे छे 1.25 से 1.50 मीटर तथा लंबाई सुविधा अनुसार रखना छे।
2: अच्छा।
1: एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के नर्सरी तैयार करो।
2: अच्छा।
1: और बीज के व्यवस्था एकदम प्रमाणित स्रोत से ही लेना छे। और हाँ। बीज उपचार करी के ही बीज बिछड़ा गिराना छे।
2: अच्छा।
1: अब मक्का फसल वास्ते दीपा बहन, खरीफ मक्का के बुआई कर लेना छे किसान भाई बहनी का।
2: अच्छा।
1: और खेत के जुताई में जे छे 10-15 टन गोबर का सड़लो खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करना छे।
2: अच्छा।
1: बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर, 50 किलोग्राम पोटास के व्यवहार करना छे। और अनुशंसित मक्का का किस्म ही उपयोग करना छे जेना कि सुवान छे, देवकी, शक्तिमान एक, शक्तिमान दू, राजेंद्र मक्का और शंकर ये गंगा 11 ऐसी अनुशंसित नस्ल के मक्का के एक उपयोग करो, फसल बढ़िया होता।
2: अच्छा।
1: मूंग वास्ता जैसे पिछात मूंग के फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट के निगरानी करना छे। एक बचाए वास्ता जैसे थाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना छे।
2: अच्छा।
1: आ सब्जी में जैसे भिंडी में आजकल देखलो जाए कि माइट और फल तथा तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसल में फल मक्खी के प्रकोप छह नियमित निगरानी करना छे। और माइट का प्रकोप जो दिखाई पड़ा
2: अच्छा।
1: तो एपिथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर एक छिड़काव करना छे। और भिंडी में फल और तना छेदक के प्रबंधन हेतु डाइमिथियोट 30 EC प्रति 1.5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना छे। आरो देखो पशुपालन वास्ता जे छे पशु जे हमरा सनी के असली धन होय छे कृषि के साथ साथ, पशु का गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव वास्ता टीकाकरण जरूर करवाबो।
2: अच्छा।
1: सभी जितना भी दुधारू पशु छे ओकरा तो जरूर टीकाकरण करवाबो। आरो नया जे गेहूं के भूसा छे भूसा खिलाए के पूर्व जे छे पहला मतलब 2 घंटा ओकरा पानी में फुलाए दो।
2: अच्छा।
1: आरो 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा में दाना में जरूर मिलाओ जैसे कि पशु का चाही खेत है।
2: अच्छा।
1: और पशु स्वस्थ रहता हूँ।
2: अच्छा।
1: तो है दीपा बहन मौसम सूचना और कृषि सलाह।
2: हाँ।
1: अब जे छे
2: गीत संगीत
1: एक एकदम झमकवा ना की झूमर हमरा से सुनाय छे।
2: हाँ।
1: और बाद फिर चारो
2: बातचीत करते। हाँ
1: अब सुनै छी एकटा झूमर।

0: हाँ दीपा बहन एत्ता सुंदर एकदम झूमर होले मन झूमि गेले छै कि नै आर आबै जे छै हमरा सनी एकटा
1: पूर्व प्रसारित वार्ता सुनै छियै औषधीय एवं सुगंधित पौधों की वैज्ञानिक खेती जकर वार्ताकार छै के डॉक्टर रणधीर कुमार
0: आबो सुनै छियै एकटा वार्ता।

प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जड़ी बूटियों का अभाव होने लगा है, परंतु कृषि प्रधान प्रदेश के नाते औषधीय एवं सुगंध पादप उत्पादों की गुणवत्ता युक्त कच्चे माल की आपूर्ति हेतु प्रदेश में इसके कृषिकरण के विस्तार की अनुकूलताएँ मौजूद हैं। औषधीय एवं सुगंध पौधों की कृषि से बहुत तेरे लाभ हो सकते हैं, जैसे मानक गुणवत्ता युक्त उत्पादों के लिए कच्चे ताजे व सही माल की सतत उपलब्धता उन्नत प्रजातियों को उगाकर की जा सकती है। इसकी खेती द्वारा बंजर एवं अनुपयुक्त भूमि का उपयोग होता है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु वैकल्पिक निरंतर आय का स्रोत प्रदान करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औषधीय एवं सुगंध पौधों की वैज्ञानिक खेती, औषधि उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री निर्माण उद्योग तथा अन्य उद्योगों में इसकी बढ़ती हुई मांग, जबकि जंगलों द्वारा की जाने वाली आपूर्ति क्रमशः घट रही है, के चलते लाभ अर्जन का जरिया बन सकती है। व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई प्रजातियों की कृषि प्रणाली विकसित हो चुकी है। वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों से किए जा रहे सतत शोध के द्वारा नई प्रजातियों के उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि को सुलभ बनाया जा सकता है। इस प्रकार बिहार में सफलतापूर्वक उगाए जाने वाले औषधि एवं सुगंध पौधों के बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ। असिंचित, कम उपजाऊ, क्षारीय या अम्लीय मृदाओं में उपयुक्त औषधि एवं सुगंध पौधे जैसे अश्वगंधा, सदाबहार, सतावर, सर्पगंधा, कालीहारी, कवाँच, भूई आंवला, कालमेघ, इसबगोल, गुड़मार, ग्लोई, पुनर्नवा आदि औषधीय पौधे तथा सुगंध पौधे जैसे पामारोजा, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, खस, मसकदाना, तुलसी आदि की खेती हम कर सकते हैं। कृषि और दानिकी में उपयुक्त औषधीय एवं सुगंध पौधे जैसे सर्पगंधा, कालमेघ, पिपली, वन प्याज, कवाँच, गिलोई, रत्ती जिसे गुंजा भी कहते हैं, काली मुसली, सफ़ेद मुसली, वच, कलिहारी और सुगंध पौधों में पचौली की खेती हम कृषि उद्यानिकी के साथ कर सकते हैं। बिहार की फसल प्रणाली में उपयुक्त औषधि एवं सुगंध पौधे में जो हम खेती का जरिया के बारे में संक्षिप्त विवरण देना चाहते हैं, जैसे सर्पगंधा जिसे रावोल्फिया सर्पेंटाइना भी कहते हैं, इसका जड़ का उपयोग, बहुत सारे उपयोग होते हैं इसमें। इसके जड़ में रिजरपाइन, अजमलिन, अजमलेसिन, सर्पेंटिन ये सब अल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिसका उपयोग बहुत हाइपरटेंशन आदि बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है। और आप जानें कि ये फसल जो होता है 18 से 20 महीने का होता है और बहुवर्षीय फसल है, और इनकी रोपाई जो है जून से दिसंबर तक में की जाती है। बीज से इसका बिचड़ा तैयार करके इसकी हम रोपाई भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बिजाई भी कर करके हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। औसत उत्पादन इसमें 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है और यह जो है प्रतिवर्ष आपका 20 से 30 क्विंटल जड़ इसमें उपलब्ध हो जाता है पहले साल में, और इस तरह से इसका 5 साल 7 साल तक हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। अश्वगंधा जिसे वैज्ञानिक नाम बिथेनिया सोमनीफेरा होता है, इसका भी जड़ का ही इस्तेमाल होता है और इसमें बिथेनिन नामक एल्कलॉइड होता है जो बहुत सारे बीमारियों को शुद्ध ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है। यह फसल 5 से 6 महीने का है और ये अगस्त से फरवरी के बीच में इसे हम बुआई करके बिचड़ा तैयार करते हैं और इसी बीच रुपाई कर सकते हैं, और इसमें जो जड़ का उत्पादन क्षमता है ये 5 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है और प्रति हेक्टेयर इसमें हम 30 से 40 हज़ार रुपया इसमें इनकम प्राप्त कर सकते हैं। कालमेघ ये जिसे एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, जिसको बिहार में हम लोग कालमेघ को दूसरे नाम से चिराता नाम से बोलते हैं, इसका हम पंचांग इस्तेमाल करते हैं, यानी पांचों अंग, जड़, पत्ता, तना, फूल और फल सारे इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें जो है एंड्रोग्राफी लीड और नियोग्रो गोफिडिल नामक एल्कलॉइड होता है जो बहुत पुराने से पुराने ज्वर में भी इसका इस्तेमाल होता है, ब्लड प्योरीफायर जिसको रक्त शोधक भी कहते हैं इसमें इस्तेमाल होता है। यह फसल 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है और यह जून से सितंबर के बीच में इसकी बिजाई की जाती है और औसत उत्पादन 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, जिसमें आप यदि लाभ की बात करें तो इसमें फर्स्ट ईयर पहले साल में 30 से 50 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर, दूसरे साल में इसी तरह से 20 से 25% तक मुनाफा बढ़ते चला जाता है। सतावर की खेती हम लोगों से अनभिज्ञ नहीं है, ये एस्पेरगस रेसिमोसस नामक ये पौधा होता है जो बहु

0: ये फसल है, इसके कंद रूपी जो जड़ होते हैं इनका इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में इसका किया जाता है। इसमें साइपोजेनिन और ग्लाइकोसाइड्स इसमें उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से मोटापा कम करने में या महिलाओं में दूध की मात्रा बढ़ाने में, जानवर का भी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह फसल 12 से 18 महीने का होता है, जिसका हम अगस्त से फरवरी तक बिजाई और रोपाई करते हैं, और इसमें औसत उत्पादन 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, जिससे कि प्रति हेक्टेयर में 70 से 75 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें मुनाफा हो सकता है। कलिहारी एक बहुत ही अच्छा फसल होता है, जो जिसको ग्लोरियोसा सुपरबा भी कहते हैं। इसका भी कंद और बीज दोनों का इस्तेमाल होता है। इसमें कोल्चिसिन नामक पदार्थ रसायन पाया जाता है। यह फसल 6 से 7 महीने का होता है। जून से सितंबर के बीच में इसकी बीज बोई जाती है, और इसका कंद का उत्पादन 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर, या फिर आप बीज यदि उत्पादन करना चाहते हैं तो 2 से 3.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें उत्पादन मिल जाता है, और प्रति हेक्टेयर लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया की आमदनी इसमें प्राप्त हो सकती है। सफ़ेद मुसली, ये क्लोरोफाइटम बोरिबिलियनम, बहुत ही अच्छा, ये इसमें अंगुली नुमा कंद होता है, और इसमें एस्पोनियंस और नामक एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जिसका बहुत सारे जिसको ताकत के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह फसल 7 से 8 महीने का होता है, और मई जून में इसकी रोपाई कंद के द्वारा की जाती है। यदि हम इसका उत्पादन क्षमता देखें तो ताज़ा जड़ का उत्पादन 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर, या सूखा जड़ जो है 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। इसमें 1.5 से 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर तक की कमाई हो सकती है। इसबगोल बहुत ही कम दिन का प्लांटेगो वाटा जिसका नाम है फसल होता है। इसका बीज और छिलका, या बीज का छिलका जो होता है इसका इस्तेमाल होता है, और यह पेट की सफाई के लिए खास करके दस्तावर होता है जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसका फसल पूरे 4 से 5 महीने का होता है, और ये नवंबर दिसंबर के महीने में इसकी बुआई होती है, और 10 से 15 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर में इसका बीज का उत्पादन हो जाता है, डाला जाता है। इसमें जीरानियाल नामक पदार्थ उपलब्ध होता है। ये भी बहुवर्षीय फसल है। सिट्रोनेला के ही तरह से ही इसका भी तेल का उत्पादन और लाभ आमदनी प्राप्त हो सकती है किसान भाइयों को। लेमन ग्रास में पत्ता युक्त तना का इस्तेमाल होता है, और यह जो है जून जुलाई में लगाने का समय है। इसमें भी स्लिप्स लगाते हैं, और इसमें सिट्रोनाल नामक सुगंधित तेल प्राप्त होता है, और इसमें तेल की मात्रा और सब दूसरे जो सगंध पौधे हैं उससे ज़्यादा, लगभग 200 से 250 लीटर तक इसमें से तेल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, और इसमें उत्पादन क्षमता भी, इसमें भी आमदनी का खूब अच्छा जरिया है। किसान भाइयों को 60 से 80 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आमदनी प्राप्त हो सकती है। खस की बात करें, जहाँ पर बिल्कुल सूखा ज़मीन है, बारिश कम होती है, रेनफेड इलाका है, जैसे अपने बिहार में जमुई, बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद का जो इलाका है, औरंगाबाद का, ऐसे जगहों पर वेटिवर की खेती हम बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और इसमें वेटिवेरॉल नामक एक सुगंधित तेल प्राप्त होता है। यह भी बहुवर्षीय फसल है। 2 वर्ष के बाद इसकी जड़ का इस्तेमाल होता है। इसमें जड़ इसके जड़ में से तेल निकाले जा सकते हैं, और इसमें 50 से 60 लीटर तक तेल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, और किसान भाइयों को इसकी कोई अलग से खेती न करने की ज़रूरत पड़ती है। ये मेड़ के ऊपर भी आप लगा दें तो इसमें से 2 साल के बाद आपके इसमें जड़ प्राप्त हो जाता है, और 25 से 40 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आपको इसमें तेल प्राप्त हो जाता है।
1: हाँ दीपा बहन, हाँ, इतना सुंदर वार्ता चले पौधा आरो जे छै हमरा सनी के कार्यक्रम आरो भी बात करबै, है ना, सुंदर सुंदर वार्ता गीत नाद अनबे करै छै। अखनी जे छै हमरा सनी के कार्यक्रम के समय समाप्ति छै, त सब विदा लै छै। सबका मनो के नमस्कार
2: आ सभी का दीपा के भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे रांची केंद्र से।

0: भारती, भारत का लोक सेवा, भारत का लोक सेवा प्रसारण।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रादेशिक समाचारों के साथ समाचार कामिनी। पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। दो सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। दो दिवसीय दौरे पर भाजपा ने सांगठनिक कार्यक्रम भाजपा ने देखा सांगठनिक कार्यक्रम तथा मिश्रा ने मेदिनीनगर में जी प्रमंडल मिश्रा ने मेदिनीनगर लापता होने के मामलों की बच्चों के लापता होने के मामलों की भूमि माफियाओं पर शिकंजा माफियाओं पर राज्यपाल ने लोकभवन परिसर में किया पौधारोपण। पर्यावरण परिसर में किया पौधारोपण। आंदोलन बनाने संरक्षण को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जुड़ने का एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले दो दिन धनबाद बोकारो समेत तेरह जिलों के लिए जारी और तेरह जिलों के लिए जारी और समाचार विस्तार से। अब समाचार विस्तार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवास नेताओं झारखंड मुक्ति मोर्चा और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक। विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेता बैजनाथ राम ने बताया कि कार्यकर्ताओं बैजनाथ राम ने बताया कि मुख्यमंत्री से दोनों राज्यसभा सीटों पर मुख्यमंत्री से दोनों राज्यसभा सीटों पर मांग की गई है। प्रत्याशी उतारने की मांग निर्णय के लिए मुख्यमंत्री निर्णय के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है।
2: जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता
1: राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मजा गया है की एक झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दोनों सीटों पर दावा करने मोर्चा द्वारा दोनों सीटों पर दावा करने नेताओं ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन नेता राजेश ठाकुर ने स्पष्ट किया पार्टी नेता राजेश ठाकुर ने स्पष्ट किया अंतिम राज्यसभा चुनाव को लेकर सोरेन ही लेंगे सभी दल मिलकर चुनावी रणनीति तय करेंगे। सभी दल मिलकर चुनावी रणनीति तय करेंगे।
3: सभी लोग सोच समझ करके फैसला लेंगे और इस संदर्भ में जो फैसला लेंगे और हमारे प्रभारी आदरणीय जो बेहतर है वो हमारे प्रभारी आदरणीय जी लगातार बात बता पा रहे क्योंकि वही इसके अध्यक्ष समर्थन कर रहे और प्रदेश के अध्यक्ष समर्थन हमारे
1: इस बीच अब से थोड़ी ही देर बाद रांची के बीच थोड़ी ही देर बाद रांची के स्टेट महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के सब जहां चुनाव की रणनीति और गठबंधन के जहां चुनाव की रणनीति और समन्वय बनाने पर गंभीर चर्चा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर कल सुबह 11 बजे रांची पहुंचेंगे। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रांची स्थित महत्वपूर्ण प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है।
4: राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला झारखंड और भी उनका निकटता है।
1: हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज के लिए सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। के लिए सैनिक सम्मेलन मुख्यालय के निर्देशन में हुआ। इस कार्यक्रम मुख्यालय के निर्देशन में हुए। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जवानों के पेंशनरों ने और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को सुना और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को सुना। कर्नल समस्याओं को श्रीवास्तव ने कहा कि लंबित समस्याओं को मुख्यालय भेज कर फीडबैक लिया जाएगा।
5: यदि किसी की कोई समस्या थी तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है करेंगे। वो करेंगे। वो करेंगे। वो करेंगे। वो करेंगे। वो

0: इंडियन आर्मी के किसी भी आर्म से करेंगे और उस रिपोर्ट को संपर्क करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो रिजॉल्व हो बताएंगे और इंश्योर करेंगे कि वो रिजॉल्व हो फीडबैक लेंगे कि वो रिजॉल्व हुई कि नहीं हम फीडबैक लेंगे कि वो रिजॉल्व हुई कि नहीं।
1: राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की निरंतर अभियानों से उन्होंने कहा कि निरंतर अभियानों से डीजीपी ने जल्द माफिया पर नकेल कस डीजीपी लापता माफिया पर नकेल बरामदगी के लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एसआईटी गठन की बात कही। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य में पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया। उन्होंने नागरिकों से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर सुरक्षित किया जा सकता है। भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर झारखंड विधानसभा में नेता देशवासियों को बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पर्यावरण को नुकसान के लिए मानव पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मानवीय गतिविधियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहराते हुए प्रधानमंत्री के नाम अभियान से जुड़ने की अपील मां के नाम अभियान से जुड़ने नागरिक को एक पौधा उन्होंने कहा कि हर नागरिक को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
2: लोगों से अपील भी करना चाहूंगा लोगों से अपील मां करना चाहूंगा आज से पर्यावरण को हम सब लोग बचा सके पर्यावरण को हम सब लोग बचा सके पर्यावरण ठीक भी हमसे सब लोग अगर हर व्यक्ति का एक योगदान हर व्यक्ति का एक योगदान हो सकता है तो पौधा लगा करके हो सकता है।
1: लोहरदगा के बक्सी डिपा में नवनिर्मित जैव विश्व पर्यावरण दिवस का उद्घाटन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर संदीप कुमार मीणा ने किया और उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सांसद ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रकृति की बढ़ती गर्मी को बेहद जरूरी है प्रकृति की रक्षा नागरिकों से बेहद जरूरी है लगाने और नागरिकों से एक संरक्षित लगाने और इस पार्क को संरक्षित रखने की अपील की। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के लिए आज क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के लिए स्थल में नए बेलगढ़िया घर पुनर्वास स्थल में नए उप डाकघर का उद्घाटन किया गया। मंडलीय डाक अध्यक्ष ढिल्लों महतो राजीव रंजन मंडलीय डाक रूप से इसका शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को बैंकिंग क्षेत्र में मिलेगा सेवाओं का लाभ अपने ही क्षेत्र में मिलेगा।
3: उप डाकघर नहीं था बहुत परेशानी हमारे बहुत जल्दी लोगों को जानकारी ले सकता है।
1: और अब मौसम का हाल राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा और संताल परगना सहित 13 जिलों के लिए अलर्ट हवाओं और वज्रपात का ऑरेंज वहीं रांची और खूंटी सहित 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राजधानी रांची में 6 और 7 जून को बारिश की संभावना है। झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग के 5वें मुकाबले

0: राज्य बारिश और वज्रपात की संभावना, मौसम बारिश और वज्रपात धनबाद और बोकारो समेत जिलों के लिए जारी किया और अलग जिलों के लिए जारी किया।
1: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 समाचार बुलेटिन किया जाएगा, सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हुए हैं। हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्त की पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है स्वस्थ जीवन के लिए दिनचर्या।
4: मानव जीवन की अमूल धरोहर स्वास्थ्य को माना गया है। आज का मानव स्वास्थ्य का अर्थ केवल इतना ही मान रहे हैं कि हम लोग बीमार नहीं रहें या रोग से बचे रहें। इसके लिए आधुनिक चिकित्सा का सहारा केवल इतना ही रह रहा है कि हम लोग बीच बीच में समय पर अपने शरीर की जांच करवाएं और अपने स्वास्थ्य मापदंड को बनाए रखें। यह तो शरीर को ठीक रखने का एक सरल उपाय मात्र है। इससे हम मानव के जीवन के सही उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा हम लोग अपने जीवन शैली को पीछे मुड़कर देखें। हमारे पूर्वजों ने जो संसार में किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया, उन सब की जीवन शैली कैसी रहती थी। सभी महान व्यक्तियों की जीवन शैली प्राकृतिक नियमों का पालन दृढ़ता से क्या करती थी। वे लोग स्वास्थ्य के विषय में किसी भी तरह का समझौता नहीं क्या करते थे। स्वास्थ्य ही किसी भी राष्ट्र की शक्ति की नींव है। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान और संसार का किसी भी वस्तु से अधिक मूल्यवान है। बीमार रहने की अपेक्षा स्वस्थ रहने में कम खर्च पड़ता है। भारत के प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के चरक संहिता में स्वास्थ्य की आवश्यकता एक श्लोक में बताया गया है। धर्मार्थ काम मोक्षनान मारोग्यम मूलमुत्तमम रोगास्तास्या फर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य धर्म, जीविकोपार्जन, इच्छानुकूल जीवन का उद्देश्य और अंत में मानव जीवन की तृष्णा शांत कर मोक्ष की प्राप्ति है। इन चारों को पाने का वास्तविक साधन पूर्ण स्वास्थ्य ही है। अस्वस्थ मनुष्य न तो किसी भी धर्म का सही ढंग से पालन कर सकता है। अस्वस्थ लोग जीविका उपार्जन, परिवार का पालन पोषण को भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, बल्कि बीमार अस्वस्थ मनुष्य अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र में एक बोझ की तरह हो जाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही हमारे जीवन व्यवस्था में पूर्ण स्वास्थ्य और आरोग्य यानी निरोग को ही प्रथम महत्व दिया गया है। हमारे पूर्वज पूर्ण स्वस्थ रहना मनुष्य का अनिवार्य धर्म मानते थे। इसलिए स्वास्थ्य साधन के नियमों के भी धार्मिक आचरण का अंग बनकर प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में स्पष्ट मिलते हैं। इसके लिए मनुष्य जीवन में व्रत त्यौहार आदि का समायोजन किया गया है। मानव जीवन की पूर्ण सफलता का मूल मंत्र स्वास्थ्य को ही माना जाता है। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, चाहे वे कार्य शारीरिक रूप से किया जाए या मानसिक रूप से, उस कार्य को हम तभी संपादित कर पाते हैं जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। पुरानी कहावत है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। अंग्रेजी में हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, अर्थात स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। आज के व्यस्त जीवन में शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, इंजेक्शन, विटामिन लोग ले रहे हैं। उन औषधियों और विटामिनों से शारीरिक गतिविधि में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, परंतु हमें औषधियाँ विटामिन का व्यवहार से पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती है। सच्चा सुख निरोगी काया, यह मंत्र हमारे जीवन को मूल उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। अपने जीवन में प्रकृति प्रदत्त खाद्य पदार्थ, प्रकृति जो दे रही है उसे प्राप्त करना चाहिए। स्वत्परिवेश

योगासन एवं आध्यात्मिक चिंतन को प्राथमिकता देकर हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। इन सारी बातों पर हमारा ध्यान पूरे जीवन बनाए रखना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहें, तो इसके लिए हमें स्वस्थ जीवन की दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या एवं स्वस्थ प्रकरण के समस्त साधनों पर इसके महत्व को समझना होगा और उस दिनचर्या के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का सख्त जरूरत होगी, तभी हम स्वस्थ जीवन जीने के हकदार हो सकेंगे। स्वास्थ्य कोई बाजार में नहीं मिलता है। हम लोग जैसी जीवन शैली की नींव डालेंगे, वैसा ही जीवन का आनंद अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। सामान्य तरीके से अच्छे स्वास्थ्य के 6 राज आज बताए जा रहे हैं। पहला हवा, दूसरा पानी, तीसरा दूध, चौथा गुड़, पांचवा सलाद या हरी सब्जियां, अंकुरित अन्न, और छठा है हंसना। पहला हवा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। जो लोग मुंह ढककर सोते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेते हैं और बीमार पड़ते हैं। रात में सोते समय खिड़की खोलकर सोएं ताकि साफ हवा आए तथा गंदी हवा बाहर जा सके, उसे शरीर में फुर्ती ताजगी बनी रहेगी। दूसरा पानी। शरीर को पानी की बहुत जरूरत है। दिन भर में कम से कम 10 गिलास से 20 से 25 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। भोजन के साथ पानी पीना जहर के समान है, अतः भोजन के साथ पानी न पिएं, लेकिन 1 घंटे बाद पानी पीना अमृत के समान है। सुबह उठकर 3-4 गिलास पानी पीने से कब्ज दूर होता है। पानी जब भी पीवें, गिलास से धीरे धीरे घूंट के साथ पीने की आदत बनावें। तीसरा नंबर है दूध। आज के परिवेश में हम लोग रात्रि का भोजन देर से करते हैं और सोने समय दूध पीते हैं, वह स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से बहुत गलत है। रात्रि सोने समय दूध पीने से शरीर रोगी बनता है। रात्रि भोजन के 1 घंटा बाद पानी पीना बहुत लाभकारी है। दूध लाभकारी है, इसे नाश्ते में लें, इसे दही बनाकर दिन के भोजन के साथ लें, छाछ के रूप में घूंट घूंट करके ले सकते हैं। दूध स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, लेकिन सोने समय रात्रि में नहीं लें। चौथा नंबर गुड़। गुड़ हमारे रोग को दूर करता है। गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। गुड़ खून साफ करता है, फेफड़े की गंदगी को साफ करता है तथा शरीर की ऊर्जा शक्ति मिलती है। चीनी सफ़ेद जहर है। 3 सफ़ेद चीज, चीनी, नमक और मैदा, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत नुकसान करता है और शरीर को बीमार बनाए रखता है। पांचवा सलाद। हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, मौसम के अनुसार सलाद जैसे गाजर, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, चुकंदर, अमरूद, मौसम के अनुकूल सभी तरह के हरी सब्जियां एवं फल खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इससे पेट ठीक रहता है। अंकुरित अनाज जैसे मूंग, चना, मसूर, मूंगफली, सोयाबीन, मेथी, गेहूं, मटर, बाजरा अंकुरित कर खाने से शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी यानी विजातीय तत्व जो रोग पैदा करते हैं शरीर से बाहर कर देता है। साथ ही सारे विटामिन पोषक तत्वों को प्राकृतिक रूप से पोषण प्रदान कर शरीर के साथ घुल मिलकर स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह कभी साइड इफेक्ट नहीं देता है, लेकिन आज का विटामिन शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। कांति, सुंदरता भी बनाए रखता है। ये अनाज को 8 घंटे तक पानी में भिंगो कर रखने से अंकुरित तैयार हो जाएगा, भोजन तैयार हो जाएगा। इसका प्रयोग आहार के रूप में भोजन के साथ करें। स्वास्थ्य के लिए प्रकृति का वरदान स्वरूप अमृत है। हंसना। हंसने से पेट तथा शरीर में कंपन होता है एवं रोग ठीक होता है तथा भोजन जल्दी पचता है। मुस्कुराने की आदत बनाने से इससे आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी, साथ मानसिक तनाव कम होकर सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, साथ ही याददाश्त तेज होगी। इसे हमेशा शरीर में मुस्कान बनाए रखें। तो आइए, हमें स्वस्थ जीवन की दिनचर्या के महत्व को समझना होगा फिर से, और उन दिनचर्या के अनुरूप हमें अपने जीवन को ढालने का सख्त जरूरत होगी, तभी हम स्वस्थ जीवन जीने के हकदार बन सकेंगे। हम अपने जीवन को स्वस्थ वातावरण परिवेश में व्यतीत करने का यथासंभव प्रयास करें तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। इसके लिए कुछ साधारण सुझाव दिए जा रहे हैं। हमारा आवास ऐसा हो जिससे ताजी हवा, धूप, प्रकाश आसानी से आती जाती रहे। हम अपने जीवन को तनाव मुक्त रखने का हर संभव प्रयास करते रहें। हमें प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे गहरी नींद से सोना चाहिए। सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले शैया त्याग कर हमें प्राणवायु को सेवन करना चाहिए। हमें प्रतिदिन शौच पैखाना खुलासा होता रहे, इसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहने की जरूरत होती है। शौचादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हमें प्रतिदिन अपने शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए टहलना चाहिए। टहलने की जगह ऐसी हो जो प्रदूषण मुक्त हो, ताकि हमें ताजी स्वच्छ हवा मिल सके।
टहलने का नियम पालन करने से ही हमें इसका लाभ मिल सकेगा। टहलने वक्त शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए तेज चाल में चलना चाहिए। इस बीच बातचीत करना लाभप्रद नहीं रहेगा। बहुत अति आवश्यक हो तब कोई बात कर सकते हैं। टहलने के बाद समय हो तो शवासन की मुद्रा में 5 से 10 मिनट लेट जाना चाहिए, इससे पूर्ण लाभ होगा। सुबह का जलपान अपनी आर्थिक स्थिति, उम्र तथा शारीरिक अवस्था और पाचन शक्ति के हिसाब से लेना चाहिए। सुबह के जलपान में हल्का आहार लेने से भूख बनी रहेगी। जलपान और भोजन के बीच में अंतराल कम से कम 3 से 4 घंटा अवश्य रखना चाहिए तथा जलपान में गरिष्ठ भोजन मसालेदार नहीं खाना चाहिए। भोजन जलपान के कम आधा घंटा पहले जल न लें और भोजन के 1 घंटा बाद जल पिएं। जलपान भोजन के बाद 10 से 15 मिनट का विश्राम कर लेना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। अतः भोजन के साथ साथ साथ पानी न पिएं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। भोजन के 1 घंटा बाद ही जलपान करें। जल जब भी लें धीरे धीरे घुन घुन करके लें। रात्रि भोजन के बाद टहलना अति आवश्यक है। अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को कभी भी पनपने नहीं दें, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। सकारात्मक विचार सपनों को साकार करता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते रहने से हमारे विचार स्वतः सकारात्मक होने लगते हैं और हम उन्नति की ओर अग्रसर होने लगते हैं। सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। हमें हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आवश्यकता हो तभी क्रोध करना चाहिए। क्रोध करने से हमारा शरीर में नुकसान पहुँचता है और तत्काल उसका हानि पहुँचता है और मस्तिष्क बिगड़ता है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का ध्यान मेडिटेशन करना आध्यात्मिक ही नहीं शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी यह सिद्ध हुआ है। इसका स्थान निर्धारण अपनी परिस्थिति को ध्यान रखते हुए करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ किसी भी कारण से नहीं खर्च करनी चाहिए। ऊर्जा संचित करके रखने से हमें भविष्य में बहुत ही लाभ प्राप्त हो सकेगा। कम से कम बोलना, मृदु वाणी में बोलना, सोच समझ कर बोलना अपने जीवन में सदैव बनाए रखने की आदत बनानी चाहिए। जब खूब भूख लगे तभी खाना चाहिए, कम भूख हो तो कम खाना चाहिए। यदि समय हो तो तेज भूख लगने पर ही की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप स्वस्थ हैं इसकी पहचान समय पर भूख लगती है, समय पर शौच होता है, पेशाब खुलासा समय पर प्रतिदिन होता है। आपको गहरी नींद आती है या नहीं, टूट टूट कर नींद आती है या क्या? आपको कब्ज रहता है, गैस वायु तो नहीं बनती है? आपके शरीर की बनावट कैसी है, वजन कितना है? लंबाई के हिसाब से शरीर का वजन होना चाहिए। आपका पेट आपकी छाती से ऊंचा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो पेट को घटाने प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप रोग के चंगुल में फंस रहे हैं। भविष्य में यह खतरे का सूचक है। आपके चेहरे पर हर वक्त कांति झलकती रहे इसके लिए अपने आहार विहार पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक होता है। तनाव मुक्त रहने का सदा ही प्रयास करते रहें तो चेहरे की कांति बरकरार रहेगी। अपने कार्यों के प्रति सतर्कता और ईमानदारी बरतें। कर्मनिष्ठ बनकर कार्य करें और प्रयत्नशील बने रहें। समय से उठना, समय पर सोना यह सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। अर्ली टू वेड एंड अर्ली टू राइज अंग्रेजी की कहावत को अपने दैनिक जीवन में हर वक्त याद रखना चाहिए। हमें प्रतिदिन मौसम के अनुसार कम से कम 3 से 4 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए। जल पीने वक्त ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में 1 से 2 गिलास इससे अधिक जल न पिए, फिर आधा या 1 घंटा बाद ही जल पीना चाहिए। जल बैठकर ही पीना चाहिए, खड़े खड़े जल पीना हानिकारक होता है। तो स्वतः हुए सभी रोग अपने आप बाहर निकल जाएंगे। उन रोगों को शमन पचा के निकालना चाहिए, दमन करने से बचना चाहिए। हम प्रकृति के अनुकूल चलें तभी उपयुक्त दैनिक जीवन को अपने जीवन में अंशरसा उतारने का प्रयास करें। ऐसा पालन करने से जीवन सुखमय और स्वस्थ बना रहेगा और हम अपने जीवन के सही उद्देश्य तक पहुँच पाएंगे।

AIR at 90. स्वस्थ जीवन के लिए दिनचर्या। डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्त की यह पूर्व प्रसारित वार्ता आप सुन रहे थे। कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
6: डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कहाँ चलती है, इधर तो
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के

0: आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभवाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा और जदयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को बनाया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा वाहनों का परिचालन। अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही आवागमन की मिलेगी अनुमति। और मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना के मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 3 कर्मियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। एनडीए के घटक दलों भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भाजपा ने भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पार्टी ने संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। इधर जदयू ने पटना से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, मधुबनी से भारती मेहता और पश्चिम चंपारण से शिवरानी देवी प्रजापति को द्विवार्षिक चुनाव के तहत उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए शेखपुरा से ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव जबकि एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एनडीए ने आज 8 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। शेष 2 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा की ओर से आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि इस दौरान सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी जिलों में मीडिया संवाद, प्रदर्शनी, योग शिविर और जन कल्याण शिविर का आयोजन होगा।
2: भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 जून से 21 जून तक पूरे देश एवं बिहार में 12 साल बेमिसाल विश्वास, विकास और जन कल्याण अभियान चलाया जाए। इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाएं एवं विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है।
0: भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अभी केवल एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही वन वे ट्रैफिक के तहत परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पेली ब्रिज पर वाहनों के परिचालन का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा।
3: 7 जून के करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे। पुल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे।
0: बक्सर के इटाढ़ी रेलवे कुमटी पर नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आरओबी का उद्घाटन कुछ दिन पहले हुआ था। आरओबी का पाया संख्या 5 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने पुल पर आवागमन बंद कर दिया है। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में 6 लोगों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने अस्पताल के 3

0: कर्मियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि आईसीयू में तैनात चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार, एडमिन मैनेजर राजकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के आवेदन पर ब्रह्मपुरा थाने में शिकायत दर्ज की गई है।
1: 4 जून 2026 को करीब 4 बजे सुबह में प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तब अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वो जो 3 लोग हैं वो एक मेंटेनेंस हेड वहाँ के, एक एडमिन हेड और वहाँ जो आईसीयू में जिन डॉक्टर की ड्यूटी थी उस समय वो वहाँ पे नहीं उपलब्ध थे और उनकी इन 3 लोगों की उस समय इमीडिएट लापरवाही के वजह से जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आज पटना में पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ जल्द ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति में सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को भुगतान किया जाएगा।
2: अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों पर हम सोलर युक्त बिजली पहुंचाए और 125 यूनिट जैसे पार कीजिएगा, 125 यूनिट से ज्यादा आपके घरों पर सोलर युक्त बिजली जब उत्पादन होगा आपके अकाउंट में हम पैसा आपको तुरंत वापस करना शुरू कर देंगे। ये कमाने का भी जरिया हमारे लोगों के लिए हो जाएगा।
0: प्रदेश में आज से शारदीय खरीफ महाअभियान की शुरुआत हुई। इस अवसर पर पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार खेत बचाओ अभियान चलाकर मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री ने अगले महीने से किसान जन कल्याण संवाद और किसान डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने गैर मजरुआ आम श्रेणी की सभी सरकारी जमीनों तथा जमाबंदी रद्दीकरण के मामलों को रोक सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोजपुर, मधेपुरा और अरवल जिलों के राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सरकारी भूमि की खरीद बिक्री रोकने के लिए इसकी सूची निबंधन विभाग को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
6: मैं मीनाक्षी मदन राय, जो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी।
0: न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत्त हो गए थे। न्यायमूर्ति राय इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थी। वे पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी और रामकृपाल यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का पपुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
7: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने और प्रकृति के संरक्षण में सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
8: बदलते मौसम, बढ़ता तापमान, घटते जल स्रोत और प्रदूषण की समस्या आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे समय में पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता बन गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी पटना के जेपी गंगापथ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पौधारोपण कर 1,00,000 पेड़ लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने लोगों से अधिक पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने की अपील की।
2: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं जरूर आपको शुभकामना देता हूँ और आज तो एक अभियान भी हम शुरू कर रहे हैं। इस इलाके में लगभग जितना की चिड़िया खाना में पेड़ नहीं है उससे अधिक सिर्फ इस जेपी गंगा पथ पर 1,00,000 पेड़ लगाने का अभियान आज हम
8: शुरू। गया में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि आज का दिन हमें पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का बोध कराता है।
9: आज का दिन हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराने का अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण केवल हमारे चारों ओर का वातावरण नहीं है बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य, भविष्य का आधार है। उसके संरक्षण के बिना मानव सभ्यता का सतत विकास संभव नहीं है।
8: इधर जिला मुख्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न सरकारी संस्थानों में पौधारोपण किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत भी लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस अवसर पर मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी कोलंबर पर आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा में पुलिस ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फरीदपुर गांव से पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में शराब के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। कैमूर के प्रभारी मंत्री संजय सिंह की अध्यक्षता में आज भभुआ में संभावित बाढ़, सुखाड़ और भीषण गर्मी से निपटने को लेकर विभागवार की गई तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की गई। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत आज शिवहर और शेखपुरा जिले के अलग अलग गांवों में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत ने

अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में पाकिस्तान को 5-3 से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की इस जीत में गोलकीपर सावन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सावन कुमार पटना के आरके राय अकादमी में हॉकी का प्रशिक्षण लेते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा और जदयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को बनाया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से राज्यव्यापी विकास विश्वास और जन कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा वाहनों का परिचालन। अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही आवागमन की मिलेगी अनुमति। और मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना के मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 3 कर्मियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
1: शिवहर जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि आम राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को अनावश्यक रूप से दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिबिर का आयोजन किए जा रहे हैं। 2 जून को जिले के 13 पंचायतों में सहयोग शिबिर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 908 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 779 आवेदनों का निष्पादन मौके पर किया गया। तनियानी प्रखंड के बिलहिया तथा डुमरी कटसरी प्रखंड के नया गांव पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में राज्य के ग्रामीण विकास और सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। इस दौरान श्री कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुनी और उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शिविर में सांसद लवली आनंद, बेलसंड के विधायक अमित कुमार रानू तथा जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों को सुनना और संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
2: तो ये सहयोग कार्यक्रम यहाँ के लोगों के लिए, अब ऑफिस नहीं जाना पड़े, ब्लॉक नहीं जाना पड़े, तो जिला नहीं जाना पड़े, उनकी समस्या की यही सुनवाई करके यहाँ से होने वाला है तो यही पर निष्पादन, यहाँ से नहीं होने वाला है तो जिन अधिकारियों से संबंधित है उनको आवेदन यहाँ से भेजा जाएगा और उनको 20 दिन के अंदर निष्पादन करेगा।
1: इधर जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने की। बैठक में जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मंत्री ने लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत शिवहर जिले के पंचायतों में किसान जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को कृषि भूमि के संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने तथा बंजर होती जमीन को पुनः खेती योग्य बनाने के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी शिविरों में किसानों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहे हैं। भारत माला परियोजना चरण 2 के अंतर्गत प्रस्तावित सिल्लीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे निर्माण

0: 9 जून तक शिवहर जिले के 12 मौजा का दौरा करेगी। इस दौरान एक्सप्रेसवे के निर्धारित संरेखण के अनुरूप अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की प्रकृति और भौतिक सत्यापन तथा निर्धारण किया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने जिले के विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लास के संचालन से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए हर स्तर पर सतत प्रयास किए जाएंगे। शिवहर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बीते दिनों व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सहमति के आधार पर 287 मुकदमों का निष्पादन किया गया तथा 48,27,000 रुपए की राजस्व वसूली हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार तथा जिलाधिकारी प्रतिभा रानी सहित अन्य अधिकारियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायिक अधिकारी ललन कुमार रजक ने किया। लोक अदालत में सुनवाई के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11,000 से अधिक मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजे गए थे। इसमें से सुनवाई के बाद आपसी समझौते के आधार पर 287 मामलों का निष्पादन किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 7:52 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज गायक कलाकार हैं उदय नारायण राय। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं सूरदास की ये भक्ति रचना।

नानक की इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी अब यहीं संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे उदय नारायण राय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। पहला गाना हमने फिल्म गुमनाम से लिया है। हसरत जयपुरी की गीत रचना है। संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने और आवाज लता मंगेशकर की है।

मुकेश की आवाज़ में अब आइए सुनते हैं फिल्म जागते रहो का गीत। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: सच है क्या? सब सच है।
1: दो जासूस, इस फिल्म का एक नगमा आपको सुनवाते हैं जिसे गाया है लता मंगेशकर एवं शैलेंद्र सिंह ने। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
0: कर लो।
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। आशा भोसले एवं मनहर उदास का गाया फिल्म होटल का एक गीत सुनते हैं। गीत के बोल इंदिवर के हैं और संगीतकार हैं उषा खन्ना।

अब सुनिए आशा भोसले एवं अमित कुमार का गाया फिल्म जीवा का एक गीत। गीतकार गुलजार, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
3: कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म इल्जाम का एक गीत। आशा भोसले एवं अमित कुमार ने इसे गाया है। गीत के बोल अनजान के हैं और संगीत तैयार किया है बप्पी लाहड़ी ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज़ और फिर उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट

बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए

घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को

0: और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage. Pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka.

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की।

0: जाएगी। जुनू मगरबी मानसून बोहरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल क़द्र तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद किफालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदाम पेशरफ्त की क़्यादत करेंगे और अवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद किफालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल जीडीपी के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल जीडीपी की तरक्की का तखमीना 7.7% है। शुमारियात और प्रोग्राम की हिफाजत की वजारत ने आज माली साल 2025-26 के सालाना अंदाजे के आर्जी आदादोशुमार और इस साल जनवरी से मार्च की सैमाही के अंदाजे जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय मईशत के लगातार इस्तेहकाम, इस्लाहात की कामयाबी और 140 करोड़ भारतीयों की सख्त मेहनत की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत जिंदगी गुजारने और कारोबार करने में आसानी पैदा करने और नौजवानों के लिए मौके में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इसमें सरहदों के साथ 7 से 8 हिसास मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत करने की मनसूबाबंदी शामिल है। इन मकामात की हिफाजत बीएसएफ और एसएसबी करती हैं। त्रिपुरा में आज लंकामूरा सरहदी चौकी पर प्रहरी सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी नौजवानों और मुकामी शहरी इंतजामिया को नाकाबिले दरअंदाजी सरहदी बंदोबस्त का एक निज़ाम वजह करने के जिमन में मरबूत करेगा।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: जनाब शाह ने जोर दिया कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के हिस्सा सरहदी हिस्सों में दरअंदाजी या सरहदी रखना के बगैर किसी भी तरह की आबादियाती मुंतकली की इजाजत नहीं देगी। वजीर दाखिला ने मनुष्यात की स्मगलिंग, इंसानों की नाजायज तिजारत और मवेशियों की स्मगलिंग जैसे खतरात को जड़ से खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनाब शाह ने बड़े पैमाने पर शजरकारी की एक मुहिम में भी शिरकत की और अगार का एक पौधा लगाया। नेपाल के खारजी उमूर के वजीर शिशिर खनाल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत के 3 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। तीसरे पहर आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कल नेपाल के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे।

उन्होंने उजागर किया कि भारत का नेपाल के साथ एक जामे एजेंडा है जिसमें तरक्याती ताउन से लेकर तिजारत और सरमायाकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मुस्तहकम करना चाहता है। वजारत खारजा ने आज इत्तला दी है कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हाल ही में पेश आए आग लगने के हादसे में जान गंवाने वालों में गैर मुल्की शहरियों की तादाद 13 है। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि महलुकीन में 4 अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया से और 3 का ताल्लुक किर्गिस्तान से था, जबकि मोजम्बिक, लाइबेरिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, जमहूरिया कांगो और इराक के एक एक शहरी की मौत हुई है। भारत रूस ताल्लुकात पर बोलते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत और रूस के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती समझौते पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि अमरीका के आला मुजाकिरातकार अपनी टीम के साथ 1 जून से 4 जून तक भारत में थे। उन्होंने कहा कि बातचीत मुस्बत और तामीरी नौयत की रही। एक दीगर सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल अब तक 1076 भारतीय शहरियों को अमरीका से मुल्क बदर किया गया है, जबकि यही तादाद पिछले साल 3567 थी। भारत में गैर मुल्की शहरियों के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों से निमटने के बारे में कवानीन मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली को रूस के 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे सुखोई SU-57 की पेशकश की है और इन तैयारों को भारत में मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज रखी है। ये पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अक्कासी करती है। सेंट पीटर्सबर्ग इक्तसादी फोरम के तनाजुर में कल रात सरकर्दा न्यूज एजेंसियों के सरबराहान से बातचीत करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी SU-57 तैयारा प्रोग्राम में नई दिल्ली की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। जनाब पुतिन ने इंटीग्रेटेड फिजाई दिफाई निज़ाम और उससे मुतालिक हार्डवेयर समेत दीगर अहम दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भारत के साथ इश्तराक करने की रूस की तैयारी का इजहार किया है। भारत रूसी साख्त के S-400 मिजाइल निज़ाम के मुमकिन कलीदी पुर्जे के साथ अपने दिफाई निज़ाम सुदर्शन चक्र को स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाज़ेह मौकफ को दोहराया है कि नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिले तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिले वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसाइल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतजामी तब्दीली की कोशिश को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदामात उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वजीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सूद ने कहा कि वजीर आला ने गैर कानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूलों के खिलाफ वर्जियों और इंतजामी लापरवाही से पेश आए हालिया अलमनाक हादसे पर तशवीश का इजहार किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आफात से निमटने से मुतालिक एक्ट 2005 की मुख्तलिफ दफात को मौसर तरीके से नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिहायशी या तिजारती इमारतों के मालिकान इस कानून के तहत कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्मानों के साथ साथ कैद की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। जनाब सूद ने कहा कि मुस्तकबिल में DMs को अपने जिले में काम करने वाले किसी भी महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का इख्तियार हासिल होगा। वो जरूरत पड़ने पर महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश, FIR दर्ज करने और वजह बताओ नोटिसें जारी कर सकेंगे।

गुवाहाटी में हलफबरदारी की एक तकरीब में 12 नए काबिनी वुजरा को शामिल करते हुए आज आसाम की वुजरा काउंसिल में तौसी की गई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आसाम की वुजरा की काउंसिल की तादाद अब बढ़कर 17 हो गई है। आईन के तहत आसाम में वजीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 19 वुजरा हो सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान किया कि अंडमान जजायर के मशरक़ी साहिल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि यह दरियाफ्त बुहरा अंडमान के तवानाई के वसी इम्कान को वाजह करती है और इस तास में जारी जस्तजू की मुहिम में एक और कामयाबी को नुमाया करती है। पद्म अवार्ड्स 2027 के लिए नामजदगी का अमल अगले माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगी और सिफारिशात का अमल जो 15 मार्च को शुरू हुआ था सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से मौसूल नामजदगियों के जरिए जारी रहेगा। वजारत ने सिलसिले में शहरियों से खुद नामजदगी समेत नामजदगियां और सिफारिशात दाखिल करने की अपील की है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नतायज के ऐलान के बाद अपने पोर्टल पर हुए मनसूबाबंद साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 12वीं जमात के उम्मीदवारों के जवाबी पर्चों के वेरिफिकेशन और दोबारा जांच के लिए यह पोर्टल 2 जून को शुरू किया गया था। CBSE ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान पोर्टल पर मुतअद्दिद मनसूबाबंद साइबर हमले हुए हैं। ताहम इन हमलों को 24 घंटे 7 दिन की लगातार निगरानी और जवाबी मैकेनिज्म के जरिए नाकाम बना दिया गया। इस दौरान IIT कानपुर, IIT मद्रास और दीगर मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की साइबर सिक्योरिटी टीमों की मदद हासिल रही। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मगरबी वस्ती और मगरबी वस्ती बुहरा अरब गोवा के हिस्सों और कर्नाटक के इलाकों में मजीद आगे बढ़ गया है। इस तरह की सूरत हाल तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुनूब मगरबी मानसून के वस्ती बुहरा अरब कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मजीद हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ने के लिए सूरत हाल मुवाफिक है। मौसमियात की एजेंसी ने यह भी कहा है कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की सूरत हाल मगरबी वस्ती मशरक़ी वस्ती और शुमाल मशरक़ी खलीज बंगाल के इलाकों के साथ साथ शुमाल मशरक़ी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी जारी रहने की तवक्को है। हॉकी में भारत ने आज जापान के शहर काकामी गहारा में खेले गए मर्दों के अंडर 18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 3-5 से हरा दिया, जहां भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। 7 सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ कराई जाएगी। और जुनूब मगरबी मानसून बुहरा अरब गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार, उपस्थित हैं हम शब्द शिल्प के इस अंग के साथ। श्रोताओं, वैसे तो साहित्य से शायद ही कोई विषय अनछुआ हो। हर विषय और मौसम पे साहित्यिक रचनाएं मिलती है, साथ ही ग्रीष्म ऋतु और साहित्य का गहरा और परस्पर संबंध रहा है। भारतीय साहित्य में जहां एक ओर गर्मी की प्रचंडता, तपन और लू का चित्रण मानवीय संघर्ष और प्रकृति की कठोरता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर ये प्रेम, उल्लास और फलों के राजा आम के मौसम के रूप में भी उभरती है। कुछ साहित्यकारों ने दोपहर को एकांत और आत्ममंथन के प्रतीक के रूप में देखा है, तो कहीं गर्म हवा को साहित्य में तपस्या और जीवन की कठोर परीक्षा के रूप में दर्शाया गया है। पश्चिमी साहित्य में ग्रीष्म ऋतु को अक्सर युवावस्था, स्वतंत्रता और प्रेम का प्रतीक माना गया है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आइए सुनते हैं एक वार्ता, ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक चित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर इति कुमारी।
1: भारत ऋतुओं का देश है। यहाँ प्रकृति समय समय पर अपने विविध रूपों से मानव जीवन को प्रभावित करती रही है। भारतीय संस्कृति और साहित्य में ऋतुओं का विशेष स्थान है, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति का संबंध अत्यंत घनिष्ठ माना गया है। इन ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु का अपना विशिष्ट महत्व है। सामान्यतः ग्रीष्म को केवल तपन, लू और कठिनाई का प्रतीक समझा जाता है, परंतु साहित्यिक दृष्टि से यह ऋतु केवल गर्मी का अनुभव नहीं कराती, बल्कि जीवन के संघर्ष, तपस्या, प्रतीक्षा, प्रेम, विरह और प्रकृति के सौंदर्य को भी अभिव्यक्त करती है। भारतीय साहित्य की प्राचीन परंपरा में ऋतु वर्णन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति ऋतु संहार में ग्रीष्म ऋतु का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। उन्होंने सूर्य की प्रखर किरणों, सूखी धरती, तप्त वायु तथा जल के महत्व को बड़ी कलात्मकता से प्रस्तुत किया है। कालिदास के अनुसार ग्रीष्म केवल कष्टदायक नहीं, बल्कि मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाने वाली ऋतु है। इस ऋतु में प्रकृति का कठोर रूप दिखाई देता है, किंतु यह कठोरता आने वाले मनमोहक वर्षा में फैलता हुआ मोर पंख एवं हरियाली को भी दर्शाता है। इस मौसम को विरह और तड़प का प्रतीक माना गया है। दोपहर की सूनी राहें, गर्म हवाएं, लू और सूखते हुए जल स्रोत प्रेमी प्रेमिकाओं के मन की व्याकुलता और विरह की अगन को दर्शाते हैं। रीतिकाल के कवि बिहारी ने ग्रीष्म की दोपहरी का वर्णन करते हुए लिखा है, देखी दोपहरी जेठ की छाहे चाहती छां, अर्थात जेठ के महीने की दोपहर इतनी भयंकर है कि छाया भी अपने लिए छाया ढूंढने लगती है, वो भी डरकर जंगलों या घरों के भीतर छिप गई है। ग्रीष्म को केवल विनाश या कष्ट का प्रतीक नहीं माना गया है, बल्कि इसे सृजन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। जब तक ग्रीष्म की तपन चरम पर नहीं होगी, तब तक समुद्र का जल वाष्प बनकर बादलों का रूप नहीं लेगा। इसलिए ग्रीष्म की तपस्या ही वर्षा ऋतु के सुखद आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मौसम वर्षा ऋतु के आनंद की भूमिका भी तैयार करती है। हिंदी साहित्य में भी ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख अनेक रूपों में मिलता है। भक्ति काल के कवियों ने इसे आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। कबीर ने संसार की तपन और आत्मा की प्यास को ग्रीष्म की गर्मी से जोड़ा है। वहीं सूरदास और तुलसीदास ने प्रकृति के माध्यम से मानव भावनाओं को व्यक्त किया है। रीति काल के कवियों ने ग्रीष्म ऋतु में विरहिणी नायिकाओं की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। तपती धरती और सूखे वातावरण के बीच प्रेम वियोग की भावना और भी गहरी हो जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भी ग्रीष्म ऋतु अनेक सामाजिक और मानवीय संदर्भों के साथ सामने आती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लोक जीवन और सादगी का चित्रण बहुत ही सटीकता के साथ किया है। हिंदी साहित्य के छायावादी और प्रगतिवादी के स्तंभ कहे जाने वाले कवियों ने ग्रीष्म ऋतु के बहाने ग्रामीण जीवन और मजदूरों के संघर्ष को रेखांकित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर में इलाहाबाद की पथ पर दोपहर की कड़कती धूप में काम करती महिलाओं का वर्णन ग्रीष्म की क्रूर यथार्थ को दिखाता है। सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने ग्रीष्म के माध्यम से जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। निराला की कविताओं में ग्रीष्म की कठोरता के बीच श्रमिक जीवन की पीड़ा दिखाई देती है। खेतों में काम करते किसान, धूप में तपते मजदूर और सूखी धरती की करुणा

0: साहित्य को यथार्थ से जोड़ती है। इस प्रकार ग्रीष्म केवल प्राकृतिक शत्रु न रहकर सामाजिक यथार्थ का प्रतीक बन जाती है। भारतीय लोक साहित्य में ग्रीष्म ऋतु का विशेष महत्व है। गांव में पके हुए आम की मिठास, कोयल की कूक, कुओं और तालाबों का जीवन तथा पेड़ों की छाया से जुड़ी अनेक लोक कथाएं और लोकगीत प्रचलित हैं। उत्तर भारत के लोकगीतों में गर्मी के दिनों में मायके जाने की इच्छा व्यक्त करती स्त्रियों की भावनाएं मिलती हैं। आम, तरबूज, खरबूजा और बेल जैसे फलों का वर्णन लोक जीवन को आनंदमय बनाता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु भारतीय जनजीवन और लोक संस्कृति की आत्मा से जुड़ी हुई है। ग्रीष्म ऋतु भारतीय दर्शन और आध्यात्म में भी तपस्या का प्रतीक मानी गई है। ऋषि मुनि कठिन गर्मी में तप करके आत्मबल को प्राप्त करते हैं। साहित्य में यह तपस्या आत्म संयम और साधना का रूप लेती है। ग्रीष्म की जलती धूप मनुष्य को यह संदेश देती है कि कठिनाइयों के बाद ही जीवन में शीतलता और सुख प्राप्त होता है। इसलिए साहित्यकारों ने ग्रीष्म को संघर्ष और आशा के प्रतीक के रूप में देखा है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी ग्रीष्म ऋतु अत्यंत प्रभावशाली है। इस ऋतु में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, नदियां सिकुड़ जाती हैं और धरती तपने लगती है, किंतु इनके आगमन से पहले पलाश के लाल फूल, अमलतास की सुनहरी छटा और आम्र मंजरी प्रकृति को अनोखा सौंदर्य प्रदान करती है। कवियों ने इन दृश्यों को अपनी रचनाओं में बड़ी सुंदरता से चित्रित किया है। कोयल की मधुर आवाज और आम के पेड़ों की हरियाली ग्रीष्म की कठोरता के बीच सौंदर्य और मधुरता का अनुभव कराती है। ग्रीष्म ऋतु का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक पक्ष विरह और प्रतीक्षा का भी है। भारतीय काव्य परंपरा में विरहनी नायिका की व्यथा को ग्रीष्म के माध्यम से अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तपती हवाएं, सूनी राहें और सूखे वृक्ष मानो उसके मन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ग्रीष्म केवल बाहरी ताप नहीं बल्कि हृदय की संवेदनाओं का भी प्रतीक बन जाती है। आज के समय में ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट ने प्रकृति के संतुलन को प्रभावित किया है। आधुनिक साहित्यकार ग्रीष्म की बढ़ती तीव्रता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। सूखती नदियां, घटते जल स्रोत और बढ़ती गर्मी मानव जीवन के लिए चुनौती बनती जा रही है। साहित्य इन समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। कहा जाता है कि भारतीय साहित्य में ग्रीष्म ऋतु केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन के अनेक अनुभवों और भावनाओं का प्रतीक है। यह संघर्ष, तपस्या, प्रेम, विरह, सौंदर्य और आशा का संदेश देती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य से लेकर आधुनिक हिंदी साहित्य तक ग्रीष्म ऋतु ने कवियों और लेखकों को गहन प्रेरणा प्रदान की है। भारतीय साहित्य में ग्रीष्म का चित्रण यह सिद्ध करता है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। सूरज की किरणों में जीवन का संदेश छिपा है, संघर्ष की गर्मी में ही सफलता का रास्ता बना है, तपती राहों में भी मंजिल मिल जाती है, ग्रीष्म की हर शाम सुकून दे जाती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक दृष्टिकोण से चित्रण एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जो सभी मौसम में इसे विशिष्ट संज्ञा देती है।
1: श्रोताओं, ग्रीष्म को केवल विनाश या कष्ट का प्रतीक नहीं माना गया बल्कि इसे सृजन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। अभी हम डॉक्टर इति कुमारी से वार्ता ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक चित्रण सुन रहे थे। शब्द शिल्प के इस अंक में अब आइए सुनते हैं एक कहानी। गर्मी जून में नहीं जुनून में है। रचनाकार हैं धीरेंद्र छथरवाला।
2: गर्मी न जून में है न ऊन में है, गर्मी जुनून में है। अगर मनुष्य चाहे तो वीरान वन में भी हरी क्रांति ला सकता है और मन चाहे मंजिल भी पा सकता है। मनोहर एक पढ़ा लिखा इंसान था, सिर्फ वक्त का मारा था। विलक्षण प्रतिभा, तीक्ष्ण मानसिकता और अदम साहसी भी था। असंग

प्रतियोगिता में वह प्रथम आता था, मगर उसके पास न मोटी रकम और न ऊंची पैरवी। यही कारण था कि वह मंजिल नहीं पा सका। बचपन में ही विवाह हो जाने के वजह से पारिवारिक समस्या भी उसके सामने सुरसा की तरह मुबाई हुए था। अंततः वह हार नहीं मानने वाला था। बाध्य होकर वह किसी तरह एक रिक्शा का इंतजाम किया और वह रिक्शा चलाने का फैसला लिया। इसी बीच मनोहर दो बेटे का पिता भी बन चुका था। उसकी पढ़ाई लिखाई, खान पान की व्यवस्था हर वक्त मनोहर के मानस पटल यानी उसके दिमाग में दौड़ता रहता था। उसके मन में यह था कि मैं तो पढ़ लिख कर रिक्शा चलाने लगा, मगर अपने बेटे को मैं पढ़ा लिखा कर IAS बनाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे खून भी बेचना पड़ेगा या किडनी, मैं तैयार हूँ। इसी संकल्प के साथ मनोहर अपने आप को मशीन बना दिया था। भयंकर शीत, झुलसा देने वाला ग्रीष्म, काम सखा वसंत और तीक्ष्ण स्वर वाली वर्षा का परवाह किए बगैर वह रात दिन रिक्शा चलाता रहता था। एक दिन मनोहर का दोस्त अचानक देखा कि मनोहर रिक्शा पर सवारी बैठा कर जा रहा था। वह निर्निमेश मनोहर को देखता रहा तब तक जब तक मनोहर उसके आंख से ओझल न हुआ, और वह सोचने लगा कि पढ़ाई लिखाई में मनोहर विलक्षण था। हर वर्ष अपने वर्ग में वह प्रथम आता था, मगर आज वह रिक्शा क्यों चला रहा है? जरूर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं। अब मैं मनोहर से बिना मिले नहीं जाऊंगा। वह वहीं मनोहर के आने का इंतजार करने लगा। लगभग 2 घंटे के बाद मनोहर उस कड़ी धूप में पसीने से तरबतर होकर आया और एक गाछ की छांव में रिक्शा को खड़ा कर पसीना पूछने लगा। इसी बीच वह दोस्त शेखर जो इंतजार कर रहा था, वह धीरे धीरे मनोहर के करीब आया। मनोहर शेखर को देखकर दंग रह गया कि अरे शेखर, कहाँ से, क्या कर रहे हो, बाल बच्चा कैसे हैं? दोनों दोस्त विगत 10 वर्षों के बाद मिला था। इतना सुनते ही शेखर मनोहर के गले से लिपट गया और रोने लगा। शेखर के कंधों पर मनोहर के आंखों से निकला वह गर्म आंसू शेखर के कंधों को झकझोर कर रख दिया। इसी बीच शेखर पूछ बैठा कि मनोहर, वह जो तुम्हारा बेटा नमन था, वह कितना बड़ा हुआ और वह किस क्लास में पढ़ रहा है? मनोहर ने कहा, देखो शेखर, वह बहुत तेज है पढ़ने में। वह वर्ग 4 से लेकर मैट्रिक तक वह हमेशा प्रथम रहा, यहाँ तक कि वह मैट्रिक की परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप आया। क्या करें यार, उसकी बलवती इच्छा है कि मैं दिल्ली में पढ़ूंगा। अब उसका नाम दिल्ली में लिखवाना ही पड़ेगा और लिखवा ही दूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। वाह भाई मनोहर, तुमको इस भीषण गर्मी का पता है कि अभी यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी तुम रिक्शा चला रहे हो? सुनो शेखर, गर्मी ना ऊन में है, ना गर्मी जून में है, गर्मी जुनून में है। मेरा तो संकल्प है कि जब मेरा बेटा नमन BA में भी अपने कॉलेज में फर्स्ट यानी प्रथम आया, उसकी बलवती इच्छा है कि मैं UPSC की पढ़ाई करूँगा। उसकी पढ़ाई के लिए तो यह 45 डिग्री धूप क्या है, 100 भी हो तो मनोहर का रिक्शा न रुका है न रुकेगा, तब तक जब तक मेरा बेटा नमन IAS नहीं बन जाता है, तब तक मेरा यह क्रम चलता ही रहेगा। इतना सुनते ही शेखर बोल बैठा कि नमन दिल्ली में कहाँ रहता है, बताओ, मैं उसे समय समय पर मिलूंगा। एक दिन अचानक सड़क के किनारे खड़ा एक लड़का को देखा। उसका चेहरा साफ साफ मनोहर का दूसरा चेहरा दिखा। बिना सोचे समझे बोल पड़ा, तुम नमन हो? जी हाँ, मैं नमन हूँ और मनोहर बाबू का बड़ा बेटा हूँ। सर, आपकी तारीफ क्या है, यानी आपका परिचय? तो आपसे पहले कहीं आपको देखा भी नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं।

0: हो। हम और मनोहर दोनों एक साथ पढ़ता था। मेहनत से पढ़ो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यह मेरा मोबाइल नंबर है, कॉल करना, तुम्हारे साथ हमेशा मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वह जाने लगा तो नमन नमस्ते कहकर विदा किया और चलते बना। एक दिन शेखर अपने मित्र के घर उसकी बेटी की विवाह में शरीक होने के लिए जाता है। अचानक वहाँ मनोहर से मिलता है। मनोहर को भी उस विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण था। दोनों मित्र में बातचीत के क्रम में मनोहर शेखर को कहता है कि तुम कभी कचहरी कोर्ट गए हो? वहाँ एक एक झोपड़ी में इस भयंकर धूप में वकील साहब बैठे रहते हैं और उनकी नज़र बाहर आने वाले क्लाइंट पर है। धूप की चिंता नहीं, क्योंकि इतने पैसे पास नहीं हैं कि माँ की दवाई लेना है, घर के लिए साग सब्जी लेना है। बच्चे कोर्ट आते वक्त तरबूजा और समोसा लाने को कहा, वह कैसे होगा? इससे तो मैं ठीक हूँ, जो इस भयंकर ग्रीष्म की परवाह किए बिना पढ़ाई से लेकर घर खर्च भी चला देता हूँ, इंतजार नहीं करता। एक दिन एक बीमार व्यक्ति को रिक्शा पर बैठाकर मनोहर अस्पताल लेकर जाता है। देखा कि कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहा था कि इसी शहर का एक लड़का नमन नाम का है, जो IAS की परीक्षा में ऑल इंडिया में दूसरा स्थान लाया है, इस शहर का मान बढ़ाया है, इस शहर का नाम रोशन किया है। इतना में एक आदमी बोला, वह जो रिक्शा वाला खड़ा होकर पसीना पोंछ रहा है, नमन उसी का बेटा है। वहाँ खड़े लोगों ने मनोहर को नमस्ते करते हुए बोला, नमन आपका बेटा है? जी हाँ, क्या बात है, कृपया बताएं कि आपका लड़का क्या कर रहा है? आपका नाम मनोहर रिक्शा वाला है, आप मिठाई खाएं, क्योंकि आपका बेटा जो है ऑल इंडिया में IAS में दूसरा स्थान लाकर इस शहर का नाम रोशन किया है, आपको प्रणाम। अब मनोहर का खुशी का ठिकाना न रहा, वह फूले न समा रहा था। वह दौड़ता हुआ घर गया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, चलो सामने मंदिर में प्रणाम करने। क्या बात है? अरे नमन IAS की परीक्षा में दूसरा स्थान पूरे इंडिया में लाया है, वह तो अब जिला अधिकारी बन गया और हम सबका दुख दूर हो गया। इतने में नमन घर आता है, आते ही पिता से लिपट कर रोने लगता है। पिता सीने से लगाता है और नमन को बधाई देने बालों का तांता लगा रहता है। इस प्रकार मनोहर ने यह सिद्ध करके समाज को, दोस्त को, सगे संबंधी को बता दिया कि गर्मी न ऊन में है न जून में है, गर्मी जुनून में है।
1: कुछ रचनाएं किसी विचार या किसी अनूठे क्षण की उपज भर नहीं होती, बल्कि जीवन की जिज्ञासाएं, अनुभव और अवलोकन जब एक लय में गूंजने लगता है, तब वे अपना स्वरूप धारण करती है। अभी हम धीरेन्द्र छथरवाला से कहानी गर्मी जून में नहीं जुनून में है सुन रहे थे। शब्द शिल्प में अब आइए चलते हैं आखिरी सोपान यानी काव्य पाठ की तरफ। इसमें आज हम सुनेंगे अभय कुमार पाठक से काव्य पाठ।
2: ओह यह कैसा समय आ गया, पानी न जाने अब कहाँ खो गया। लोग पानी के लिए खून बहा रहे हैं, पानी के लिए अब खूंसे नहा रहे हैं। यह तो अभी आगाज है, अंजाम तो और भी बुरा होगा। नागासाकी हिरोशिमा जैसा कई देश अभी और जलेगा। तृतीय विश्व युद्ध का कारण कुछ और नहीं पानी होगा। जहाँ इतिहास नए युग को दोहराएगा यही कहानी होगा। समय रहते हम संभल जाएं तो अच्छा होगा। हमारी गलतियों से परेशान सदियों का बच्चा होगा। पानी हर शय की ज़रूरत है जीने के लिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी जमी पीने

के लिए, कहीं एक बूंद के लिए लड़ाई हो रहा है, सैकड़ों लीटर से कहीं कोई गाड़ी धो रहा है, पहाड़ मिट रहा है, जंगल कट

रब कोहराम मच रहा है, खेत और तालाब को मिटाकर शहर बस रहा है, खेत और तालाब को मिटाकर शहर बस रहा है। आ जाओ मेघों के राजा, आ जाओ मेघों के राजा, देखो धरती तरस रहा है, दुनिया यह बेहाल बनी अब धूप से अंगारे बरस रहा है। पानी को मोहताज यहाँ सब, जाने क्या कब हो जाएगा, पानी को मोहताज यहाँ सब, जाने क्या कब हो जाएगा, बूंद बूंद तेरा जल अमृत क्या यूं ही अब खो जाएगा। नदी पोखरे सूख गए सब, कुआं भी अब खाली है, पौधा को देख आंसू आया, लाचार पड़ा अब माली है। हम मानव कुछ हल कर लेते, पशु पक्षी सब तड़प रहा है, खेत हमारा कितना प्यासा, पग पग पर यह दरक रहा है। जल्दी से हरियाली कर दो, जल्दी से हरियाली कर दो, इतनी जल्दी तुम आ जाओ, झूम झूम कर सब नाचेंगे, आओ बादल जल बरसाओ, झूम झूम कर सब नाचेंगे, आओ बादल जल बरसाओ। माँ, माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है, बिना बोले ही जान जाए माँ वो मित्र है। माँ की डांट आरती है, माँ का चांटा जीवन का सारथी है, माँ करुणा में सागर है, माँ रोशनी में दिवाकर है, माँ का हर शब्द मोती है, माँ का हर शब्द मोती है, माँ अमावस रात की ज्योति है, माँ बिंदु है, माँ ब्रह्मांड है, माँ सुबह की लालिमा, माँ सुकून की सांझ है, माँ खुशबू है, माँ इत्र है, माँ खुशबू है, माँ इत्र है, माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है, माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। खाक होने से अच्छा है अंगदान करें, खाक होने से अच्छा है अंगदान करें, जिंदगी को जीने का सम्मान करें। नित्य नित्य नया शोध हो अंग जोड़ने के लिए, सिमटती हुई सांसों में जहाँ घोलने के लिए, नित्य नया शोध हो अंग जोड़ने के लिए, सिमटती हुई सांसों में जहाँ घोलने के लिए, जो हर किसी के ख्वाब को पूरा कर सके, मायूसी भरी जिंदगी में खुशियाँ भर सके। कटे हुए हाथों को हाथ मिल जाए, बेपैर किसी के पैरों से चल पाए, गूंगे का हर शब्द मेरी आवाज हो, बहरे के कानों में सुरों का साज हो, मेरा दिल किसी की धड़कन बन जाए, गुर्दा किसी के तन का तजन बन जाए, कोई मेरी आँखों से दुनिया का रंग देख ले, मरने के बाद जो दान करना है वो अंग देख ले, देहदान की जरूरत लोगों को बताएंगे, खुशी से इस पंक्ति में हम खड़े हो जाएंगे, रक्तदान की भावना भी जन जन में जगाएं, छोटी सी इस पहल से किसी की जान बचाएं, छोटी सी इस पहल से किसी की जान बचाएं।

0: श्रोताओं, कुछ रचनाएं भावों और कल्पनाओं को सुंदर और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करती है। ये मनुष्य के हृदय को आनंदित करने के साथ साथ उसे संवेदनशीलता, नैतिक मूल्यों और जीवन के गहरे सत्यों से जोड़ती है। अभी हम अभय कुमार पाठक से काव्य पाठ सुन रहे थे। श्रोता मित्रों, साहित्य मानव जीवन को दिशा, संस्कार और चेतना प्रदान करता है। ये ना केवल ज्ञान का संचित भंडार है, बल्कि हमारी भाषा, संस्कृति और विचारों को संरक्षित रखकर हमें एक बेहतर इंसान और समाज का निर्माण करने में मदद करता है। श्रोता मित्रों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे अनुमति लेने का। आज के शब्द शिल्प के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, स्वर सहयोग था सुप्रभात राय का। प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केन निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 812001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां एवं उनकी पार्टी का शहनाई पर बजाया राग मालकौस।

आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां एवं पार्टी का शहनाई वादन राग मालकौस में। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हाजिर हैं हम लेकर आप श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

ये पहला गाना फिल्म हिम्मत वाला से है। लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार ने इसे गाया है। गीतकार इंदी भर, संगीतकार हैं बप्पी लाहड़ी। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। गड़िया मौजे उस्तु से आप हैं प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी एवं प्रदीप कुमार मंडल। अकबर नगर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं

अशोक कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता, रिशु कुमार गुप्ता और अंशु कुमार। मुजाहिदपुर से ये पत्र आया है, लिखने वाले हैं राजू खान, आफिया और आबिया। शकरुल्ला चक कबाली मैदान भागलपुर से ये पत्र आया है, लिखने वाले हैं शमशाद खान, वली खान, अली खान, मिस्टर खान, रुस्तम खान, आजम खान, अरबाज खान, गयास खान और अल्तमस खान। दिल्ली शहर मोरी गेट से ये पत्र है, लिखने वाले हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजधानी राजनगर मधुबनी से ये पत्र है, लिखने वाले हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से ये पत्र है, लिखने वाले हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, तन्मय और गुनगुन ने। और ये पत्र आया है गंगा विहार कॉलोनी रानी तालाब से, लिखने वाले हैं नंदकिशोर मंडल, मीरा देवी, नीलम मनोज, अमित बबली, स्वीटी सुरुचि, रौली पायल, अनवी आशी और ईशु बाबू। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी को अब आइए सुनते हैं फिल्म गोरा और काला में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें अपनी फरमाइश लिख भेजी है आप श्रोताओं ने। लालूचक भागलपुर से आप हैं विष्णु कुमार चौधरी, गायत्री देवी, आरती कुमारी, रेखा, पूनम, रीता देवी, अंजलि और घर के सभी लोग। पटना बिहार सेवन से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं बेबी प्रियंका, छोटी मुस्कान, ममता और घर के सभी लोग। एकता रेडियो श्रोता संघ बड़ी खंजरपुर भागलपुर बिहार से ये पत्र आया है। लिखने वाले भाई गुलफराज आलम, बेगम शमा आरा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली। बक्सर बिहार से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं सरफुद्दीन अंसारी और वलीउल्लाह अंसारी। अनिरुद्ध चौक चुन्नी मधेपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं प्रेमचंद ठाकुर, मीना ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि ठाकुर, संजू मिश्र, सुभाष मिश्र, भवानी, लवकुश, अरुण झा और इनके परिवार के सभी सदस्य। मस्कंद चंपानगर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं अशोक कुमार, शेखर प्रसाद, सुनील ठाकुर, गणेश दास, उर्मिला देवी और इनके घर के समस्त परिवार। इंदिरा विहार रायगढ़ से ये पत्र है। लिखने वाले हैं अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां और वलीउल्लाह नूरजहां। राजनांद गांव से ये पत्र है। लिखने वाले हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से ये पत्र है। लिखने वाले हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। और ये पत्र है धुरैया गंगदौरी से। लिखने वाले हैं सांदेव हरि, कावित्री देवी, तनुजा कुमारी, अन्नू आंचल एवं इनके परिवार के सभी लोग। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर अब आइए सुनते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर एवं महेंद्र कपूर को अब आइए सुनते हैं फिल्म प्यार किए जा में। गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। रेडियो श्रोता संघ अंबाई तहसील से लोड जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से पत्र आए लिखने वाले हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के, सोभानपुर कटोरिया, खजांची टोला से लिखने वाले हैं शहादत अली, सालिक शहादत, सिद्रा शहादत और शाहिना परवीन। ग्राम पोस्ट गोराडी डिस्ट्रिक्ट भागलपुर से ये पत्र आए लिखने वाले हैं डॉक्टर हेमंत कुमार, आनंद प्रियदर्शी एवं नीलेश प्रियदर्शिनी। जिला पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से ये पत्र आए लिखने वाले हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। लालूचक भागलपुर से ये पत्र आए लिखने वाले हैं बादल, चेतना, गायत्री, विष्णु कुमार और इनके परिवार के सभी लोग। चांदपुर गोगरी जिला खगड़िया से ये पत्र आए लिखने वाले हैं जानकी प्रसाद मंडल, रीता देवी, रेखा, पूनम, नंदू मंडल और घर के सभी सदस्य। उत्तम नगर नई दिल्ली से ये पत्र आया है लिखने वाले हैं गौरव, मदन, अनिल, मानसी और कविता अरोड़ा। भीखनपुर भट्टा रोड भागलपुर से ये पत्र आए लिखने वाले हैं गणेश पासवान एवं सुधा पासवान। मुंदीचक भागलपुर से ये पत्र आए लिखने वाले हैं दिलीप कुमार सोनी। और ममलखा लैलक से इस गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है विनोद यादव ने। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म रूप तेरा मस्ताना से है। मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है। आनंद बख्शी के शब्द रचना है और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने, मुंदीचक भागलपुर से विशाल कुमार, ऋतिक रोशन डोलू और इनके परिवार के सभी लोग। बैजानी चौबे टोला से ये पत्र है। लिखने वाले हैं वर्षा, वंदना, कन्हैया, मेहघा साहब, शालू, सानू, निहाल, साक्षी, कुकू, चीकू, पवन, कुल्लू, मुल्लू, सोनू, नीतू, मीतू, ईशु, अनु और आया। कहलगांव से ये पत्र है। लिखने वाले हैं सुजीत राय। बूढ़ा नाथ रोड भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं गोपाल प्रसाद शाह और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम बात से ये पता है पत्र आया है। लिखने वाले हैं राजू, सुमन, हिमांशु, छोटी बाबू, कंचन, डब्लू, बबली, फुचन और बबलू। नीलकोठी मोहल्ला साहेबगंज भागलपुर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं छोटे सृष्टि, मोहित राज, सोनम और डॉक्टर सुभट्ट कुमार मंडल। जिला झालावाड़ राजस्थान से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। लुत्पली लेन मोहल्ला काजवली चेक से ये पत्र है। लिखने वाले हैं फौजैल नसीम रोज, सोमेरा शहरीन, फैसल नसीम, शादान चिमरा, सिदरा, जोया और अनम। और ये पत्र आया है ग्राम झिकुलिया जिला बांका से। लिखने वाले हैं रमेश शाह और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर, पिन कोड है 812001। और आप अगर हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी phair@gmail.com पे आप हमें अपने ईमेल्स भेज सकते हैं।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत में तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

5:48 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। जय हिंद।